आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर सुबह के 5:30 और ठीक 15 सेकंड हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे चंद्रिमा मजुमदार का सरोद वादन। आपने प्रस्तुत किया है राग भटियार।

अभी आप सुन रहे थे सरोद पर बजाया राग भटियार। कलाकार थी चंद्रिमा मजूमदार। इसके साथ ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वररंजनी अब संपन्न होता है। 6 बजने को हैं

0: समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन। इसमें आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत के विचार।

0: एक बार वे घर से दूर एकांत में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उसी समय उनका एक सहपाठी अपनी माँ के साथ वहां से गुजर रहा था। सहपाठी को देख वो रुका और अपनी माँ से कहा, अम्मा ये गुसाई है, हमारी कक्षा में पढ़ता है, बहुत होशियार है, मुझे इसके साथ बैठना खेलना खाना बहुत अच्छा लगता है, और गुसाई ये मेरी अम्मा है। अपनी माँ की ओर इशारा करते हुए सहपाठी ने कहा, यहाँ क्यों बैठे हो बेटा इस सुनसान और एकांत जगह में? सहपाठी की माँ ने पूछा। अम्मा ये इसकी आदत है, स्कूल में भी खेल घंटी के समय ये पेड़ों के नीचे बैठा रहता है। सहपाठी ने बीच में ही बात काटते हुए अपनी माँ से कहा, तुम्हारी माँ कुछ नहीं कहती बेटा, सहपाठी की माँ फिर बोली। सहपाठी फिर बात काटते हुए बोला, इसकी माँ नहीं है अम्मा। सहपाठी की माँ को सारा माजरा समझते देर नहीं लगी, उसने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर तक छोड़ कर आई। उत्तरांचल के कुमाऊं अंचल के कौसानी गांव में 20 मई 1900 के जन्मे पंत के जन्म के 6 घंटे बाद ही माँ को क्रूर मृत्यु ने छीन लिया था। शिशु का लालन पालन दादी ने किया, लालन पालन में कोई कमी नहीं रही। 7 भाई बहनों में सबसे छोटे पंत के बचपन का नाम गुसाई दत्त रखा गया। नाम प्रिय न लगने के कारण बाद में उन्होंने अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। 1918 में वे काशी आ गए और क्वींस कॉलेज में अध्ययन करने लगे। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और घर पर रहकर हिंदी संस्कृत बंगला और अंग्रेजी का अध्ययन करने लगे। सन 1926-27 में उनकी पहली पुस्तक पल्लव नाम से प्रकाशित हुई। कुछ समय पश्चात पंत अपने भाई देवी दत्त के साथ अल्मोड़ा आ गए और इसी दौरान वे मार्क्स और फ्रॉयड तथा उनकी विचारधारा के प्रभाव में आए। सदा अकेले शांत एकांत में रहने वाले पंत को ये प्रकृति इतनी प्रिय लगी कि उसे ही पंत ने अपनी माँ और पूरा जीवन समझ लिया। आजीवन इसी के बीच जीते रहे और जुड़े रहे। सुख दुख भी आजीवन उनके जीवन से जुड़े, पर उनके बीच से वे सदा एक नहीं राह बनाते रहे। अपनी एक कविता मैं नहीं चाहता चिर सुख में उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की खेल मिचौली खोले जीवन अपना मुख, सुख दुख के मधुर मिलन से ये जीवन हो परिपूर्ण, फिर धन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो धन, जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति सुख से, मानव जग में बट जाए सुख दुख से ओ सुख दुख से। अविरल दुख है उत्पीड़न, अविरल सुख भी है उत्पीड़न, दुख सुख की निशा दिवा में सोता जागता जग जीवन, ये सांझ उषा का आंगन आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का।
1: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रही थी सुमित्रा नंदन पंत के विचार। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। हम अपने सुनने वालों को बता दें 7:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंडिया। दिन में 1:10 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे फिल्म दिल जले के कुछ गीत, और दिन में 2:30 पर कार्यक्रम होगा एक ही कलाकार। आज के इस कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे कल्याण जी आनंदी जी द्वारा कंपोज किए गए कुछ फिल्मी गीत। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। 6:45 होने को हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। आज आप सुनेंगे बालकांड भाग 102।

श्री राम के विनय भरे मधुर वचन सुनकर भी ऋषि परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शिव का धनुष तोड़ने का अपराधी होकर भी वो उन्हें ही ज्ञान सिखा रहे हैं। उनकी यह धारणा भी पक्की हो गई कि राम की सहमति से ही उनका छोटा भाई कटु वचन बोल रहा है। श्री राम ने मन ही मन में सोचा कि दोष तो लक्ष्मण का है और मुनि का क्रोध अब उनकी ओर बढ़ रहा है। सच ही तो है कि कभी कभी सीधापन भी भ्रामक होता है, तभी तो लोग टेढ़े लोगों की वंदना करते हैं। किंतु प्रकट रूप में राम ने परशुराम के कुठार के आगे अपना सिर झुका दिया। बोले, स्वामी, जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत हो आप वही कीजिए। भला स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? सच तो यह है कि मुनिवर का वीरों का सा वेश देखकर लक्ष्मण ने कुछ कह डाला। वैसे वास्तव में दोष लक्ष्मण का भी नहीं, उसने उनका नाम तो सुना था किंतु पहचानने में भूल हो गई। यदि वो मुनि के वेश में आते तो लक्ष्मण ने उनकी चरण धूली ले ली होती।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ता। नवदिल्ल्यां राष्ट्रपतिभवने ह्यः 26-2000तमवर्षस्य द्वितीयरक्षा अलङ्करणसमारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्या शौर्यपुरस्कारान्

0: बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी। इस वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसीलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियमन भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। ये नीति कल से चरणबद्ध ढंग से लागू होगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को शून्य उत्सर्जन परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अगले 4 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है। तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत जबकि 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया है। दोनों टीमें निर्धारित समय पर एक एक गोल की बराबरी पर थीं। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। इसके साथ ही पैराग्वे राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर गई है, जबकि जर्मनी विश्व कप से बाहर हो गई है। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। ब्राजील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Minister of Petroleum and Natural Gas said that with effect from tomorrow, The temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets or public sector oil marketing companies. According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in international fuel prices by maintaining stable retail prices of petrol and diesel. This led to a significant price difference between retail fuel prices and those applicable to bulk consumers. Union Info

संगीतिका कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं बलजीत सिंह की गाई शपथ। आइए अब सुनते हैं गुरु गोविंद सिंह की रचना।

अभी आप सुन रहे थे गुरु गोबिंद सिंह की रचना। गायक कलाकार थे बलजीत सिंह। इसके साथ ही संगीतिका कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम की तो भरी गुड मॉर्निंग का। आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ हूं मैं नवीन सक्सेना। उन तमाम गीतों का गुलदस्ता लेकर जो आज दिन भर आपका मूड बना देंगे, आपको खुश रखेंगे और सामने वाला जब आपको देखेगा ना तो कहेगा कि ये मुस्कुराहट क्यों है।

आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग नवीन के साथ और खूबसूरत गीतों के गुलदस्ते के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि ये गीत आपको पसंद आ रहे होंगे। तो और भी बहुत से गीत हैं मेरे आज के इस गुलदस्ते में। कामचोर फिल्म का गीत सुनते हैं, आइए।

स्पेक्ट्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग और तमाम गीतों का गुलदस्ता लेकर मैं इस समय आपके साथ हूँ। खूबसूरत गीतों का गुलदस्ता है और उम्मीद है कि आपको ये गीत पसंद भी आ रहे होंगे। वक्त कितनी जल्दी हाथों से निकल जाता है पता भी नहीं चलता और अभी ऐसा लग रहा था कि आपसे बहुत सारी बातें करनी है। बहरहाल एक और शानदार गीत हम आपकी नज़र करने जा रहे हैं और ये भी आपका दिन बनाएगा और इस गीत में ख़ास बात क्या है ये भी आप जानेंगे समझेंगे। तो अब हमें आपको ये भी बता सकते हैं कि आज 10:10 पर एक और बेहद कार्यक्रम होगा आपकी पसंद जिसमें आपके फरमाइशी फिल्मों के गीत हम आपको सुनवाएंगे। ईमेल पर आधारित ये प्रोग्राम होगा तो आप उसमें भी हमारे को अपने पसंद के गीत भेज सकते हैं और आपके नाम के साथ हम उस गीत को आपके लिए लेकर आएंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे गीतों भरे गुड मॉर्निंग। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर 8 बजने को है। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया।

0: अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक

0: दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा, और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य

0: इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में, और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है।

0: कि इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है। तो लगभग 15000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान के फजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 36 आम शहरियों की मौत हुई है जबकि 163 अफराद जख्मी भी हुए हैं। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की यह खुली जारहियत अफगानिस्तान की खुदमुख्तारी और इख्तदार आला पर हमला और खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा है। ये इकदाम पाकिस्तान के उस मुसलसल तर्ज अमल की अक्कासी करता है जिसके तहत वो अपने दाखिली मसाइल और नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए अपनी सरहदों से बाहर तशद्दुद का सहारा लेता है। ताहम ऐसी कोशिशें बेसूद साबित होंगी। भारत ने हमले में हलाक होने वालों के अहल खाना से गहरी ताजियत का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। भारत ने एक बार फिर अफगानिस्तान की खुदमुख्तारी आज़ादी और इलाकाई सालमियत के लिए अपनी गैर मुतजलजल हिमायत का एआदा किया है। भारतीय फौज ने उन मीडिया रिपोर्टों को मुस्तरद कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में दरअंदाजी की है और वहां कैंप कायम किए हैं। भारतीय फौज ने कहा है कि ऐसी तमाम खबरें बेबुनियाद और गलत हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। मरकजी वजारत सेहत ने मरकजी हुकूमत के तमाम महकमों और इदारों को आवारा कुत्तों के हमलों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के रहनुमा खतूत पर आज से अमल करने की हिदायत की है। ये हिदायत उस वक्त सामने आई हैं जब हुक्काम आवारा कुत्तों के हमलों से निपटने अवाम की हिफाजत और अदालती हिदायत की तामील के मकसद से इकदाम को यकीनी बना रहे हैं। तमाम मुतल्लिका महकमों से कहा गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि सुप्रीम कोर्ट के रहनुमा खतूत पर मुकर्रा मुद्दत के अंदर अमल दरामद किया जाए। ये हुक्म गुज़िश्ता साल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया है जिसका मकसद अवामी मकामात को खासतौर पर बच्चों और मरीजों के लिए महफूज बनाना है जहां उनका रोज़ आना जाना होता है। हर साल 30 जून को संथाल इनकलाब की याद में हूल दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर कबायली इनकलाबियों सिद्धू कानू चांद भैरव और फूलो झानू को खिराज अकीदत पेश किया जाता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी गांव में हर साल हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जमा होते हैं। 30 जून 1855 को आज ही के दिन सिद्धों और कान्हू ने भोगनाडी से बरतानवी हुकूमत और इस्तेहसाल पर मबनी सरमायादारान निज़ाम के खिलाफ संथाल हूल का आगाज किया था। कबायली तारीख के माहिरीन इस तहरीक को आज़ादी की पहली मुनज़्ज़म जिद्दोजहद करार देते हैं। मौरखीन का कहना है कि तकरीबन 20,000 लोगों के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मुसल्ला जिद्दोजहद का आगाज हुआ जिसमें संथालों के अलावा दीगर मकामी तबकात भी शामिल हुए। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: हूल दिवस के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सिद्धू कान्हू चांद भैरव और फूलो झानू को खिराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि इन शहीदों ने कबायली सोसाइटी के खिलाफ इस्तेहसाल और उनकी शनाख्त के तहफ़ की खातिर तारीखी जद्दोजहद की। उन्होंने मजीद कहा कि शहीदों की गिरा कदर कुर्बानी मुल्क के सभी शहरियों को तरगीब देती रहेगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हूल दिवस के मौके पर संथाल इनकलाब के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया है। वज़ीर दाखिला ने कबायली शनाख्त और मादरे वतन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वालों को याद किया। अमरीका और ईरान आबनाए हुरमुज़ से मुतालिक तनाज़े को हल करने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में बातचीत करेंगे। ये मीटिंग ऐसे वक्त हो रही है जब आबनाए हुरमुज़ के मामले पर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है। आबनाए हुरमुज़ दुनिया की अहम तरीन समंदरी गुजरगाहों में से एक है जहाँ से दुनिया का तकरीबन 20% खाम तेल गुजरता है। गुज़िश्ता जुमेरात से शुरू होने वाली कशीदगी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों ने ईरान के साथ कशीदगी ख़त्म करने और ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मफाहमत नामे तक पहुंचने की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों को मुतासिर किया। फुटबॉल में कल रात अमेरिका के टेक्सास के ह्यूस्टन स्टेडियम में ब्राज़ील जापान को 1-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। 5 बार के चैंपियन ब्राज़ील के लिए गैब्रियल मार्टिनेली ने इंजरी टाइम में गोल

0: किया। राउंड ऑफ 32 के एक और मुकाबले में जर्मनी और पैराग्वे का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। इसके बाद पेनाल्टी शूटआउट के तहत मैच का फैसला किया गया। पैराग्वे की टीम ने अपने हवास पर काबू रखा और जर्मनी पर 3-4 गोल से तारीखी जीत दर्ज की। इस तरह जर्मनी टूर्नामेंट से बाहर हो गया। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज शुमाल मशरकी भारत, ज़ेली हिमालयी मगरबी बंगाल, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला और माहे के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। आइंदा 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 रोज़ा सालाना अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र सिक्योरिटी इदारों ने पंजाब से जम्मू कश्मीर तक यात्रा के पूरे रास्ते पर हिफाजती इंतजाम मजीद सख्त कर दिए हैं। यात्रियों की महफूज आमद और रफ्त को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज मॉक ड्रिल कर रही हैं। निगरानी के जदीद निज़ाम फ़ाल किए जा रहे हैं। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान आज से शुमाल मशरकी रियासतों का दोरोज़ा दौरा करेंगे। जनाब चौहान आसाम के गुवाहाटी में एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद आजम।
1: कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सेशल्स के दौरे को सफाए अव्वल पर नुमाया तौर पर शाया किया है। रोज़नामा प्रताप ने सुर्खी लगाई, सेशल्स के कामयाब दौरे के बाद वतन रवाना हुए मोदी। 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल घरेलू ईंधन से मुतालिक हंगामी इकदाम के खात्मे की खबर को भी उर्दू अखबार ने सफाए अव्वल पर जगह दी है। रोज़नामा सहाफ़त ने सुर्खी लगाई, ईरान अमरीका माहदे की पेश नज़र हुकूमत का अहम फैसला। राजस्थान और हरियाणा आबी तनाज़े पर समझौती खबर को भी अखबार ने नुमाया तौर पर शाया किया है। रोज़नामा प्रताप ने सुर्खी लगाई, तकरीबन 3 दहाइयों पुराना मसला हल। दिल्ली समेत 5 रियासतों कर्नाटक, मेघालय, झारखंड और महाराष्ट्र में आज से SIR के आगाज़ की खबर को भी अखबार ने अहमियत के साथ शाया किया है। रोज़नामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई, इलेक्शन कमीशन की तमाम शहरियों से ताउन की अपील। अखबारों में शाया होने वाली अहम बैनुल-अक़वामी खबरें इस तरह, अमरीका और ईरान हमले रोकने और मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर मुत्तफिक।
0: आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। मरकजी हुकूमत ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की फरोख्त और तकसीम पर आयद आरजी पाबंदियां खत्म करने का फैसला किया है। वज़ीरे आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मगरबी बंगाल सरकार रियासत में यकसां सिविल कोड नाफिज करेगी। इत्तला तो नशरियात की वजारत ने भारत की फिल्म इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए अहम फैसलों का ऐलान किया है। दिल्ली हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुतालिक पॉलिसी को मंजूरी दी है। 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से मुस्तस्ना करार दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान के फजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में 36 शहरी हलाक जबकि 163 अफराद जख्मी हो गए हैं। अमरीका और ईरान आबनाए हुरमुज से मुतालिक तनाज़े के हल के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में बातचीत करेंगे। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सरोद पर बजाया राग अहीर भैरव। कलाकार हैं श्रीमती तिवारी, सुमित तिवारी। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे हैं ईशान शर्मा।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में इस समय हम आपको सुनवा रहे हैं स्मित तिवारी का सर्वोत्र बजाया राग अहिर भैरव।

0: अभी आप सुन रहे थे सरोद पर बजाया राग अहीर भैरव। कलाकार थे स्मित तिवारी। आपके साथ तबले पर संगत की थी ईशान शर्मा ने। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।
1: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है।
2: आज हम बात कर रहे हैं कैंसर के बारे में, उसके जुड़ी समस्याओं के बारे में, और उसमें जो वर्तमान अनुसंधान है वो किस तरह से उपयोगी हो रहे हैं, हो सकते हैं, उनके बारे में। हमारे साथ विशेष जानकारी देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अमित वर्मा। आप भारत के प्रसिद्ध मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजिस्ट और कैंसर जेनेटिसिस्ट हैं, और पिछले करीब 20 वर्षों से अधिक का अनुभव इनका है इस क्षेत्र में अनुसंधान और उपचार करने का। डॉक्टर अमित वर्मा जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
3: धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ कि मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी एक नई पद्धति है कैंसर के ट्रीटमेंट की। ये बहुत पुरानी नहीं, लगभग 10 से 15 साल पुरानी एक डेवलपमेंट है। और मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ एम्स के टाइम से, जब मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन एम्स के अंदर कैंसर मेडिसिन में करी। और उसके बाद उसके अंदर हमने काफी कुछ रिसर्च करी कैंसर के ऊपर, जहाँ पे हम लोगों ने समझा कि कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है जीनोमिक लेवल पे। उसके बाद हायर स्टडीज करने के लिए मैं एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर ह्यूस्टन टेक्सास, जो वर्ल्ड का नंबर वन कैंसर सेंटर माना जाता है, वहाँ पे हम लोग और फर्दर रिसर्च करने के लिए गए। और हमने देखा कि कुछ ट्रीटमेंट संभव है अगर हम कैंसर को बहुत डीप में समझ पाए तो।
2: बहुत अच्छा। जब हम कैंसर की बात करते हैं, प्रायः हम सब लोगों ने अपने अध्ययन के दौरान सेल के बारे में सुना कि यह एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो हमारे शरीर की रचना करता है, कोशिका बोलते हैं। तो आखिर ये कोशिका किस तरह से एक कैंसर की कोशिका में बदल जाती है, इसका विज्ञान क्या है, और अर्ली स्टेज में इसकी पहचान कैसे की जा सकती है?
3: कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में मेजर फर्क है वो जीन्स लेवल पे होता है। हर सेल के अंदर दो तरह के जीन्स होते हैं जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन। ऑन्कोजीन नॉर्मल सेल को कैंसर करने में मदद करता है और ट्यूमर सप्रेसर जीन कैंसर को रोकता है। अगर ये बैलेंस किसी कारण से नॉर्मल सेल में खराब हो जाए या ऑन्कोजीन ज्यादा एक्टिव

0: म्यूटेट हो जाए या ट्यूमर सप्रेसर जीन वीक पड़ जाए तो नॉर्मल सेल कैंसर सेल में बदल जाता है। ये सिचुएशन जब चलती रहती है और जब कैंसर मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाते हैं, एक समय आता है कि वो कैंसर दिखना शुरू हो जाता है और उसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन बहुत समय लगता है एक सेल को मल्टीपल सेल्स बनने में और कैंसर पूरा होने में। जहां तक की बात है सिम्टम्स की, सिम्टम्स कैंसर के आते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं वजन कम होना, जो अनइंटेंशनल वेट लॉस है कि हमने खाना पीना कम नहीं किया फिर भी वजन कम हो रहा है। किसी को कोई कॉफ चले जा रहा है, खांसी चले जा रही है, उसमें खांसी के अंदर ब्लड आ रहा है, बगल में या जांघों में गांठे हैं जो ठीक नहीं हो रही हैं, उसके बारे में हम लोग चिंता करते हैं कि शायद कैंसर ना हो। किसी को कॉन्स्टिपेशन या डायरिया रिपीटेडली हो रहा है या बॉडी में कोई ऐसा दर्द है जिस चीज को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जो मस्कुलर पेन नहीं है, तो कोई भी ऐसे सिम्टम्स जो आदमी को तंग करते हैं, फीवर इज ऑल्सो अ सिम्टम फॉर कैंसर। सो अगर ये सब चीजें किसी को कई हफ्तों से चल रही हैं, तो एक बार डॉक्टर के पास जाके पता करवाएं कि भाई ये चीज कैंसरस तो नहीं है। और स्पेशली 50 साल की उम्र के बाद ये कैंसर की संभावना जब बढ़ती है तो आदमी को ज्यादा जागरूक होना जरूरी है।
1: तो हम अपने सुनने वाले के लिए चाहेंगे कि आप बारी बारी से विभिन्न तरह के जो थेरेपी हैं उनके बारे में बताएं कि आपके अनुभव से जो हाल के वर्षों में इम्यूनोथेरेपी इसने कैंसर उपचार को किस तरह से बदला है या एक नई दिशा दी है।
0: मैं शुरू करूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर से। अगर कैंसर एक लोकल जगह पे, इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड डिजीज, तो हमारे पास क्योर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और हमारे पास क्योर करने का तरीका सिंपल सर्जरी होता है। सर्जरी करके ट्यूमर को निकाल देते हैं तो क्योर हो जाता है। तो जो कैंसर दिखता है उसको सर्जरी से निकाला जाता है। और कुछ सेल्स होते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक डिजीज, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको हम लोग लोकल रेडिएशन देके या कुछ माइक्रोस्कोपिक सेल्स जो बॉडी में जा चुके हैं ब्लड के सर्कुलेशन के थ्रू या लिम्फेटिक्स के थ्रू, उसको हम लोग कीमोथेरेपी देके कंट्रोल करते हैं। ये तो था लोकलाइज डिजीज का सिलसिला। अब आता है कि बीमारी ऑलरेडी अपनी जगह छोड़ के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जा चुकी है, इसको बोलते हैं स्टेज 4 कैंसर या मेटास्टेटिक कैंसर। ऐसे सिचुएशन पे हम लोग सर्जरी करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम हर जगह से ट्यूमर को नहीं निकाल सकते, ना ही लोकल रेडिएशन देना पॉसिबल है, क्योंकि बीमारी बहुत जगह फैल जाती है। ऐसे केस में हमारे पास जो बचता है वो होता है सिस्टमिक थेरेपी, जिसके अंदर कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का रोल आता है। कीमोथेरेपी सारे मल्टीप्लाइंग सेल्स को मारती है, टारगेट थेरेपी सिर्फ कैंसर सेल्स को मारती है, और इम्यूनोथेरेपी क्या करती है जो आपका सवाल है, कि वो हमारे इम्यून सेल्स को कैंसर के अगेंस्ट एक्टिवेट कर देती है, तो कैंसर बॉडी में कहीं पर भी होगा तो वो मर जाता है। ये बहुत ही अच्छी थेरेपी है एज कम्पेयर टू कीमोथेरेपी। इसके जो रिस्पॉन्सेज है वो 80% से ऊपर होते हैं, अगर कुछ पेशेंट को फेवरेबल क्राइटेरिया मीट करते हैं तो। और देखा जाता है कि इम्यूनोथेरेपी देने से पेशेंट की लाइफ बढ़ती है, कैंसर बहुत लंबे समय तक कंट्रोल रहता है, साइड इफेक्ट्स कम आते हैं, और ये आज के जमाने के हिसाब से लेटेस्ट पद्धति है कैंसर ट्रीटमेंट की।
1: इसके अलावा एक होता है व्यक्तिगत उपचार, जो पर्सनलाइज्ड थेरेपी या जेनेटिक प्रोफाइलिंग की बात आप लोग करते हैं, ये किस तरह की है जो जेनेटिक प्रोफाइलिंग होती है पर्सनलाइज्ड थेरेपी में, और कुछ देशों ने इसमें कुछ सफलताएं हासिल की है तो उनकी सत्यता क्या है।
0: पर्सनलाइज्ड थेरेपी का मतलब है कि हम पेशेंट के ट्यूमर को डीप स्टडी करते हैं, जीन्स लेवल पे या जीनोमिक लेवल पे पेशेंट को भी स्टडी करते हैं कि जो उसका जेनेटिक मेकअप है, जैसे वो पैदा हुआ है, इस दो इन्फॉर्मेशन के साथ मिलकर हम एक डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पेशेंट के ट्यूमर के अंदर कोई म्यूटेशन पॉजिटिव है, जैसे लंग कैंसर पेशेंट के अंदर EGFR म्यूटेशन के होने से उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, और जिसके पास EGFR म्यूटेशन नहीं होगी उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। हम पहले से ही प्रिडिक्ट करते हैं कि ये दवाई इसको काम करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी तो देने के हम ना तो टाइम वेस्ट करते हैं ना पैसे वेस्ट करते हैं, सही तरीके से इलाज होना, इसको पर्सनलाइज्ड थेरेपी बोली जाती है।
1: आपने पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट की बात की, तो एक जो ट्यूमर की आपने चर्चा की थी कि ट्यूमर के रूप में बढ़ने लगता है, तो जो एक ट्यूमर हेटरोजेनेटी की बात करते हैं, ये क्या एक उपचारक को, एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ को, आपके जैसे अंकोलॉजिस्ट को किसी तरह के निर्णय लेने में, खास करके क्लिनिकल या अन्य पर, आप लोग कैसे उसका निर्णय लेते हैं।
0: कैंसर जब अपनी जगह से मल्टीप्लाई करना शुरू करता है तो जो पेरेंट सेल और डॉटर सेल वो अलग अलग होते हैं। अब जो डॉटर की भी डॉटर होंगे तो और अलग होंगे, तो एक समय आता है कि सारे के सारे सेल्स में डिफरेंट डिफरेंट क्लोन्स इकट्ठे हो जाते हैं, जो एक से दूसरे से मैच नहीं करता, और ये सारा का सारा जीनोमिक लेवल पे होता है। देखने में वो सेम कैंसर होता है माइक्रोस्कोप के नीचे, लेकिन जेनेटिक लेवल पे उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक ऑल्टरेशंस होती हैं। इसको बोलते हैं ट्यूमर हेटरोजेनिटी। इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रा ट्यूमर हेटरोजेनिटी, एक ट्यूमर के अंदर मल्टीपल कैंसर सेल्स का होना, और एक होता है इंटर ट्यूमर हेटरोजेनिटी, अगर वही कैंसर लंग में पहुंचा है, लिवर में पहुंचा है, ब्रेन में पहुंचा है, स्टमक में पहुंचा है, तो अलग अलग कैंसर की जेनेटिक पॉसिबिलिटीज, तो इसको बोलते हैं इंटर ट्यूमर हेटरोजेनिटी। ये दोनों ही अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए हम लोग कुछ नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं।

0: इसको बोलते हैं लिक्विड बायोप्सी, जहाँ पे हम ब्लड टेस्ट करते हैं और ब्लड टेस्ट करके पेशेंट के बॉडी में जहाँ पे भी ट्यूमर ग्रो हो रहा है और जो भी जेनेटिक ऑल्टरेशन उसके होंगे वो एक बारी में पिकअप हो जाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि कैंसर को एक ही तरह से देखें और ऐसा इलाज निकले कि जो मैक्सिमम क्लोन्स को, मैक्सिमम ऑल्टरेशन को, मैक्सिमम ट्यूमर सेल्स को मार सके। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी के लिए, लेकिन कुछ तरीके से हम इसको ओवरकम कर पाते हैं।
1: तो क्या कुछ और तरह के ऐसे इनोवेटिव ट्रीटमेंट हैं जिन पर काम चल रहा है या और आगे किए जाने की जरूरत है जो आशाजनक हो?
0: टेक्नोलॉजी हर साल नई नई आती है, जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टारगेट थेरेपीज पैदा हो रही हैं हमारे वर्ल्ड ओवर में, और हमारे पास नेक्स्ट लेवल ऑफ इम्यूनोथेरेपी डेवलप हो रही है, जहाँ पे हम इम्यूनोथेरेपी के साथ इम्यूनोथेरेपी का कॉम्बिनेशन देते हैं और रिस्पॉन्स को एनहेंस करते हैं। और अब आके नया टेक्नोलॉजी आ रही है, इसको बोलते हैं थेरेप्यूटिक वैक्सीन, जहाँ पे हम कैंसर के सेल को जेनेटिक लेवल पे समझ के उसके लिए स्पेशल एक mRNA वैक्सीन बनाते हैं जो पेशेंट स्पेसिफिक होता है और वो पेशेंट को हेल्प करता है। और एक और टेक्नोलॉजी है, इसको बोलते हैं कार टी सेल थेरेपी। ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो मैंने आपको बताई, इसमें बहुत डीप रिसर्च चल रही है और आने वाले समय पे आप देखेंगे कि हमारा ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी से छोड़कर इन सब चीजों में चल रहा होगा, और ये बहुत अच्छी होप है, लेकिन बहुत कुछ आना बाकी है और बहुत रिसर्च वर्ल्ड ओवर चल रही है इस समय।
1: आपको क्या लगता है कि कैंसर निदान और रिसर्च में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोगी हो सकता है या हो रहा है, खास करके वैक्सीन निर्माण के लिए? कैंसर के अगेंस्ट में कुछ वैक्सीन आ सकते हैं क्या, या कुछ आए हैं या उन पर कार्य चल रहा है?
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है हमारी रिसर्च के अंदर और आने वाले समय में ट्रीटमेंट के अंदर भी। हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं उसके अंदर बहुत मेहनत करके एक आंसर निकाल पाते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे को उसको स्पीड अप कर सकता है। हमारी जो मेहनत है रिसर्च करने की, पूरे वर्ल्ड में जो रिसर्च चल रही है उसमें से काम की चीज निकालने की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए वो काम कर सकता है। तो हम एक समय के अंदर ज्यादा पेशेंट को अच्छा इलाज पहुंचा सकते हैं, पहली बात। सेकंड बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ अच्छे प्रेडिक्शंस कर सकता है, स्पेशली फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर ड्रग्स। जैसे आपने वैक्सीन का नाम लिया, जहां पे हमारे को ट्यूमर के जीन्स को समझना है तो उस चीजों पे वो हमको हेल्प कर सकता है, दैट इज कॉल्ड ड्रग डेवलपमेंट। ये दो मेजर कैटेगरीज है। थर्ड कैटेगरीज ये है कि कौन से पेशेंट को कौन सी दवा दी जाए, कौन सी डोज पे दी जाए और कब दी जाए, ये सारे फैक्टर्स बहुत नुआंस्ड है, मतलब कि बहुत ही बारीक है। ऐसे केस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे को एक फास्ट स्पीड देता है, जिससे कि हर आदमी को बराबर इलाज मिले, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो शहर में हो, चाहे वो किसी कोने में हो इंडिया के, उसको इक्वल इलाज मिल सके। वो इस चीज के लिए भी मोहताज ना हो कि बड़े शहर में बड़े हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर के पास ही उसको अच्छा इलाज मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबके लिए हेल्थ केयर बराबर पैदा कर पाएगा।
1: आपने एक ड्रग डेवलपमेंट की बात की, तो आजकल कई जगह ड्रग रेजिस्टेंस के भी खतरे देखे जा रहे हैं और यह एक बड़ा चैलेंज है, खास करके स्वास्थ्य अनुसंधान और स्वास्थ्य जो विशेषज्ञों के लिए। तो इस क्षेत्र में कैंसर के उपचार में क्या ड्रग रेजिस्टेंस देखा गया है? अगर इस तरह की कोई चुनौती है तो क्या स्ट्रेटजी आप लोग अपनाते हैं?
0: कैंसर बहुत स्मार्ट सेल होता है, जैसे ट्रीटमेंट देते हैं वो उसको इनिशियली रिस्पॉन्ड करता है और फिर धीरे धीरे दवाई का रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है, तो ये रेजिस्टेंस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैंसर सेल में एक प्रोटीन होता है, इसको बोलते हैं PGP। ये एक पंप की तरह काम करता है, दवाई को जैसे ही हम कैंसर सेल के अंदर पहुंचाते हैं ये पंप दवाई को कैंसर सेल से बाहर निकाल देता है, तो दवाई पहुंच के भी पेशेंट को मिलने के बाद भी कैंसर सेल के तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे बहुत तरह के मैकेनिज्म होते हैं कि जो कैंसर ट्रीटमेंट को नलीफाई कर देते हैं, उसको इनइफेक्टिव बना देते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। तो बहुत सारी चीजें कैंसर के मैकेनिज्म का पार्ट बनती हैं कि जहाँ पे दवाइयाँ शुरुआत में काम करती हैं बंद हो जाती हैं, और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि दवाइयाँ बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं, जिसको बोलते हैं इनहेरिटेड रेजिस्टेंस, शुरुआत से ही रेजिस्टेंट है, सभी देखा गया है। तो जो ऑन द वे रेजिस्टेंस डेवलप करती है उसको बोलते हैं एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, और जो शुरुआत से रेजिस्टेंट है उसको बोलते हैं इनहेरिटेड रेजिस्टेंट। तो ऐसे केस के अंदर हमारे पास या तो हम दवाइयाँ चेंज करते हैं या दवाइयों के साथ दवाइयों को कंबाइन करते हैं कि रेजिस्टेंस को ओवरकम किया जाए, लेकिन हर समय जितना संभव नहीं हो पाता, ये हमारा रियल लाइफ का चैलेंज है, इसलिए कैंसर को हम 100% जीत नहीं पाए हैं।
1: एक आपने बात की अब चर्चा के दौरान mRNA, जो आपका मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड हम लोग जानते हैं, ये क्या है इसके बारे में जरा बताइए।
0: बहुत अच्छा आप बारीकी पे आना चाहते हैं, और मैं ऑडियंस को समझाना चाहता हूँ कि कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में जो डिफरेंस होता है, नॉर्मली जीन्स लेवल पे तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होता है और कुछ जेनेटिक ऑल्टरेशन होते हैं। ये जेनेटिक ऑल्टरेशन क्या करते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ mRNA, जिसको बोलते हैं हम लोग मैसेंजर RNA, डेवलप करता है। उस डिफरेंट लेवल ऑफ मैसेंजर RNA से डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोटीन पैदा होते हैं, जो हम कैंसर सेल्स और नॉर्मल सेल्स में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। तो हम लोग ये जो वैक्सीन डेवलप करते हैं, जो चल रही है रिसर्च चल रही है।

0: उसमें उस यूनिक एमआरएनए सीक्वेंस को जो कैंसर सेल्स में पाई जाती है, जो नॉर्मल सेल्स में नहीं पाई जाती, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आर्टिफिशियली बनाते हैं और बनाने के बाद पेशेंट को वैक्सीन के रूप में, इंजेक्शन के रूप में लगा दिया जाता है। फिर जब बॉडी में एमआरएनए पहुंचता है तो एमआरएनए एबनॉर्मल प्रोटीन बनाता है जिसके अगेंस्ट हमारे इम्यून सेल्स एक्टिवेट होते हैं और ये वैक्सीन के रूप में काम करता है। वंस हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ट्यूमर कहीं पे भी बॉडी में होगा उसके पास जाके उसको मारने की कोशिश करते हैं। पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि नॉर्मल सेल नहीं है और ये एबनॉर्मल सेल है, मींस कैंसर सेल है, उसको मारते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी एमआरएनए टेक्नोलॉजी है। ये हमने देखी थी टेक्नोलॉजी जब हम कोविड टाइम पे, तो उस समय इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया, सक्सेस बहुत अच्छे मिले। अब उसी चीज टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है कैंसर के लिए, लेकिन हर आदमी की, हर पेशेंट की वैक्सीन अलग होगी। ऐसा नहीं कि एक वैक्सीन जो बनाई है वो हर आदमी को लग जाए, तो हर आदमी के लिए अलग बनानी पड़ती है। एक चैलेंज है इस समय।
1: तो आप अपने अनुभव से हमारे सुनने वालों को बताइए कुछ आशाजनक बातें कि जिनका ट्रीटमेंट सही हुआ, सफल हुए, उनकी आयु बढ़ी, गुणवत्ता भी मेंटेन किया जाए, तो उस सब के लिए भी किस किस तरह के कदम आप लोग उठाते हैं या सुझाव देते हैं ऐसे लोगों के लिए?
0: हम लोगों ने बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को देखा है और समझा है और हमने पाया है कि स्टेज फोर कैंसर क्योर तो नहीं हो पाता, लेकिन इतना अच्छा कंट्रोल हो जाता है जैसे कि हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि किसी पेशेंट को डायबिटीज या हाइपरटेंशन होती है उसको हम क्योर नहीं कर पाते, लेकिन पेशेंट बीमारी के साथ चलता रहता है और ट्रीटमेंट चलता रहता है। तो ये अचीवमेंट हम लोगों ने देखी है। काफी हमारे कैंसर पेशेंट इस समय ट्रीटमेंट के बाद बीमारी कंट्रोल में है, लेकिन ट्रीटमेंट उनका कंटिन्यू है और कई साल हो जाते हैं। ये सारा जो कुछ हमने समझा है जेनेटिक लेवल पे या जीनोमिक लेवल पे, जब हम ट्यूमर को हिट करते हैं उसके रूट्स पर, क्योंकि जो कैंसर की रूट्स हैं वो जेनेटिक ऑल्टरेशंस होती हैं, उसको हिट करने के बाद हम देखते हैं कि कैंसर वाकई ही खत्म हो जाता है।
1: डॉक्टर अमित वर्मा जी, आपने कैंसर के कारण, उसके निदान के लिए जो विशेष उपचार है, टारगेटेड थेरेपी की बात की, पर्सनलाइज्ड थेरेपी की बात की, किस तरह से आप उसको अर्ली एक्शन के लिए लोगों को जानकारी होनी चाहिए, ड्रग रेजिस्टेंस के स्टेज में किस तरह की बातें की जाती है और किस तरह से AI इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभाता है, निभा सकता है, इन सब बातों पर विस्तृत जानकारियां दी, का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद धन्यवाद।
2: इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का ये अंक सम्पन्न होता है। वाचन स्वर नीलम मलकानिया और प्रस्तुत करता थे दिलीप झा।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम में अभी आपने सुना मॉलिक्यूलर आण्विक ऑन्कोलॉजी में वैज्ञानिक प्रगति। डॉक्टर अमित वर्मा मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी ऑन्कोलॉजिस्ट और कैंसर जेनेटिस्ट से दिलीप झा की बातचीत। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 9:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: Rockmusik. सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र

0: देश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहन के विकास पर 8000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाके में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फुटबॉल में फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। 2 घंटे तक चले रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमें 1-1 से ड्रॉ पर थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July 2026, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari has said that the Uniform Civil Code UCC will be implemented in the state. The Chief Minister announced in the Assembly that a draft proposal of the bill will be presented at the State Cabinet meeting on July 2nd. Following the models of Gujarat, Uttarakhand and Assam, a committee has been formed under the leadership of retired Supreme Court Judge Justice Ranjana Desai. Chief Minister stated that the committee will conduct a study on a total of 9 subjects including marriage, divorce and adoption and submit its report within 4 weeks, based on which the state government will formulate the code. Lok Sabha Speaker Om Birla has paid tribute to the heroes of the Santhal Hul on the occasion of Hul Day. In a social media post, Mr. Birla remembered the immortal martyrs who made the supreme sacrifice for India's independence, tribal identity and social justice. He also paid homage to thousands of brave tribal men and women who, under the leadership of Sidho and Kanhu, launched the historic Santhal Hul against colonial rule, exploitation and injustice. Lok Sabha Speaker Om Birla has extended greetings to all elected representatives on International Day of Parliamentarism and to democracy across the world. In a social media post, Mr. Birla said that Parliament is the supreme expression of the people's aspirations, rights and trust, where ideas are churned, policies are crafted and the direction of the nation's future is determined. Delhi government has approved an ambitious electric vehicle EV policy. As per the new policy, EV cars priced up to 30 lakh rupees have

दोस्तों आदाब, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। हर दिन की अपनी एक रफ्तार होती है। कोई घर से निकलने की तैयारी में है तो कोई दफ्तर पहुंच चुका है, कोई सफर में है तो कोई अपने काम के बीच रेडियो की आवाज पर जरा सा ठहर गया है। और अगर आप भी उन श्रोताओं में हैं जिन्होंने इस पल के लिए कुछ मिनट संभाल कर रखे हैं तो आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों मैं हूं दुर्गेश सारस्वत और अगले एक घंटे तक हम मिलकर सजाने वाले हैं ऐसी महफिल जिसकी मेजबानी करूंगी मैं, लेकिन रंग भरेंगे आप, क्योंकि यहाँ गीत हम नहीं चुनते। यहाँ हर दिन आपके भरोसे, आपकी पसंद और आपकी फरमाइश के साथ हमारे स्टूडियो तक पहुँचती है। तो देखते हैं आइए किस शहर से पहली दस्तक, किस श्रोता ने भेजा है पहला संदेश और कौन सा गीत बनने जा रहा है आज की महफिल की शुरुआत। दोस्तों पहला संदेश हमें आया है नवीन सक्सेना जी का, दिल्ली के आरकेपुरम से। तो आइए सुनते हैं इनकी ही पसंद का ये पहला गीत। पेश है आज की पहली फरमाइश।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों, कितना खूबसूरत गीत था जो हमने पहले बजाया, और सच पूछिए तो अगर शुरुआत ऐसी हो तो यकीन मानिए सफर और भी दिलचस्प हो जाता है। वैसे एक बात पूछूं, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ गीतों का कोई मौसम नहीं होता? उन्हें सुनने के लिए बस मन का तैयार होना काफ़ी होता है, और शायद यही वजह है कि बरसों पुराने गीत भी आज नए लगते हैं, और नए गीत कभी कभी बरसों का साथ दे जाते हैं। तो बस इसी अपनेपन के साथ चलिए पढ़ते हैं अपना अगला संदेश जो हमें भेजा है भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल, कमला रानी, बोधराज खोरवाल, उत्तम नगर, दिल्ली से। इन्होंने फरमाइश की है 3 Idiots फिल्म की और बोल हैं जुबी डुबी। चलिए सुनते हैं इन्हीं की पसंद का ये प्यारा सा गीत।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर प्लेटफॉर्म पर संगीत मौजूद है, लेकिन रेडियो की बात ना फिर भी अलग है। यहाँ सिर्फ गीत नहीं मिलते बल्कि एक साथ उन्हें सुनने का अपनापन मिलता है, और यही वजह है कि बरसों बाद भी रेडियो की आवाज़ लोगों के दिलों में उसी गर्म जोशी के साथ बसती है। खैर, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले संदेश की तरफ। ये संदेश हमें आया है इंदिरा नगर भवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू नेहा देवांगन। इन्होंने फिल्म अनाड़ी फिल्म के क्या मौसम आया है गीत की फरमाइश की है। श्रोता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें संदेश भेजने के लिए। हम कोशिश करेंगे आपके गीत को अपने कार्यक्रम में शामिल करने की। अगला संदेश हमें भेजा है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपक मल्होत्रा, गावाया मल्होत्रा, भाऊ सुच्चा सिंह पाठक। इन्होंने भी हमें किसी भी फिल्म में शामिल करने, किसी भी गीत के साथ शामिल करने की फरमाइश की है। भोपालगढ़ राजस्थान से धमेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। इसके अलावा टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा जी ने भी हमें संदेश भेजा है। दोस्तों, आपके संदेश हमारे पास आते जा रहे हैं और हम उन्हें अपने कार्यक्रम में

दोस्तों आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त रेडियो होस्ट दुर्गेश सारस्वत। दोस्तों कभी कभी लगता है कि गीत भी इंसानों की तरह होते हैं। कुछ पहली ही मुलाकात में अच्छे लगने लगते हैं और कुछ धीरे धीरे हमारे अपने बनते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि बिना वजह ही वो धुन होठों पर चली आती है। और ऐसे ही सेम है आपके संदेश, कभी कभी धीरे धीरे आते हैं और कभी बहुत तेज़ी से हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आते हैं। ऐसे ही एक संदेश आया है हरजिंदर सिंह भाटिया जी का, लिखते हैं, दुर्गेश जी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, ऑलवेज बी हैप्पी, बहुत दिनों बाद आप आई हैं, आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्होंने बाजीगर फिल्म के छुपाना भी नहीं आता, दिखाना भी नहीं आता फिल्म की गीत की फरमाइश की है। इसके अलावा अगला संदेश हमें मिला है मनाली हिमाचल से हर्ष विनय विनीत और रोजस भाई चंडीगढ़ से, शेफाली शेफी डेविस बिमला और सतीश अनेजा ने अनेजा जी ने हमें ये संदेश भेजा है, किसी भी गीत में खुद को शामिल करने की फरमाइश की है। इसके अलावा अगला संदेश हमें मिला है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा जी और बिमला अनेजा जी का। और अगला संदेश हमें भेजते हैं ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, ये रामचरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी ने हमें संदेश भेजा है। इसके अलावा झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया जी भी किसी भी गीत में खुद को शामिल करने की फरमाइश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आप ही की फरमाइश पे चलाते हैं अगला गीत।

दोस्तों कहते हैं हर शहर की अपनी एक पहचान होती है, लेकिन जब उस शहर से कोई श्रोता अपनी फरमाइश भेजता है तो लगता है जैसे उस शहर की खुशबू भी हमारे स्टूडियो तक पहुंच गई है। तो दोस्तों चलते हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शहादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, चैतन्य मस्कीन चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु रिधाना रिधान खुराना जी हमें संदेश भेजते हैं। लिखते हैं, हो सुरगेश सारस्वत जी, आप जब भी शो लेकर आती हैं हमारा मेल गायब हो जाता है, ऐसा क्यों है? देखिए हम कोशिश करते हैं आप सभी के मेल्स को अपने कार्यक्रम में शामिल करने की। इन्होंने फरमाइश की है फिल्म हैसियत की सॉन्ग धीरे धीरे सुबह। चलिए हम आपके गीत को अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अगला संदेश हमें मिला है भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, अरुद्र वर्मा दतरंगी के। इन्होंने इसके अलावा सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी भी किसी भी गीत में खुद को शामिल करने की फरमाइश के साथ हमें संदेश भेज रहे हैं। इसके अलावा किशोर नगर अमरावती के हीरामन शेंडे सिद्धार्थ कुड़ाड़े जी भी हमें अपनी पसंद का किसी भी गीत में शामिल करने की फरमाइश की है। उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे, बलार शाह से सूरज लोंडे, प्राची, एकलव्य जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। चलिए दोस्तों खैल बाजार पानीपत से भी नरेश मल्होत्रा, नीतू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, पापा जी, नानक चंद्र मल्होत्रा जी भी हमें अपने कार्यक्रम में शामिल करने की फरमाइश कर रहे हैं। दोस्तों आपके संदेशों के भरोसे हम अपना कार्यक्रम चला रहे हैं और सुनते हैं आप ही के संदेशों के अनुसार ये

दोस्तों, रेडियो की ना एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ जो संदेश होते हैं और आपकी जो आवाज़ होती है वो पहचान बन जाती है, और जो श्रोता होते हैं आपके परिवार बन जाते हैं। इसी कड़ी में बढ़ते हैं अपने अगले संदेश की तरफ। लिखा है प्रसारक महोदया जी, नमस्कार। फिल्म तेरी मेहरबानियाँ और बोल दिल बेकरार था, ये संदेश हमें पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब से गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा ने भेजा है। इसके अलावा कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमांश ने भी हमें संदेश भेजा है। अगला संदेश आया है रिस्पेक्टेड दुर्गेश सरस्वती, वेरी हैप्पी हेल्दी ट्यूजडे, गुड मॉर्निंग। इन्होंने भी अपने किसी भी गीत में हमें शामिल करने की फरमाइश की है। इसके अलावा हमें संदेश भेजा है खैल बाजार पानीपत से, जान पहचान वाले सब शामिल हो गए हों तो गैरों को भी शामिल कर लीजिए दीदी जी, बाकी आपकी मर्जी है, शामिल करें ना करें। देखिए, हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं आप सभी को अपने कार्यक्रम में शामिल करने की। अगला संदेश हमें भेजा है, नमस्कार जी, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत यशो, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह जी ने कोई भी गीत सुना दें प्लीज़, हमें ये फरमाइश की है। इसके अलावा आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग जी सहारनपुर से हमें संदेश भेज रहे हैं अपने किसी भी गीत में शामिल करने।

दोस्तों, रेडियो की ना एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। कई ऐसे संदेश होते हैं जिन्हें पढ़ते हुए लगता है कि बरसों से एक दूसरे को जानते हैं और जबकि मुलाकात कभी भी नहीं हुई होती। ये रिश्ता जो रेडियो का इतना खास है ना, बस इसी से हम और आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला संदेश हमें भेजा है संदीप मक्कर जी ने। आज हमारी एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी, इसलिए हमें एक दूसरे के लिए फिल्म से सॉन्ग हम बने तुम बने सुनवा दीजिए। जी ज़रूर, हम आपकी फरमाइश को अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। इसके अलावा अगला संदेश हमें वनडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जी ने किसी भी गीत में शामिल करने की खुद को फरमाइश के साथ संदेश भेजा है। इसके अलावा प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा, यशस्वी वर्मा जी ने छत्तीसगढ़ पलारी से भी हमें संदेश भेजा है। और लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी जी ने भी रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर से हमें संदेश भेजा है। कार्यक्रम पेशकर्ता आदरणीय प्यारी दीदी जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज की आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें एक संदेश भेजा और आप अपने संदेश हमें यूँ ही भेजते रहिए। फिलहाल चलते हैं अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर और सुनते हैं आप ही की फरमाइश पर ये गीत।

दोस्तों, समय कैसे उड़ जाता है इसका एहसास शायद ऐसे ही कार्यक्रमों में होता है। अभी तो महफिल जमी ही थी, घड़ी इशारा कर रही है आपसे विदा लेने का दोस्तों, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम आपसे पुनः मिलेंगे इसी कार्यक्रम में, इसी मंच पर, नई फरमाइशें, नए संदेश और ऐसे ही गीतों के साथ जिन्हें सुनकर शायद आप भी कह उठें, अरे यही तो सुनना था। चलिए दोस्तों, अपनी दोस्त दुर्गेश सारस्वत को दीजिए अनुमति, अगले कार्यक्रम में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए

0: और लीजिए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। ये आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश और विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भाग लेने का भी कार्यक्रम है। इसके बाद श्री चौहान पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे के क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी संघर्ष विराम के बाद हो रही है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानू के बलिदान का स्मरण किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मोरक्को, ब्राजील और पराग्वे फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। आज खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस। आकाशवाणी का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुरमंजरी में गोपाल सिंह का बजाया राग तोड़ी गिटार पर।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंश्री में गोपाल सिंह का बजाया गिटार पर राग तोड़ी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
1: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे के क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से इस्तीफा देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए UPI सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक स्तर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला

घर आंगन नमस्कार। संतोषम परम सुखम नीति के दोहे में इस दोहे को हम में से अधिकांश ने पढ़ा और सुना तो होगा, पर इसे अमल में जिसने भी रखा है वो ही वास्तविक रूप से सुखी है, खुश है। क्या कहते हैं आप इस बारे में दोस्तों? आज के सुविचार के साथ घर आंगन में मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट मनीषा बोस स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का। आपको बता दूं, आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमें और जुड़े हुए हैं इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज़ पर। साथ ही AIR लाइव न्यूज 24x7 पर भी हमारा प्रसारण आप सुन सकते हैं। सच है दोस्तों की प्राप्त ही पर्याप्त है। जब ऐसा लगने लगे तो समझिए कि संतोष की राह पर आप आगे बढ़ रहे हैं। और सच्चे सुख की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है, क्योंकि संतुष्टि ही सबसे बड़ा सुख है। स्वयं के पास जितने भी संसाधन हैं, अगर हम उनसे तृप्त रहना सीख जाते हैं, संतुष्ट होना सीख जाते हैं, तो हमारे सुख की शुरुआत हो जाती है। अधिकांशतः हम सभी अधिक से अधिक धन और सुविधा जुटाने में लगे हुए हैं। क्या कहते हैं आप इस बारे में? अधिक पाने की चाह में हमने दिन रात का सुख चैन खो दिया है ना? याद रहे दोस्तों, जीवन में मिली अच्छी चीजों के प्रति संतोष और कृतज्ञता का होना हमारे तनाव को कम करता है, साथ ही हमारा मानसिक संतुलन भी अच्छा बना के रखता है। पर इसका अर्थ ये भी बिल्कुल नहीं है कि आप सपने देखना ही छोड़ दें, बल्कि सपनों के लिए आप आगे बढ़ें, लेकिन जो मिला है उसका सम्मान करते हुए। क्योंकि साथियों, जिस दिन नजरिया प्राप्त में पर्याप्त का हो जाए, तो देखने का ऐसा नजरिया जब होता है तो जीवन में अहोभाव की शुरुआत हो जाती है।

तीसरी मंजिल। इस फिल्म से आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में इस खूबसूरत से गीत को। और दोस्तों, हर साल हमारे देश में जून से सितंबर के बीच का समय मॉनसून का होता है। ये बात और है कि इस साल जून का पूरा महीना बीत गया और बारिश का इंतजार अभी भी कई स्थानों में बरकरार है ना। ऐसे में बारिश का एहसास आज हम आपको अपनी आज की प्रश्नोत्तरी में कराएंगे। आपको बताना है कि बारिश की पहली यादगार क्या है, कैसी यादें जुड़ी हैं आपकी बारिश की बूंदों से, आपके जीवन में इससे जुड़ी सबसे खूबसूरत याद कौन सी है। अपनी यादें हमारे साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि हर बारिश अपने साथ एक कहानी भी लेकर आती है। बताइए हमें अपने मैसेज के थ्रू fmgold@gmail.com पर, और सुनिए फिलहाल ये प्यारा सा गीत।

शासन प्रणाली में संसदों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करना और नागरिकों के प्रति उनकी जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। उसी तरह आज प्रख्यात राजनेता, शिक्षाविद, विचारक, अर्थशास्त्री और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी को याद करने का दिन है, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है और भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रखने और अंग्रेजों के द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को दुनिया के सामने उजागर करने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। आज के दिन हम उन्हें नमन करते हैं। साथ ही आज हिंदी और मैथिली साहित्य के महान साहित्यकार और प्रगतिशील लेखक बाबा नागार्जुन उर्फ वैद्यनाथ मिश्र जी की जयंती है। अपने बेबाग अंदाज और लोक जीवन से गहरे जुड़ाव के कारण उन्हें भारत का आधुनिक कवि भी कहा गया है। साहित्य जगत में उनके समृद्ध लेखन का आधार उनकी बहुभाषीय दृष्टि, गहरी लोक संस्कृति और यथार्थवादी चेतना रही। बहुजन समाज, किसान, मजदूरों की पीड़ा और प्रगतिशील विचारों का रेखांकन उनके लेखन की विशेषता रही। उनकी जयंती पर हम उन्हें भी नमन करते हैं। आपको बता दूं, आप ट्यून है FM गोल्ड 100.1 पर आपके अपने घर आंगन कार्यक्रम में, और आज की प्रश्नोत्तरी आपकी बारिश की पहली यादगार क्या है हमें बताना ना भूलें। हम कर रहे हैं प्रतीक्षा।

महेंद्र कपूर की आवाज में आप सुन रहे थे गुमराह फिल्म से इस खूबसूरत से गीत को। और दोस्तों, अब बात करते हैं हरियाली की। हरियाली दिल को सुकून तो देती है, साथ ही जीवन को ना खुशनुमा भी बनाती है। इसीलिए हरियाली से बेजार होना बेमानी है। और दिल्ली जैसे बड़े महानगर में हरियाली सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन की जरूरत भी है।

और देखा होगा आपने कि जिस तेजी से हमारा पर्यावरण बदल रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसे में पेड़ों के प्रति संजीदा होना जरूरी है। पर्यावरण विशेषज्ञों की माने तो एक परिपक्व पेड़ जो है वो साल भर में 100 से 150 किलो तक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और ऑक्सीजन हमें देता है। विशेषकर शहरों में ये वृक्ष अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव को कम करने में अपनी खास भूमिका निभाते हैं। भाई पर्यावरण के प्रति सरकार चिंतित है, हम चिंतित हैं, इसीलिए तो स्वच्छ वातावरण, जैव विविधता और जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन पार्क भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन हम अपनी भागीदारी इसमें कैसे दे सकते हैं? अपने आसपास खाली जगहों और पार्कों में पौधे लगाकर उनकी देखरेख कर सकते हैं, और यदि वहां पहले से ही हरियाली है तो अपना श्रमदान कर वृक्षों की सेवा और उस स्थान पर स्वच्छता की जिम्मेदारी ले सकते हैं, है ना? क्योंकि सिर्फ पेड़ लगाने से काम नहीं बनने वाला भाई, बल्कि उन्हें बचाने और संवारने की जिम्मेदारी भी लेना होगा, है ना? सड़क किनारे खड़े वृक्ष हमारे साइलेंट हीरो हैं दोस्तों। बिना मांगे हमें साफ हवा, छाया और संतुलित पर्यावरण देते हैं, और साथ ही एक पौधे की जिम्मेदारी अगर हम ले रहे हैं तो हम अपने शहर के ग्रीन लंग्स को मजबूत करने की दिशा में एक कवायद अपनी बढ़ा रहे हैं, है ना?

हरियाली और रास्ता, इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में आप ये गीत सुन रहे थे। और सच है दोस्तों, हरियाली का नाता बारिश की बूंदों से तो है ही, है ना। और आज की हमारी प्रश्नोत्तरी भी इसीलिए है क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे हैं बारिश की बूंदों का। बारिश की पहली यादगार क्या है आपकी, आपके जीवन से जुड़ी हुई, आपको हमें बताना है fmgoldga@gmail.com पर। और हमारे एक श्रोता साथी हैं जो हमें भेज चुके हैं इसका उत्तर, और उन्होंने भेजा है जो, उसके पहले मैं उनका नाम बताती हूँ। सुदर्शन मुखी हैं, अनिता मुखी हैं, सिमरन मुखी हैं, शांति नगर सोनीपत से। बहुत ही खूबसूरत सी याद इन्होंने भेजी है कि बचपन और बारिश दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं उनके लिए। बारिश में स्कूल बैग का भीगना भी एक मीठी याद की तरह है। कागज़ की कश्ती चलाना, गलियों में बारिश में दौड़ लगाना, ये सब यादगार लम्हे हैं जो हमें हमेशा याद आते हैं। जी बहुत खूबसूरत बात आप कह रही हैं, लगभग ये यादें हम सभी की मिलती जुलती हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर बहुत अच्छा लगे तो हमें ज़रूर ऐसी बातों के लिए, जल संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि बारिश की बूंदों का इंतज़ार हम सभी कर रहे हैं। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा संदेश दिया है और इसी पर ही हमारी अगली चर्चा है, क्योंकि दोस्तों देश के अधिकांश हिस्सों में इस साल मॉनसून का इंतज़ार हम सभी कर रहे हैं। कुछ जगह हो गई है पर कुछ जगह नहीं हुई है। और देखिए ना, जून का महीना जाने को है और हमारी दिल्ली में बारिश का आता पता नहीं है। दरअसल मानसून के कमज़ोर रहने और देरी से आगे

बढ़ने का जो कारण बताया जा रहा है वो अलनीनो प्रभाव को कहा जा रहा है, जिसके चलते बारिश की नन्ही बूंदों के लिए हम सभी दिल्लीवासी तो लालायित हैं ही। वैसे भी देश के कई हिस्सों में लोग बारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैच द रेन जैसे अभियान भी चलाए हैं और मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से वर्षा के जल की प्रत्येक बूंद को सहेजने का आग्रह किया है, क्योंकि जल है तो कल है ना साथियों। पानी की हर एक बूंद को बचाने का दृढ़ संकल्प ही है कैच द रेन, जिसमें बारिश का पानी जहां गिरे जब गिरे उसे वहीं से सहेजा जाए, क्योंकि जल है सबके लिए जरूरी। इसीलिए सभी की भागीदारी का आह्वान किया गया है जल संचय जन भागीदारी अभियान में। आप भी इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे, बताती हूँ। अपने घर से ही इसकी शुरुआत कीजिए। नल के टैप से गिरने वाली हर बूंद का सार्थक प्रयोग कीजिए, जैसे ब्रश करते समय बेतरतीब तरीके से पानी ना बहने दें, और जब जरूरत हो तभी टैप को चालू रखें। शावर की जगह बाल्टी और मग का इस्तेमाल करें। कपड़े धोते समय पानी को ज्यादा ना खर्च करते हुए और कपड़ों को ड्रेन करने के बाद उस पानी को पोछे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आप सोसाइटी में रहते हैं तो ये प्रयास करें कि आपकी सोसाइटी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम हो सके। एसी से निकलने वाले पानी को भी एक जगह इकट्ठा करके आप पौधों में सींच सकते हैं। भाई चाहत हो तो रास्ते तो निकल ही आते हैं, है ना दोस्तों। भविष्य में बारिश की नन्ही बूंदों का इंतजार ना करना पड़े, इसके लिए आज से ही सामुदायिक एकजुटता जरूरी है। और इसी के साथ ही हमें अपने अपने क्षेत्रों में पानी की बर्बादी ना होने देने का प्रण करना है, क्योंकि जल ही हल है।

इस खूबसूरत से गीत को फिल्म दो बूंद पानी से। दोस्तों, स्टाइलिश और ट्रेंडी दिखने के लिए कौन नहीं चाहता, हर कोई उसके लिए बहुत सारे प्रयास करता है ना। और हम में से बहुत से लोग हैं ऐसे दिखने के लिए हम बहुत सारे कपड़े खरीद लेते हैं जो तादाद में ज़्यादा होते हैं और कई बार ओल्ड फैशन हो जाने की वजह से हमारे वार्डरोब को भी भर देते हैं। क्या कहते हैं आप इस बारे में? मुझे लगता है हम सभी की अलमीरा में ऐसे कपड़े ज़रूर होंगे। अगर ऐसे में आप मेट्रो से सफ़र करते हैं तो एक जानकारी है मेरे पास आपके लिए जो आपके बहुत काम की हो सकती है और आपके वार्डरोब का भार भी कम कर सकती है। दरअसल दिल्ली सरकार और DMRC ने अर्पण केंद्र नाम से एक नई पहल शुरू की है दोस्तों, जिसके तहत 10 प्रमुख मेट्रो स्टेशंस जिनमें शाहदरा, मोहन स्टेट, रोहिणी वेस्ट, लाजपत नगर, मालवीय नगर, मयूर विहार फेज 1, हौज खास, पंजाबी बाग वेस्ट, द्वारका, शालीमार बाग पर पुराने और इस्तेमाल ना किए गए कपड़ों के लिए कलेक्शन बॉक्स लगाए गए हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं

तो इन केंद्रों में जमा किए गए कपड़ों को एनजीओज और स्वयं सहायता समूह के जरिए रिसाइकल और अपसाइकल किया जाता है ताकि उनके बैग और दरियां जैसी उपयोगी चीज बनाई जा सके। तो आप क्या करें, आप जाते समय जब भी मेट्रो से सफर करें ऐसे कपड़े वहां दे सकते हैं। भाई जब हर कदम स्मार्ट और सस्टेनेबल होगा हमारा, तभी तो बनेगी इको फ्रेंडली हमारी दिल्ली, है ना। तो दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर पुराने कपड़ों के कलेक्शन सेंटर इस सोच से शुरू किए गए हैं कि इस्तेमाल हो चुके कपड़े सीधे कचरे में ना जाएं, बल्कि वे दोबारा उपयोग या रिसाइकलिंग का हिस्सा बने। शहरी ठोस कचरे में एक बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल वेस्ट का होता है दोस्तों, इसलिए हम ऐसा करके इस कचरे को बढ़ने से बचा सकते हैं। तो अगली बार जब आप मेट्रो स्टेशन जाएं तो सिर्फ यात्री बनकर नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनकर जाएं, ऐसे हम आपसे कहते हैं, हमारी गुजारिश है। और आप अपने पुराने कपड़ों को सही जगह जरूर दें और रंग बिरंगी जानकारी गीत सुने सुनाए हमारे साथ यही FM गोल्ड 100.1 पर।

रोटी कपड़ा और मकान, इस फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, मुकेश कुमार और साथियों की आवाज में इस खूबसूरत से गीत को। और दोस्तों आपको बता दें, आप हमारे साथ ट्यून हैं 100.1 एफएम गोल्ड के घर आंगन कार्यक्रम में। और आपके लिए जैसे हम हर बार एक प्रश्नावली लेकर आते हैं, आज की हमारी प्रश्नावली आपको बता दें वो है, बारिश की पहली यादगार क्या है आपकी? आपके साथ ऐसी कौन सी बातें जुड़ी हैं, कौन सी कहानी जुड़ी है, हमारे साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलिए। और हमारा मेल आईडी है fmgoldga@gmail.com पर। आपके संदेशों की प्रतीक्षा में रुख करते हैं अगली बात की ओर। और कार्यक्रम घर आंगन का ये पड़ाव मेहनत, धैर्य और निरंतरता की एक असाधारण कहानी के साथ आपके लिए हाजिर है, और उसका नाम है चारू पांडे। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की रहने वाली चारू पांडे सिर्फ 23 साल की लड़की है, और इस उम्र में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की कुल 19 प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल किया हुआ है, और ऐसा करके उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। कई बड़ी परीक्षाएं पास कर सफलता हासिल करने वाली चारू इतिहास रचते हुए एक ऐसा कदम उठाया है जो युवाओं के लिए प्रेरणा है। फिलहाल वे चेन्नई में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पद पर काम कर रही हैं। लेकिन चारू का सफर हर कहानी की तरह आसान नहीं है दोस्तों। सफलता की जो कहानी होती है उसमें कई मुश्किलें आती हैं। शुरुआत में उन्हें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, कई परीक्षाओं में रिजल्ट उनके पक्ष में भी नहीं आया, लेकिन चारू ने कभी हार नहीं मानी, बल्कि अपनी कमियों और गलतियों से सीखकर अपनी तैयारी को और बेहतर किया। अनुशासनात्मक दिनचर्या और निरंतरता के साथ टाइम मैनेजमेंट ही उनकी सफलता की कुंजी है। हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि स्वावलंबन और जो निरंतर प्रयास होता है ना, उससे आप किसी भी बात को, किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप स्वावलंबन के साथ नवाचार के माध्यम से भी कुछ करना चाहें तो आप खुद ही मुकाबिल नहीं बनते, बल्कि अपने साथ साथ और भी कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं। क्योंकि असली प्रतिभा केवल एक बार की जीत नहीं बल्कि लगातार प्रयासों की ताकत होती है। इसलिए सपनों को मेहनत की रफ्तार ही वर्तमान बनाती है।

दोस्तों, फिल्म काला बाजार से आशा भोसले की मधुर आवाज में इस खूबसूरत से गीत को आप सुन रहे हैं और इसी गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ घर आंगन कार्यक्रम में यहीं पर। और फिर मिलने के वादे के साथ अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे किसी और जगह पर। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।

आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन। घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उससे आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय

0: न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था, जिसके बाद सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई निर्धारित की थी। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते ही अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर वायरल उस फर्जी नोटिस का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बेच रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कॉरपोरेशन ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। जर्मनी विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Eurobank has launched the UPI-based remittance service for cross-border transfers from Greece to India. The initiative is part of the bank's strategic collaboration with the National Payments Corporation of India International Payments Limited. In a social media post, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the inauguration of services at Eurobank marks another important milestone in the global expansion of India's digital payment ecosystem. He added that with UPI now live in Greece, eligible customers can transfer money instantly, securely and seamlessly. Army Chief General Upendra Dwivedi today said the Indian Army derives its strength not from any single individual but from the unwavering faith of its soldiers, commanders, veterans, families and the citizens of the country. General Dwivedi said this while relinquishing the appointment as the Chief of Army Staff in New Delhi today. He emphasized that serving in the Indian Army for over 4 decades has been his greatest privilege.
1: भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों ने
3: आर स्टेडफास्ट सोल्जर्स रिमेन्स डिप्लॉयड अक्रॉस माउंटेन्स डेजर्ट्स ग्लेशियर्स फॉरेस्ट एंड चैलेंजिंग बॉर्डर रीजन्स सेफगार्डिंग द नेशन अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस दे हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस एंड हैव डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सेप्शनल करेज एंड रेजिलियंस इन डाइवर्स ऑपरेशनल एनवायरमेंट्स फ्रॉम डेंस फॉरेस्ट टू यूनाइटेड नेशन मिशंस देयर अनवेवरिंग डेडिकेशन डिसिप्लिन एंड प्रोफेशनलिज्म एग्जेम्प्लीफाइज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स और डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 20 सेकेंड, और अब वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम यानी कि एक ही फिल्म से। और मैं लेकर आई हूँ आज अनुराधा आपके लिए ये कार्यक्रम, और हम बात करते हैं इसमें

एक फिल्म की, उनके गीतों की, कलाकारों की और उससे जुड़ी यादों की। जी हाँ, आज की महफिल सजी है 1996 की चर्चित फिल्म दिल जले। जी हाँ, मैं सुनवाऊंगी आपको फिल्म दिल जले के गाने। 90 के दशक की बात ही कुछ और थी। कैसेट प्लेयर, वीडियो लाइब्रेरी, रविवार की फिल्में और रेडियो पर बजते फिल्मी गीत। उसी दौर में आई थी फिल्म दिल जले, जिसने रोमांस, एक्शन और देशभक्ति का अनोखा संगम पेश किया। इसमें फिल्म के जो मुख्य भूमिकाएं जो निभाई थी वो थे अजय देवगन, जिन्होंने अपने शांत लेकिन प्रभावशाली अभिनय के लिए प्रसिद्धि हासिल की। सोनाली बेंद्रे 90 के दशक की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक थी और साथ ही थी मधु, जिन्होंने कई यादगार फिल्मों में अभिनय किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पहले गीत से, और भी बातें करेंगे हम आपके साथ।

0: दोस्तों, दिल जले की कहानी केवल प्रेम कहानी नहीं है, यह एक ऐसी इंसान की कहानी है जिसकी जिंदगी परिस्थितियों के कारण पूरी तरह बदल जाती है। अर्जुन एक ईमानदार और देशभक्त युवक होता है जो सोनिया से प्यार करता है। कुछ गलतफहमियों और साजिशों के कारण अर्जुन पर अपराध का आरोप लग जाता है और उसकी जिंदगी बदल जाती है। समाज और व्यवस्था से निराश होकर वह आतंकवादियों के बीच पहुंच जाता है। बाद में उसे एहसास होता है कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। अंत में वह देश की रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका भी अपनी निभाता है। दोस्तों, इस फिल्म के जो निर्देशक थे वो थे हैरी बावेजा, जो बड़े पैमाने पर ऐसी ही भावनात्मक और एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। आइए सुनते हैं इसी फिल्म के एक डायलॉग के साथ ये गीत।
1: ये गुलशन, फूल, कलियां, बहार, वादियां, ये मौसम

0: हरियाली, पहाड़, बर्फ, ये कायनात कुछ भी नहीं,
1: कुछ भी नहीं,
0: कुछ भी नहीं। गरन में वो नहीं,
1: वो है कौन?
2: कप्तान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा।
0: नाम?

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दोस्तों, सोनाली बेंद्रे 90 के दशक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थी। उनकी मुस्कान और सादगी दर्शकों को बेहद पसंद आती थी। इस फिल्म में उन्होंने बहुत ही अच्छा अभिनय किया। और दोस्तों, आपको एक रोचक तथ्य बताती हूँ, उस दौर में फिल्मों के प्रमोशन का तरीका आज जैसा नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए फिल्मों की लोकप्रियता का अंदाजा गीतों और पोस्टरों से लगाया जाता था। और दिल जले के गीत रिलीज से पहले ही लोकप्रिय हो चुके थे। श्रोताओं, अगर आपको यह फिल्म याद है तो जरूर याद होगा कि इसकी कहानी में भावनाएं और एक्शन दोनों बराबर मात्रा में मौजूद थे। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये एक मधुर गीत।
6: एक बात मैं अपने दिल में लिए न जाने कब से फिरता हूँ।
5: क्या?
6: कि वो सारे प्रेम पत्र उस मोटी की बजाय अगर तुम मुझे लिखती तो कैसा होता।
7: मैं क्यों लिखूंगी?
6: तो ये सारे कार्ड्स,
7: वो तो
6: किसी को प्रेम पत्र लिखना चाहती थी।
7: नहीं नहीं, छोड़ो मेरा हाथ।
6: आज चोर पकड़ा गया और मैं हाथ छोड़ दूं?

0: दोस्तों, इस फिल्म का संगीत तैयार किया था अनु मलिक जी ने। जी हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि 1996 बॉलीवुड के लिए बेहद खास वर्ष था। इसी दौर में संगीत प्रधान फिल्मों का बोलबाला था और दर्शक कहानी के साथ साथ गीतों को भी उतना ही महत्व देते थे। अब थोड़ा बात कर लेते हैं फिल्म के नायक अजय देवगन की। अपने करियर की शुरुआत से ही वे गंभीर और दमदार भूमिकाओं के लिए पहचाने गए। दिलजले में उनके अभिनय ने दर्शकों और समीक्षकों को दोनों को ही प्रभावित किया। दोस्तों, फिल्म का देशभक्ति वाला पक्ष दर्शकों को बहुत पसंद आया और इसकी वजह से यह केवल रोमांटिक फिल्म बनकर नहीं रह गई बल्कि एक देशभक्ति के जज्बे को नई ऊंचाई तक लेकर गई। जब भी फिल्मों के देशभक्ति गीतों की चर्चा होती है तो भाई यह गीत जरूर याद किया जाता है। तो आइए चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।
1: शाम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
2: क्या कहती हो शामू की माँ?
1: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
2: माँ, जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से, इस देश से।

मेरा मुल्क मेरा देश सुनकर आज भी वही जोश महसूस होता है जो वर्षों पहले होता था। दोस्तों, आज हमने फिल्म दिल जले के गीतों, कलाकारों और उससे जुड़ी यादों को ताजा किया। इसी के साथ आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब लीजिए सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबरां। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अज इस गल ते जोर दिता है कि खेतीबाड़ी खेतर दे विकास तो बिना विकसित भारत दा सुपना साकार नहीं हो सकता। भारत ने वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स FATF नूं दहशतगर्दी वित्त पोषण ते मनी लॉन्डरिंग खिलाफ आलमी लड़ाई दा एक लाजमी थम दसदे अपने मजबूत समर्थन की

0: विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरोबैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरोबैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी BLO विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 BLO पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र BLO को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर BLO और BLA2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1,021 बूथ स्तरीय अधिकारी BLO जिले के सभी 1,021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार

0: हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
1: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे

0: चेहरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमेरिका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हुल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हुल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हुल के अमर शहीदों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हुल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हुल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में 2:30 और ठीक 15 सेकंड हुए हैं और अब वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। आज हम बात करेंगे हिंदी फिल्म संगीत की उस महान संगीतकार जोड़ी की, जी हाँ, जिसने लगभग 4 दशक

दशकों तक अपनी धुनों से श्रोताओं के दिलों पर राज किया। एक ऐसी जोड़ी जिसने रोमांस, दर्द, भक्ति, लोक संगीत और आधुनिकता हर रंग को अपने संगीत में समेटा। जी हाँ, आज का यह विशेष अंक समर्पित है महान संगीतकार जोड़ी कल्याण जी वीर जी शाह और आनंद जी वीर जी शाह। जी हाँ, जिन्हें हम सब कल्याण जी आनंद जी के नाम से जानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं उनके एक लोकप्रिय गीत के साथ।

श्रोताओं, कल्याण जी और आनंद जी का जन्म गुजरात के कच्छ क्षेत्र से जुड़े एक परिवार में हुआ था। उनका परिवार बाद में मुंबई आ बसा। संगीत से लगाव बचपन से ही था उन लोगों का। बड़े भाई कल्याण जी ने संगीत की दुनिया में पहले कदम रखा। कहा जाता है कि उन्होंने क्लेवियोलिन नामक वाद्य यंत्र पर जो धुन निकाली, उन्होंने फिल्मी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। 1950 के दशक में कल्याण जी ने स्वतंत्र रूप से संगीत देना शुरू किया। बाद में छोटे भाई आनंद जी उनके साथ जुड़े और जन्म हुई एक ऐतिहासिक संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की। 1960 का दशक कल्याण जी आनंद जी के लिए सफलता लेकर आया। उनका संगीत सरल भी था और मधुर भी। वे भारतीय लोकधुनों को आधुनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ प्रस्तुत करने में माहिर थे। फिल्म हिमालय की गोद में और जब जब फूल खिले ने उन्हें संगीत जगत की अग्रणी पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। उनकी धुनों में ताजगी थी और आम आदमी की भावनाओं से सीधा जुड़ाव था। आइए सुनते हैं जब जब फूल खिले से ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

दोस्तों, यदि कल्याण जी आनंद जी का नाम लिया जाए और गायक मुकेश का जिक्र ना हो तो बात कुछ अधूरी सी रह जाएगी। जी हाँ, मुकेश की आवाज़ और कल्याण जी आनंद जी का संगीत एक दूसरे के पूरक थे। इनकी जोड़ी ने अनेक अमर गीत दिए। आइए सुनते हैं ऐसा ही एक गीत।

दोस्तों, कल्याण जी आनंद जी रोमांटिक गीतों के भी बादशाह थे। उनकी धुनों में मिठास थी, शब्दों को उभारने की कला थी और भावनाओं को सीधे दिल तक पहुंचाने की क्षमता थी। चलिए महसूस करते हैं यही सब इस गीत के जरिए।

0: दोस्तों 1978 में आई फिल्म डॉन उनके करियर की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक रही। इस फिल्म के गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने रिलीज के समय थे। जी हाँ, आपको तो याद ही होगा वो गीत खई के पान बनारस वाला। जी हाँ, इस गीत ने पूरे देश में धूम मचा दी थी और आज भी वही ये गीत ना चले तो क्या क्या बात होगी। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चका चक, फिर लो पान चबाए। आहा,

श्रोताओं, कल्याण जी आनंद जी ने कई नए कलाकारों को मंच दिया। उनकी संगीत अकादमी और स्टेज शो के माध्यम से अनेक युवा प्रतिभाओं को अवसर मिला। कहा जाता है कि उन्होंने कई उभरते गायकों और वादकों का मार्गदर्शन किया। उनका योगदान केवल फिल्मों तक सीमित नहीं था, बल्कि संगीत संस्कृति के विस्तार में भी रहा। संगीत जगत में उनके योगदान को अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से सराहा गया। करीब 250 से अधिक फिल्मों में संगीत देकर उन्होंने भारतीय फिल्म संगीत को समृद्ध किया। उनकी धुनें आज भी रेडियो, टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समान रूप से सुनी जाती हैं।

दोस्तों, अगर हम आज बात करें फिल्म जगत के स्वर्णिम युग की, अगर हम बात करते हैं तो कल्याण जी आनंद जी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। उनका संगीत पीढ़ियों को जोड़ता है, उनकी धुनों में भारतीयता है, अपनापन है और समय से परे रहने वाली मधुरता है।

दोस्तों उनकी धुनें आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी। फिलहाल मैं छोड़े जाते हूँ आपको इस गीत के साथ और आज के कार्यक्रम एक ही कलाकार में हमने जाना महान संगीतकार जोड़ी कल्याण जी वीर जी शाह और आनंद जी वीर जी शाह के संगीत सफ़र को। और आप सुनते रहिए गीत और मुझे अनुराधा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। दिन के 3 बजे हैं। आप प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी मेलोडियस।

जसपाल सिंह और हेमलता की आवाज में नदिया के पार फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे। अब आपको सुनवाते हैं आज का अर्जुन फिल्म का ये गीत, जिसमें आवाज है शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे एक दूजे के लिए फिल्म से। अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज़ में अली बाबा 40 चोर फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आप सुन रहे हैं फिल्म प्यार झुकता नहीं से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। इसी गीत के साथ ही मैटिनी मेलोडियस कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: सामीन, जिंदगी अगर सिर्फ संजीदगी का नाम होती तो शायद इसके रंग कुछ फीके पड़ जाते। खुश मिजाजी, लतीफ़ मज़ा और फिक्र अंगेज तंज वो अनासिर हैं जो न सिर्फ हमारे लबों पर मुस्कुराहट बिखेरते हैं बल्कि मुआशरे की खामियों की तरफ भी हमारी तवज्जो मबजूल कराते हैं। तंज व मज़ा दरअसल वो फ़न है जो दिल को शादाब भी करता है और जहन को बेदार भी। एक कामयाब मजाह नगार महज कहकहे नहीं बिखेरता बल्कि अपनी ज़राफ़त के ज़रिए ज़िंदगी की तल्ख हकीकतों, मुआशरती नाहमवारियों और इंसानी कमज़ोरियों को इस खूबसूरती से पेश करता है कि सामे मुस्कुराता भी है और सोचने पर मजबूर भी हो जाता है। आज के प्रोग्राम में हम उर्दू तंज़ो मज़ाह की इसी शानदार रिवायत को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए लेकर आए हैं एक दिलचस्प इंशाइया। पेश कर रही हैं शिफा निर्वाण। उन्वान है घर की मुर्गी दाल बराबर।
1: आज का उन्वान है घर की मुर्गी दाल बराबर। मंजिल के पास अपना पता छोड़ चुकी हूँ, मैं वक्त के धारे का निशा मोड़ चुकी हूँ। वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब, क्या शेर है, मतलब क्या शेर है। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया छोड़ो, ये बताओ शेर आखिर है क्या? सवाल है ये, मंजिल वक्त क्या बात हो रही है यहाँ? हमारे घर वाले उर्दू से वाबस्ता नहीं है, बल्कि इनका उर्दू से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन हमारे मज़े हैं कि मुफ्त में सामईन मिल गए, ना कहीं स्टेज सजा ना कहीं खर्च हुआ, लेकिन ये जलेबी जितनी सीधी नज़र आ रही है इतनी है नहीं। तो ये जो मुफ्त में हमें सामईन मिले हैं, अपनी कीमती होने का इदराक तब करवाते हैं जब हम इनके पास अपने अशआर लेकर जाते हैं। अव्वल तो सुनने के लिए हज़ार हाँ मिन्नत समाजत करवाते हैं, फिर अगर मान गए तो खुद चलकर इन्हें अपने अशआर की जर्राही का काम सौंपना पड़ता है। हमारा ये शेर भी इन्हें हजम नहीं हुआ, लेकिन हम भी टिटाई से अपने अशआर को कबूल आम कराने की सोच कर बैठे थे। हमने पूरा पूरा वक्त लेते हुए तशरीह करनी चाहिए कि शायर कह रहा है, लो भला इन्हें कैसे उर्दू आएगी, मुजक्कर मोनस ही दुरुस्त नहीं इनके, पहला बहदफ तीर। अरे ये खुद को ही भूल जाती है, बेटा जी तुम शायर नहीं हो, दूसरा हदफ को चीरता हुआ तीर। भाई के कहने का मतलब है कि शायरा हो शायर नहीं, तीसरा लाज रखने वाला तीर। हम सब समझ रहे हैं। हमने मरियम की तरफ देखा और कहा, इन्हें लोग निर्बाण क्यों कहते हैं, इनके तो हर बात में बाण है। मरियम ने तसल्ली आमेज लहजे में कहा, ये आज जो है कल का मुतजाद भी होगा, वह कल्ब जो मायूस है कल शाद भी होगा। लेकिन इस शेर के बाद मुशायरे की इस नशिस्त में ना तशरी करने की गुंजाइश थी ना तशरी सुनने की, क्योंकि लाज रखने वाले तीर के चेहरे पर हमने कुछ बल देख लिए थे, और इससे पहले कि ये बल हमारे चेहरे पर मुंतकिल हो हमने इस मुशायरे को अगले दिन के लिए मुलतवी कर रखा। तो हमारे इन मुशायरों की खास बात यह है कि इसमें दो ही शायर मतलब शायरात होती हैं। अव्वल रावी इबारत, दोयम मरियम, मेरी छोटी बहन। बस इन दो मजलूम शायरात की शायरी का जो पोस्टमार्टम ये जालिम समाज करता है क्या ही बताऊं। लेकिन इनकी ये तकनीक है बहुत कारसाज। बाज़ दफ़ा तो हमने भी इनकी इस तकनीक का इस्तेमाल दिगर शोरा पर किया, और आप यकीन नहीं करेंगे कि हालात हाजरा के बेशतर बाकमाल शायर बेकमाल शायर मालूम होने लगे। सामईन और शायरात का तो हम बता चुके, अब बात दाद और तहसीन की आती है, तो जनाब सुनते जाइए हमें दाद में क्या क्या वसूल कराया जाता है। शुरू शुरू में सब अच्छा था कि कोई शेर अच्छा लगता तो वाह वाह के साथ दुपर्रर और चॉकलेट वगैरह इनामी तौर पर मिल जाते थे। लेकिन जो जो मुशायरों की तादाद में इजाफा होता गया, कीमत में गिरावट आती गई, हमारी भी और चॉकलेट की भी। अब हालात पल्स कैंडी के चल रहे हैं जिसके मादूम होने में बिल्कुल वक्त नहीं। वक्त से याद आया कि हमारी वक्त की पाबंदी ना करने पर तंज करते हुए एक बार अम्मी ने कहा था, वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता। इस पर हमने मजाक में कह दिया, वक्त का क्या है, वह तो हमारे पीछे पीछे दौड़ता है। अब वो दिन है और आज का दिन, हर घड़ी को दिखाकर पूछा जाता है, जो तुम्हारे पीछे दौड़ने वाला वक्त है वो इस घड़ी का है। बल्कि अरसे तक हर घर आए मेहमान से बशान जिक्र किया जाता कि देखो हमारी लड़की

0: पीछे वक्त चलता ही नहीं, दौड़ता भी है, बस दिखाई नहीं देता। कहती है तुझको खल के खुदा गायबाना क्या। आतिश साहब का तो पता नहीं, लेकिन हमारे घर को फैज़ पहुंचाने वाली खुदा की खल्क हमें बहुत कुछ कहती है। मिसाल के तौर पर इस मुशायरे का ये हाल सुन ले कि हम मासूम बच्चों ने सोचा सबको अपने तख्लीकी काम से आशना करवाएं। हमने सब घर वालों को मुशायरे के लिए जमा किया कि आज घर पर मुशायरा करेंगे, हम शेर सुनाएंगे, आप वाह वाह कीजिएगा। लेकिन जिस उम्मीद का दामन हमने पकड़ रखा था, वह दामन माँ अपने मालिक सामईन की तरफ लुढ़क गया। मरियम को शेर पढ़ने के लिए मदो किया गया। मरियम ने कहा, अर्ज किया है, लोग रहते हैं कई फिक्रे शबे तार लिए, इसको क्या कहिए हमें अंजुमे कमजो है अजीज। वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब। लेकिन ये तो बताओ कि शायर के पास फिक्र के अलावा भी कुछ होता है, और ये दूसरे मिस्से में तुमने झूठ बोला है ना, तो तुम लोग झूठ भी बोलते हो। अरे बहन, तुम तो पूरी ट्यूबलाइट जलाकर सोती हो, अंजुमे कमजोर से तुम्हारा क्या ताल्लुक। और ये तो बताओ, ये तार का क्या चक्कर है, और अंजुम कौन, पल्ले मोहल्ले वाली। मरियम ने कहा, रहने दे, एक और शेर सुनिए कि वह अच्छा है। जमीने दहर पे आंधी की राते हमारी आंख सुबह देखती है। वाह दुबर्रर दुबर्रर, शायरा अच्छी मालूम होती है। अम्मी ये मेरा शेर है, झूठ कह रही हो ना तुम, इसमें तो सुबह उठने की बात हो रही है। बेटा जी, सुबह का मतलब 8 बजे नहीं होता, सुबह का मतलब सूरज की रात के बाद मुंह दिखाई से होता है। तुम्हारी मुंह से सुबह का कोई सरोकार नहीं। इसकी पूरी गजल होने तक पता नहीं क्या क्या सवाल और तंज कसे जाते रहे। फिर हमारी बारी आई, हमने सलाम के बाद अपने चंद बेजोड़ शेर सुनाए और कुछ इंशाइये की फिजा बताई। मैंने पहला शेर पढ़ा कि गुम होकर हम तन्हाई में तकदीर के पन्ने लिखते हैं, अकवाल बुलंद भी करते हैं, तदबीर के पन्ने लिखते हैं। अरे वाह, शेर तो अच्छा है, लेकिन बहन तुम्हें नहीं लगता ये किसी और का शेर होना चाहिए, तुम्हारी शख्सियत पर जच नहीं रहा। लो भला, आज पता चला कि आलसी लोग भी अकवाल बुलंद करते हैं और तदबीर और करते हैं। वाह, अच्छा इंकशाफ हुआ हम पर, हमने इन बातों को नजरअंदाज करते हुए अगला शेर पढ़ा। बताऊं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ हूँ, मैं अपने आप ही में गुमशुदा हूँ। ना बहन ना, ना बताओ तुम कौन हो, बल्कि ये बताओ कि तुम्हें खुद पता है तुम कौन हो, या हम बताएं कि तुम कौन हो। मुशायरा बर्खास्त हो गया, और कुछ हो भी नहीं सकता था। लेकिन जब हमारे मुशायरों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा देखा गया, तो इन मुशायरों की रोकथाम के लिए एक हंगामी इजलास का इनेकाद हुआ, और सब लोगों को हॉल में इकट्ठा होने का फरमान जारी हुआ। हम माँ कलम कागज पहुँचना चाहते थे, अरे भाई पढ़ रहे थे, लेकिन चार हाथों ने हमें उठाया और हवा से बातें कराते हुए हमें सीधा इजलास का सामीन बना दिया। सदरे वाला यानी अम्मी को तकरीर के लिए कहा गया। इस अहम मुद्दे पर सदरे वाला यानी अम्मी ने अपनी तकरीर का आगाज कुछ यूं किया कि अव्वल इन मुशायरों की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं होती। ज़रूरत क्या, मैं कहती हूँ कोई आखिर मुझे इनका मकसद ही समझा दे तो बड़ी बात है। एहतजाज की आवाज़ बुलंद होने ही वाली थी कि दूसरे सामईन ने अपनी कोहनी से इसे दबा दिया। कुछ हलचल देख कर अम्मी रुक गई, फिर दोबारा अपनी तकरीर शुरू करते हुए बोली, ये क्या तुम शायरी के झमेलों में उलझ रही हो, अपनी जिंदगी का मकसद तलाश करो। जिस पर मरियम ने बेसाख्ता शेर पढ़ दिया। दास्ताने जीस्त के किरदार है जब हम सभी, देखती हूँ मैं अमल अपना कि किस मंजिल में है। इस सलाहियत पर अम्मी की घुरियों की सलामी मरियम ने मौसूल की, और मेरे दांत और आँख इस सलामी के ताप से चमक उठे। मरियम की उंगली और अम्मी की निगाहों का रुख मेरी तरफ होना था कि मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, ये हवा कब इधर चली आई।
1: घर की मुर्गी दाल बराबर, इस उनवान के तहत अभी आप ये इंशाइया सुन रहे थे। पेश कर रही थी शिफा निर्बान। और आइए अब जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में समात करते हैं ये खूबसूरत गजल।

0: का कलर याद आया, और बल्ली मारों के मकी थे गालिब, बल्ली मारों के मकी थे गालिब, है वही मेरा भी घर याद आया, कि बल्ली मारों के मकी थे गालिब, है वही मेरा भी घर याद आया। और जब मुझे दर्दे कमर याद आया, उनकी मालिश का हुनर याद आया। एक गजल के चंद अशार और पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। मतला है, तेरे गुस्से तेरी फिटकार की ऐसी तैसी, तेरे गुस्से तेरी फिटकार की ऐसी तैसी, है यही प्यार तो इस प्यार की ऐसी तैसी, तेरे गुस्से तेरी फिटकार की ऐसी तैसी, है यही प्यार तो इस प्यार की ऐसी तैसी। और हर घड़ी नाक पे गुस्सा ही धरा रहता है, हर घड़ी नाक पे गुस्सा ही धरा रहता है, तेरे तपते हुए रुखसार की ऐसी तैसी, हर घड़ी नाक पे गुस्सा ही धरा रहता है, तेरे तपते हुए रुखसार की ऐसी तैसी। और मुझ पे लट्टू है दिलो जान से सहेली तेरी, शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि मुझ पे लट्टू है दिलो जान से सहेली तेरी, अब तेरे नाज की इनकार की ऐसी तैसी, मुझ पे लट्टू है दिलो जान से सहेली तेरी, अब तेरे नाज की इनकार की ऐसी तैसी। और जिसकी टक्कर से फ्रैक्चर मेरी टंगड़ी में हुआ, जिसकी टक्कर से फ्रैक्चर मेरी टंगड़ी में हुआ, तेरे अब्बा की उसी कार की ऐसी तैसी, जिसकी टक्कर से फ्रैक्चर मेरी टंगड़ी में हुआ, तेरे अब्बा की उसी कार की ऐसी तैसी। और चूड़ियों की भी खनक अब तो न भाए दिल को, चूड़ियों की भी खनक अब तो न भाए दिल को, अब तो पायल की भी झनकार की ऐसी तैसी, चूड़ियों की भी खनक अब तो न भाए दिल को, अब तो पायल की भी झनकार की ऐसी तैसी। इतनी मेहनत पे भी आया ना निखर कर चेहरा, खास तौर से शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि इतनी मेहनत पे भी आया ना निखर कर चेहरा, छः छः घंटे तेरे सिंगार की ऐसी तैसी, इतनी मेहनत पे भी आया ना निखर कर चेहरा, छः छः घंटे तेरे सिंगार की ऐसी तैसी। और आ गया हूं तेरे कूचे में इसी अज़्म के साथ, आ गया हूं तेरे कूचे में इसी अज़्म के साथ, करके जाऊंगा मैं दो चार की ऐसी तैसी, आ गया हूं तेरे कूचे में इसी अज़्म के साथ, करके जाऊंगा मैं दो चार की ऐसी तैसी। और ऐसे चरबे के हुनर उसने दिखाए साहब, ऐसे चरबे के हुनर उसने दिखाए साहब, करके रख दी मेरे अशआर की ऐसी तैसी, ऐसे चरबे के हुनर उसने दिखाए साहब, करके रख दी मेरे अशआर की ऐसी तैसी। और ये शेर भी मुलाहिजा करें कि पी के काढ़ा मेरी रग रग में जवानी आई, पी के काढ़ा मेरी रग रग में जवानी आई, अब तेरे शरबते दीदार की ऐसी तैसी, पी के काढ़ा मेरी रग रग में जवानी आई, अब तेरे शरबते दीदार की ऐसी तैसी। और उनका कुर्ता तो सिया ठीक है दर्जी ने मगर, उनका कुर्ता तो सिया ठीक है दर्जी ने मगर, करके रख दी मेरी शलवार की ऐसी तैसी, उनका कुर्ता तो सिया ठीक है दर्जी ने मगर, करके रख दी मेरे शलवार की ऐसी तैसी। और ए गजल तू जो कहे उसको बना दूं मुर्गा, ए गजल तू जो कहे उसको बना दूं मुर्गा, जिसने कर दी तेरे मेयार की ऐसी तैसी, ए गजल तू जो कहे उसको बना दूं मुर्गा, जिसने कर दी तेरे मेयार की ऐसी तैसी, और तेरे गुस्से तेरी फिटकार की ऐसी तैसी, है यही प्यार तो इस प्यार की ऐसी तैसी।
1: सामीन, अभी आप जनाब इकबाल फिरदौसी से उनका मजाहिया कलाम सुन रहे थे। प्रोग्राम के आखिर में आइए आबदा परवीन की आवाज़ में समात करते हैं ये खूबसूरत गज़ल।

सामीन, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम बज़्मे जिंदा दिला। तरतीब वो पेशकश थी इंतज़ार सैफी की। उर्दू मजलिस का आज का ये प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपने मेज़बान सरफराज आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधार

0: समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO 29 जुलाई तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे, ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों तथा देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। उन्होंने नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपी। इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज सचेत ने मंगलुरु के तट पर एक समुद्री खोज और बचाव अभियान के दौरान मुश्किल में फंसी भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव मंजू माथा से 6 मछुआरों को बचाया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब समुद्र में मंजू माथा के ढांचे को नुकसान पहुंचने और नाव में पानी भरने के बाद सभी बचे हुए लोगों को रिमोट से चलने वाले लाइफ बॉय की मदद से बचाया गया। बचे हुए लोगों को मदद और स्थानीय अधिकारियों को सौंपने के लिए न्यू मैंगलोर लाया जा रहा है। भारत ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप पीड़ित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने चिकित्सा सहायता और आपात सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल चालू है और आपदा में घायल हुए लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान की जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज बताया कि सरकार ने देश भर में दुर्घटना की आशंका वाले और भूस्खलन संभावित सड़कों की पहचान की है और 50,000 करोड़ रुपए की लागत से सुधार कार्य शुरू किए हैं। नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि उचित साइनेज, लेन मार्किंग और अंडरपास सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सड़क इंजीनियरिंग सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। जर्मनी फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की ये पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Indian Coast Guard ship Sachet has rescued 6 fishermen from the distressed Indian Fishing Boat or IFB Manju Matha in a maritime search and rescue operation off the coast of Mangaluru. In a social media post, ICG said that all the survivors were rescued using remote-operated life buoys after IFB Manju Matha suffered hull damage and flooding in rough seas yesterday. ICG added that survivors are being brought to New Mangalore for aid and handover to local authorities. The Ministry of Defence said that the operation stands as a testament to the Indian Coast Guard's unwavering commitment to safeguarding life at sea. The Special Intensive Revision SIR of Electoral Rolls has begun in Delhi, Karnataka, Meghalaya, Maharashtra and Jharkhand today.

जिस किसी को भी इनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त हो तो कृपया थाना प्रभारी नंद नगरी दिल्ली में संपर्क करें। खोए हुए व्यक्ति का नाम है अभिलाष, पुत्र राजू। इनकी आयु 37 वर्ष है। शरीर की बनावट पतला शरीर, ऊंचाई और कद 5 फुट 4 इंच,

तो कृपया थाना प्रभारी नंदनगरी दिल्ली में संपर्क करें। अगली सूचना मेरठ थाना नौचंदी से। व्यक्ति का नाम कुलदीप शर्मा, पुत्र राजू शर्मा, इनकी आयु 27 वर्ष है, शरीर सामान्य, चेहरा लंबा है और रंग गेहुआ। इनके सीधे हाथ पर टैटू का निशान बना हुआ है। ये सफ़ेद पैंट लाल टी शर्ट पहने हुए हैं। जिस किसी को भी इनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त हो तो कृपया थाना प्रभारी थाना नौचंदी मेरठ में संपर्क कर सकते हैं। अगली जो सूचना है वो है अमित पुत्र सतपाल की। इनकी आयु 23 वर्ष है, ऊंचाई और कद 5 फुट 4 इंच, सामान्य शरीर, ये सफ़ेद रंग की टी शर्ट और नीली जीन्स पहने हुए हैं। जिस किसी को भी इनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त हो तो कृपया थाना प्रभारी थाना सकरपुर मेरठ में संपर्क करें। अगली सूचना है थाना सिविल लाइन जनपद मेरठ से। अभिरित कौर, पत्नी इंद्रजीत सिंह, इनकी आयु 42 वर्ष है, ऊंचाई और कद 5 फुट 4 इंच, शरीर की बनावट सामान्य शरीर, ये सूट और सलवार पहने हुए हैं। जिस किसी को भी इनके संबंध में कोई सूचना मिले तो कृपया थाना प्रभारी सिविल लाइन मेरठ में संपर्क करें। अगली सूचना है थाना जानी जनपद मेरठ से। श्री विजेंद्र गावा, पुत्र बिहारी लाल गावा, नेहरू नगर गाजियाबाद, इनकी आयु 55 वर्ष है, ऊंचाई और कद 5 फुट 6 इंच, सामान्य शरीर, रंग गेहुआ, ये गहरे नीले रंग की लाइनदार शर्ट व हल्के भूरे रंग की जीन्स पहने हैं, पैरों में जूते पहने हुए हैं। जिस किसी को भी इनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त हो तो कृपया थाना प्रभारी थाना जानी मेरठ में संपर्क करें। अगली सूचना थाना टीपी नगर जनपद मेरठ से। व्यक्ति का नाम मुखलाल पुत्र वरसाती, आयु 55 वर्ष है, ऊंचाई और कद 5 फुट, सामान्य शरीर, इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इनके हाथ और सीने पर चोट का निशान है, ये आसमानी शर्ट और काली पैंट पहने हुए हैं। जिस किसी को भी इनके संबंध में सूचना प्राप्त हो तो थाना प्रभारी थाना टीपी नगर मेरठ में संपर्क करें। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट शुभांगी।
1: और मैं हूं आकाश। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है युवाओं की कहानी, युवाओं की जबानी, इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम है युववाणी।
0: आकाश, एक बात बताओ, सच सच बताना, ये जून कब आया और कब खत्म भी हो गया?
1: शुभांगी, मुझे तो अभी भी मार्च वाली फीलिंग आ रही है।
0: एग्जैक्टली मतलब कैलेंडर कुछ ज्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है। वैसे जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाए थे उनका क्या हुआ?

0: ये सवाल लाइव रेडियो पर पूछना जरूरी था क्या? ठीक है, अगली बार मैं भी कोई मुश्किल सवाल पूछूंगा।
1: चैलेंज एक्सेप्टेड।
0: लेकिन एक बात है, आज की तारीख थोड़ी खास भी है, क्योंकि शुभांगी आज के साथ हम साल का आधा सफर तय कर चुके हैं।
1: और मुझे लगता है कि इन 6 महीनों में हर किसी ने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, कुछ नई यादें बनाई होंगी, कुछ नए तराने खोजे होंगे, कुछ नई कला सीखी होगी, क्योंकि आज भी हम ऐसी ही कुछ दिलचस्प कलाएं और साहित्य पर एक मजेदार डिस्कशन करेंगे।
0: तो साथियों, आज की शाम भी कुछ ऐसे ही रचनाओं के नाम, जिससे जीवन में भागते दौड़ते भी मिल जाए कहीं ना कहीं हमारे मन को यादगार आराम।
1: और साथ ही में होंगे आप सभी के पसंदीदा गीत। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की शाम के पहले गीत के साथ, जिसे अपनी आवाज से सजाया है अरिजीत सिंह ने।

0: इलाही मेरा जी आए, मेरे मन की बात सबको सुनाए। तो आकाश एक सवाल पूछूं, आखिरी बार तुमने पूरी की पूरी किताब कब पढ़ी थी?
1: अरे शो शुरू होते ही पर्सनल अटैक। लेकिन अगर सच बोलूं तो काफी समय हो गया है,
0: और मुझे लगता है हमारे बहुत सारे लिसनर्स भी इस बात से जुड़

0: पाएंगे, क्योंकि आज हमारी जिंदगी में स्क्रीन टाइम ही इतना बढ़ चुका है, फोन की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन, टीवी और पता नहीं क्या क्या, और इनके बीच कहीं ना कहीं किताबें थोड़ी पीछे छूटती हुई सी लगती हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है या बस पढ़ने का तरीका बदल गया है?
1: वैसे शुभांगी, किताबों की बात चल ही रही है तो मुझे स्कूल की लाइब्रेरी याद आ गई। लाइब्रेरी पीरियड आते ही कुछ बच्चों की खुशी देखने लायक होती थी, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते थे जो किताब खोलकर सिर्फ पन्ने पलटते रहते थे ताकि टीचर्स को लगे कि बड़ी मेहनत से पढ़ रहे हैं और बहुत इंटरेस्ट हो लिटरेचर में।
0: हाँ, और कुछ दोस्त तो लाइब्रेरी से सबसे पतली किताब ढूंढते थे ताकि जल्दी खत्म हो जाए। कई स्टूडेंट्स का ध्यान तो सिर्फ कॉमिक या बहुत सारी पिक्चर्स वाली किताब पर होता था ताकि जितना हो सके कम पढ़ना पड़े। लेकिन सच कहूं, स्कूल में पढ़ी हुई कुछ कहानियां और कविताएं आज भी याद हैं।
1: और शायद यही किताबों की सबसे बड़ी खूबी है कि वो हमें सिर्फ जानकारी नहीं देती बल्कि सोचने का नजरिया भी बदल देती है, एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। चलो शुभांगी, अब एक छोटी सी डिबेट हो जाए, ठीक है? टीम बुक या टीम मूवी?
0: मैं तो चुनूंगी टीम बुक। और तुम?
1: और मैं टीम मूवी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, कई बार कोई अच्छी मूवी देखकर उसकी किताब पढ़ने का मन जरूर करता है।
0: हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। और अगर पहले किताब पढ़ लो तो फिल्म देखते समय कंपैरिजन अपने आप ही शुरू हो जाता है कि अरे, किताब में तो ऐसा नहीं था, मैंने तो इस कैरेक्टर को बिल्कुल अलग ही इमेजिन किया था। और फिर शुरू हो जाती है सोशल मीडिया पर बहस अपने आप को इंटेलेक्चुअल साबित करने की।
1: और कमेंट सेक्शन में लोग पूरा रिव्यू तक लिख देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि किताब और फिल्म का रिश्ता कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि दोस्तों, फिल्म किसी कहानी को देखने का एक तरीका है और किताब उसी कहानी को महसूस करने का। और अगर कहानी अच्छी हो तो उसका असर दोनों ही तरीकों से दिल तक पहुंच ही जाता है।
0: वैसे आकाश, क्या आजकल तुमने एक बात नोटिस की है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि आजकल रीडिंग का मतलब सिर्फ किताब पढ़ना नहीं रह गया? क्योंकि तुमने देखा होगा आजकल ऑडियो बुक्स का ट्रेंड काफी बढ़ रहा है।
1: हाँ शुभांगी, बिल्कुल। और वैसे मुझे लगता है कि ऑडियो बुक्स का एक फायदा है तो जरूर, ट्रैफिक भी कट जाता है और मेट्रो का सफर भी, क्योंकि लोग किताबें पढ़ ही नहीं रहे होते बल्कि उन्हें सुन भी रहे होते हैं। और इसी बात से जुड़ा एक चटपटा सा गीत मैं आप सबके लिए प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो एक कहानी को दर्शाता है अपने संगीत में। ये गाना अपने आप में एक म्यूजिकल बुक है, तो साथियों, कला और साहित्य का एक मजेदार कॉम्बिनेशन दर्शाते हुए पेश है ये गाना।

0: वाव, क्या ही एंटरटेनिंग गाना था। और इसी गाने से अपनी बात पर वापस आते हुए आकाश, कैसे लिटरेचर कंज्यूम करने का तरीका बदल गया है, जैसे आजकल ऑडियो बुक्स पढ़ना कई बार यही सबसे आसान तरीका भी बन जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो कहते हैं किताब पढ़ने का तो टाइम ही नहीं मिलता। वैसे आकाश, ऑडियो बुक से याद आया, पॉडकास्ट भी तो आजकल कितने ही ट्रेंड में हैं, और पॉडकास्ट ने तो स्टोरी टेलिंग को बिल्कुल ही नया प्लेटफॉर्म दे दिया है। कोई हिस्ट्री सुन रहा है, कोई माइथोलॉजी, तो कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बातें। इसका मतलब तो यही है ना कि कहानियां कहीं गई नहीं है, बस उनका फॉर्मेट बदल गया है।
1: बिल्कुल शुभांगी, और देखो आज का युग सोशल मीडिया का युग है। वैसे सोशल मीडिया को लेकर अक्सर लोग कहते हैं कि इसकी वजह से रीडिंग कम हो गई है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। आजकल किसी भी किताब की दो लाइनें रील में वायरल हो जाती हैं, या फिर किसी क्रिएटर की रिकमेंडेशन देखकर लोग किताब सर्च करने लगते हैं। मतलब अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सोशल मीडिया किताबों तक पहुंचने का एक नया रास्ता भी बन सकता है।
0: बिल्कुल, और शायद यही सबसे दिलचस्प बात भी है। माध्यम बदलते रहते हैं, लेकिन अच्छी कहानियां साथियों कभी पुरानी नहीं होती। आकाश, इसी बात पर एक कोट याद आ रहा है, A reader lives a thousand lives before he dies.
1: वाह वाह शुभांगी, क्या बात कही है। यानी जो पढ़ता है वो सिर्फ अपनी नहीं हजारों जिंदगियां जी लेता है, और शायद यही किताबों की सबसे बड़ी शक्ति है। कहानियां हमें उन जगहों तक ले जाती है जहां हम कभी गए नहीं, और उन लोगों से भी मिलवाती है जिनसे हमने कभी मिले नहीं।
0: और साथियों, इसी तरह कहानियों और संगीत का एक बड़ा ही कलरफुल मिक्स है आज की शाम का अगला गाना, दिल से मूवी का सतरंगी रे।

0: साथियों, अब समय हो गया है हमारे युववाणी कार्यक्रम के विशेष सेगमेंट मेरा पहला माइक का। इसके अंतर्गत आज हम सुनेंगे हमारे युवा साथी अभय पाठक जी की प्रस्तुति को।
1: हाँ बिल्कुल शुभांगी, तो आई

0: ये सुनते हैं अभय पाठक जी की इस विशेष प्रस्तुति को।
1: नजर धुंधली तो क्या ख्वाबों का मंजर साफ रखते हैं, नजर धुंधली तो क्या ख्वाबों का मंजर साफ रखते हैं, हम अपने उंगलियों में ही सारा आकाश रखते हैं। राहें कितनी भी मुश्किल हो हमें परवाह नहीं, राहें कितनी भी मुश्किल हो हमें परवाह नहीं, हम अपने हौसलों से हर मंजिल को अपने पास रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आरजे अभय पाठक, आकाशवाणी नई दिल्ली के इस बेहद ही खास और आप सभी के पसंदीदा मंच युवाणी पर। आज जब हम आकाशवाणी के 90 वर्षों के ऐतिहासिक सफर का जश्न मना रहे हैं, तो देश के करोड़ों युवाओं से मैं इस युवाणी के मंच से बेहद ही जरूरी और एक संवेदनशील मुद्दे पे बात करने आया हूँ। लेकिन चर्चा को स्टार्ट करेंगे लेकिन इस बेहद ही खूबसूरत म्यूजिक के साथ।

दोस्तों एक दौर था जब समाज दिव्यांगता को सीमाओं और मजबूरियों से जोड़कर देखती थी, लेकिन आज का ये डिजिटल दौर समता, न्याय और बदलाव का दौर है। आज तकनीक हमारे लिए सिर्फ साधन नहीं बल्कि हमारे सपनों को पूरा करने का एक तीसरा नेत्र बन चुकी है। इस चर्चा को अभी जारी रखेंगे, लेकिन आइए हम सुनते हैं एक और मधुर गीत।

छूकर जख्मों के गहरे निशान देखे हैं, हमने छूकर जख्मों के गहरे निशान देखे हैं, हमने अपने मन के आंखों से अपने भगवान देखे हैं। ठोकर लगी गिरे भी, ठोकर लगी गिरे भी, मगर उठ खड़े हुए, हमने तो बिन आंखों के सारा आसमां देखे हैं। मैं एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और रेडियो जॉकी होने के तौर पे इस तकनीकी क्रांति को हर रोज जीता हूँ। जब मैं अपने कंप्यूटर और स्मार्टफोन के स्क्रीन पर स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के जरिए मैं काम करता हूँ, बेहतरीन ऑडियो एडिटिंग टूल पे अपने आवाज को खुद रिकॉर्ड और एडिट करता हूँ, उस साउंड क्वालिटी को जब संवारता हूँ तो ये साबित हो जाता है कला और हुनर किसी सीमा के मोहताज नहीं होते। आज AI और सुगम में डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ाई से लेकर पेशे और काम तक को इतना आसान बना दिया है कि हर दिव्यांग अपने हुनर का हर क्षेत्र में लोहा मनवा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ तकनीकी की बात नहीं है, ये बात है हमारे अधिकारों की, दिव्यांगजनों के हिस्सेदारी की। देश के सुगम्य भारत अभियान और RPWD एक्ट जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है, उसने कागज पे हमें समानता और बराबरी का अधिकार दिया है, लेकिन समावेशी समाज तब तक नहीं बन सकता जब तक समाज के हर एक नागरिक संस्थान हमारे कला को, हमारे हुनर को, हमारे प्रतिभा को तरस और सहानुभूति के नजर से देखने के बजाय हमारे योग्यता के कसौटी पे ना पड़े। तो आइए सुनते हैं इसी बात पे एक

मैं हूं आपका दोस्त आरजे अभय पाठक। दोस्तों, कभी कभी मैं भी पहले सोचता था कि इस विषय पे बात कर कर क्या होगा, लोग सुनेंगे कि नहीं। लेकिन आज इस मंच से मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जब तक अपने बातों को हम सबके सामने नहीं रखेंगे, अपने लिए खड़े नहीं होंगे हम, तब तक समाज में बदलाव का व्यार नहीं आएगा। रास्ता चाहे कितनी भी पथरीली हो, लेकिन मन में सच्चाई और इरादे में ईमानदारी है तो हर बाधा को दूर होना पड़ता है। और मैं आज इस मंच से करोड़ों युवाओं से बोलना चाहूंगा, और खासकर अपने दिव्यांग भाइयों बहनों से। तू खुद के खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू खुद के खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो लिपटे बेड़िया बना ले उसे वस्त्र तू, इस बेड़ियों को पिघलाकर बना ले उसे अस्त्र तू। आप अपने क्षमता पे कभी शक नहीं करिएगा, क्योंकि आपकी आंखें बंद हो सकती है, लेकिन जो आपके सपनों का आसमान है वो असीमित है। आकाशवाणी नई दिल्ली और देश के करोड़ों युवाओं के साथ आइए हम ऐसे नए समाज का निर्माण करें जहां हर कला और हर हुनर को पहचान मिले। तो इन्हीं बातों के साथ आप अपने दोस्त आरजे भाई पाठक को दीजिए इजाजत, और सुनते रहिए आकाशवाणी, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।

0: ड्राइंग पीरियड्स दोस्तों, ड्राइंग पीरियड को भला मैं कैसे भूल जाऊं। मेरी ड्राइंग देखकर टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते थे कि मैंने बनाया क्या है। लेकिन फिर भी मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कलर्स भरती थी। वैसे रंग सिर्फ रंग नहीं होते, कई बार बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह जाते हैं। किसी के लिए रंग सिर्फ कैनवस पर बिखरे हुए शेड होते हैं, तो किसी के लिए अपनी बात कहने का सबसे खूबसूरत जरिया।
1: तो प्यारे साथियों, आज की अगली सेगमेंट मन से माइक्रोफोन तक की कहानी में हम भी बात करेंगे एक ऐसे युवा कलाकार की जिन्होंने रंगों को अपनी पहचान बना लिया। आज की हमारी स्टोरी है तनुज समद्दार जी की।
0: असम के रंगिया शहर से आने वाले तनुज समद्दार को बचपन से ही पेंटिंग और विजुअल आर्ट में गहरी रुचि थी। लेकिन जो बात उनकी जर्नी को खास बनाती है वो ये है साथियों कि उन्होंने अपने टैलेंट को सिर्फ हॉबी बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि वो लगातार सीखते रहे, नई नई टेक्निक्स पर काम करते रहे और अपनी आर्ट को हर दिन बेहतर बनाते रहे।
1: वैसे शुभांगी, मुझे लगता है क्रिएटिव फील्ड चुनना आज भी आसान नहीं है। अक्सर सुनने को मिल जाता है, पेंटिंग ठीक है लेकिन करते क्या हो, जबकि कोई भी कलाकार जो करता है वो बाद में उसका पूरा जीवन बन जाता है। वो साधारण सा कलाकार अपनी क्रिएटिविटी के दम पर समाज में एक अलग पहचान बनाता है। सोचने वाली बात यह है कि अगर दुनिया में कला और कला बनाने वाले कलाकार ही ना रहे तो ये दुनिया कितनी बोरिंग हो जाएगी।
0: बिल्कुल आकाश, और ये सवाल सिर्फ पेंटर्स से नहीं पूछा जाता। राइटर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स, फोटोग्राफर्स सभी ने कभी ना कभी इस सवाल का सामना जरूर किया होगा।

0: लेकिन साथियों, तनु जी की कहानी हम सभी को यही सिखाती है कि अगर पैशन के साथ कंसिस्टेंसी भी हो तो वही पैशन आपकी पहचान बन सकता है।
1: और मुझे उनकी आर्ट की एक और बात बहुत पसंद आई शुभांगी। उन्होंने अपनी पेंटिंग को सिर्फ खूबसूरत बनाने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि मेंटल हेल्थ, क्लाइमेट चेंज और सोशल अवेयरनेस जैसे विषयों पर भी अपनी कला को प्रदर्शित किया। और शायद यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी शक्ति होती है कि वो बिना ज्यादा शोर किए लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता है। उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन पर भी काम किया और साथ ही साथ उनकी रचना 2022 में आई एक शॉर्ट वीडियो आजादी सॉन्ग ऑफ फ्रीडम देश की एकता और देश की आजादी के लिए किए गए बलिदान पर प्रकाश डालती है।
0: इसी के साथ उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मान भी मिल चुके हैं, जिनमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी शामिल हैं।
1: जी हाँ, लेकिन शुभांगी सच कहूँ मुझे उनकी कहानी का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा अवार्ड्स के साथ साथ उनका विजन लगता है। और उनके बारे में जो असल प्रेरणा है वो ये है कि उन्होंने अपने इंटरेस्ट को कभी हल्के में नहीं लिया। और इसी के साथ हम अपने युवा श्रोताओं के लिए एक बड़ा ही प्रेरणादायक गीत लेकर आए हैं मूवी युवा से। ये गाना युवाओं के जोश के साथ साथ उनके जुझारूपन को भी दर्शाता है।

0: साथियों, हम सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। कोई लिखना पसंद करता है, कोई गाना, कोई डांसिंग, कोई फोटोग्राफी, तो कोई पेंटिंग।
1: बिल्कुल शुभांगी, मुझे लगता है हम में से हर किसी की जिंदगी एक खाली सा कैनवास होती है। फर्क बस इतना है, कोई उस पर रंग भरने का इंतजार करता रहता है और कोई खुद पहला ब्रश उठा लेता है। तनु समद्दार जी ने शायद यही किया। उन्होंने अपनी शौक को सिर्फ शौक बनाकर नहीं छोड़ा, उसे अपनी पहचान बना ली।
0: और साथियों, शायद यही आज की इस शाम की सबसे खूबसूरत सीख है। कभी कभी एक छोटा सा ब्रश, एक पेंसिल, एक नोटबुक या फिर एक किताब जिंदगी की दिशा बदल सकती है। तो आप अपने सपने को कल पर मत छोड़िए। हो सकता है

0: तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे आज के सेगमेंट क्विक बस का, यानी कला, साहित्य और संस्कृति की दुनिया से कुछ झटपट अपडेट्स का। वैसे शुभांगी, आज हमने किताबों की बात की, फिल्मों में उनके कंट्रीब्यूशन का भी जिक्र किया और एक युवा कलाकार को भी जाना।
1: साथियों, पहली दिलचस्प अपडेट है मैसूर से। मैसूर लिटरेचर फेस्टिवल का अगला संस्करण एक बार फिर साहित्य प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ये फेस्टिवल 4 और 5 जुलाई को कर्नाटक की मैसूर में आयोजित किया जाएगा।
0: और अब एक और दिलचस्प अपडेट। इन दिनों देश भर में कई शहरों में बुक एक्सचेंज और रीडिंग क्लब्स के साथ साथ आर्ट एग्जीबिशंस का भी आयोजन हो रहा है, जैसे कि दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में 19 से 23 जुलाई तक पंक विजुअल आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है।
1: तो साथियों, अब अपडेट से लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं एक और गीत, दिल धड़कने दो, फ्रॉम द मूवी दिल धड़कने दो।

0: वेलकम बैक दोस्तों, अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट टुडे इन हिस्ट्री की ओर।
1: और साल 2017 में रात में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की शुरुआत की गई थी। आज चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो, बाहर खाना हो या कोई नई किताब खरीदनी हो, जीएसटी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है।
0: और आज ही के दिन 1936 में अमेरिकन राइटर मार्गरेट मिचेल का चर्चित नॉवल गॉन विद द विंड प्रकाशित हुआ था और इस नॉवल को 1937 में पुलित्जर प्राइज भी मिला
1: और 1939 में इसे हॉलीवुड की एक अवार्ड विनिंग फिल्म के रूप में पर्दे पर उतारा गया था।
0: तो साथियों, इसी के साथ आज की हमारी मुलाकात ऐसी ही रही, किताबों से शुरू हुई, फिल्मों तक पहुंची, रंगों से गुजरी, गीतों में खेली और अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ गई।
1: और अब चलते चलते फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का एक ऐसा गीत जो अपने और सफर दोनों की खूबसूरती को महसूस कराता है, इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। मेरा नाम है आकाश
0: और मेरा नाम शुभांगी।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने मंगलुरु तट के पास एक समुद्री खोज और बचाव अभियान में मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माथा से 6 मछुआरों को बचाया है। बल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि कल खराब मौसम में इस नौका को नुकसान पहुंचने और उसमें पानी भर जाने के बाद सभी जीवित बचे लोगों को रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से बचाया गया। बल ने बताया कि जीवित बचे लोगों को चिकित्सा सहायता और स्थानीय अधिकारियों को सौंपने के लिए न्यू लाया जा रहा है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से

0: कुमार।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: जनरल धीरज सेठ ने 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी 4 दशकों से अधिक समय तक राष्ट्र सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। जनरल सेठ पुणे स्थित खड़कवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं और दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन प्राप्त किया था। लगभग 4 दशकों की अपनी विशिष्ट सैन्य सेवा में उन्होंने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सुदृढ़ अर्थव्यवस्था ही मजबूत रक्षा क्षमताओं की नींव है। गुजरात के वडोदरा में आज वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा। भारत ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप पीड़ित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने चिकित्सा सहायता और आपात सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल चालू है और आपदा में घायल हुए लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रहा है। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। जर्मनी फीफा फुटबॉल विश्व कप से बाहर हो गया है। बोस्टन में नॉकआउट चरण में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनाल्टी शूटआउट में जर्मनी की ये पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. The Special Intensive Division SIR of Electoral Rolls has begun in Delhi, Karnataka, Meghalaya, Maharashtra and Jharkhand today. As part of the exercise in Delhi, over 13,000 booth-level officers will visit every household till the 29th of next month to distribute pre-printed enumeration forms in duplicate to all existing electors for verification and updation of the electoral rolls. Addressing the media, Chief Electoral Officer of Delhi, Ashok Kumar said that claims and objections can be filed from the 5th of August to the 4th of September. The final electoral roll will be published on the 7th of October. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today said that so far India has signed 28 migration and mobility partnership agreements with over 26 countries. He highlighted the collective responsibility of nations to combat illegal migration, exploitative practices, fraudulent intermediaries and human trafficking. The minister said this while speaking at the Human Resource Mobility Forum in New Delhi. He underlined the use of digital systems and tools in the transformation of governance in migration.
4: One key pillar which has brought about a transformation in the governance of migration has been the use of digital systems and tools. India's commitment to safe and legal mobility

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: देखिए, कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और लोकगीतों में लोक जीवन की झलक देखने को मिलती है और हमारे देश के लोगों में प्राचीन काल से ही लोक संगीत का अपना महत्व रहा है। देश के हर क्षेत्र में अपना लोक संगीत है जो वहाँ की संस्कृति और तौर तरीकों को दर्शाता है।
1: दर्शाता भी है हकीकत में सुनील भाई, वही इसकी आत्मा और रूह है। और
0: बिल्कुल
1: आप देखिए कि अगर लोक संगीत ना होता, कल्पना करिए तो हमारे भारत का जो गुलदस्ता है ना, जिसमें इतने रंग, इतने बू, इतने खुशबू, इतनी तरह की चीजें हैं, वो इतना गमकता नहीं, महकता नहीं,
0: शाही
1: चमकता
0: भाई,
1: नहीं।
0: गुलदस्ते की बात आपने की तो यहाँ मैं

0: ये बताना चाहूंगा, देखिए संस्कृति का संरक्षण तो ये करता ही है, साथ ही सामूहिक एकता और भाईचारे का भी प्रतीक
1: जी
0: है,
1: हाँ
0: और इसके साथ ही जीवन चक्र का प्रतिबिंब भी है। देखिए जन्म से लेकर मृत्यु तक, फसल की कटाई की बात हो, ऋतुओं की बात हो, सावन की बात हो, होली की बात हो,
1: भाई,
0: त्योहारों
1: हर
0: की किसी की भी
1: मौके
0: बात
1: पे, हर
0: हो,
1: संस्कार का, हर घटना का, हर दुख दर्द खुशी गम, हर मौके के लिए हमारे यहाँ गीत और उसका

0: भाई ये तो लोकगीत सुना प्रियंका चौधरी से, और हम बात कर रहे थे देखिए लोक संगीत की। लोक संगीत जहाँ हमारा मनोरंजन कराता है, वहीं देखिए ये कोई ना कोई शिक्षा अवश्य देते, चाहे कोई रागनी
1: बहुत
0: हो
1: बड़ी बात
0: उपदेश
1: आपने
0: हो,
1: बताई,
0: कोई ना कोई
1: बिल्कुल
0: शिक्षा अवश्य देता है।
1: शिक्षा
0: और
1: देता है, समझाता है और हर मौके को अच्छी तरीके से ना आत्मसात कराता है।
0: यहाँ तक कि देखिए शाहिद भाई, जो कुछ ऐसी सूचनाएं या कुछ ऐसी कहानियां, ऐसी घटनाएं जो अब भूली बिसरी हो चुकी हैं, लोकगीतों के माध्यम से उनको भी सुना जाता है।
1: वाकई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। संगीत ही वो माध्यम है जिसके जरिए से ना इंसान चाहे तो सीखना हो, चाहे आत्मसात करना हो, अध्यात्म हो या भौतिकता हो, सबका रसास्वादन कर सकता है।
0: तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बबीता चौधरी से सुन लेते हैं ये लोकगीत।

0: शाहिद भाई, ये तो लोकगीत सुना बबीता चौधरी से।
1: जी हाँ
0: और देखिए, हम लोकगीतों की बात कर रहे थे तो लोकगीत जो इनकी भाषा बिल्कुल सरल भाषा होती है और ये आम लोगों की क्षेत्रीय भाषा होती है, इसलिए कोई भी इसको आसानी से समझ सकता है और
1: जी जी जी
0: महसूस कर
1: जैसे
0: सकता
1: अभी
0: है।
1: आप सुन रहे थे कि नन्हे नन्हे तीन घुंघरू, तीनों मजेदार हैं।
0: तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनीता पांचाल से सुन लेते हैं ये लोकगीत।

0: शाहिद भाई, ये तो लोकगीत सुना।
1: नखला हुआ घुमाए दो मेरे पिया।
0: बिल्कुल, सुनीता पांचाल के गाए इस लोकगीत के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल, लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार।

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आज धर्मेंद्र और
2: हेमंत
1: का
2: नमस्कार।
1: हेमंत, अगर खेलों की दुनिया की बात करें तो फुटबॉल विश्व कप का रोमांच तो तमाम दुनिया के सिर चढ़कर बोल ही रहा है, बड़े बड़े उलटफेर हो रहे हैं। उधर विंबलडन के बहुत जबरदस्त मुकाबलों की शुरुआत हो चुकी है, कल से शुरुआत हुई है, उलटफेर का सिलसिला भी शुरू हो गया है शुरुआत के साथ ही। और अगर हम बात करते हैं महिला T20 विश्व कप की, वहां भारत के हाथ निराशा जरूर है, लेकिन आज क्या होने वाला है हेमंत?
2: बात आज ऑस्ट्रेलिया वर्सेज वेस्ट इंडीज के बीच में मुकाबला है, जो कि सेमीफाइनल मुकाबला है, अपने आप में बड़ा खास दिन है और दोनों टीमें अपनी दावेदारी पेश करने के लिए तैयार हैं।
1: जी हाँ, और हमारे पास खबर है बास्केटबॉल की, अच्छी खबर नहीं है भारत के लिहाज से, लेकिन खबर तो है ही। और साथ ही साथ टेबल टेनिस की भी बात करेंगे, तो पहले शुरुआत करते हैं विश्व कप फुटबॉल से। क्यों हेमंत?
2: बिल्कुल,

रफ्तार, चपलता और जबरदस्त स्टेमिना के खेल फुटबॉल का इस बार का विश्व कप कई मायनों में न सिर्फ हैरान कर देने वाला है बल्कि पारंपरिक सोच को खत्म कर नई टीमों के उभरने का संकेत देने वाला भी है। इसकी गवाही दे रहे हैं हैरान कर देने वाले परिणाम। नॉकआउट दौर में उलटफेर वाले परिणाम सामने आ रहे हैं, जहां 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील की टीम कमजोर जापान पर किसी तरह से जीत दर्ज कर राउंड ऑफ 16 में पहुंचने में सफल रही। वहीं 4 बार विश्व कप जीतने वाली टीम जर्मनी और धुरंधर टीम नीदरलैंड टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। बात राउंड ऑफ 32 की करें तो ब्राजील ने अपने शानदार जुझारूपन को दिखाते हुए जापान को नजदीकी मुकाबले में 2-1 से हरा कर अगले दौर का टिकट कटा लिया। ह्यूस्टन स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने इंजरी टाइम में विजयी गोल दागकर ब्राजील को ड्रामेटिक जीत दिलाई। जापान ने 1992 में अपने 100 वर्षीय फुटबॉल योजना की शुरुआत की।

0: और ये तय किया था कि 2092 में उसे फुटबॉल विश्व कप जीतना है। इस प्लानिंग पर चलते हुए उसने पहली बार 1998 में विश्व कप में खेलने के लिए क्वालिफाई किया और अब 2026 में राउंड ऑफ 32 के मैच में ब्राजील जैसी मजबूत टीम को पानी पिला दिया। मैच की शुरुआत ही जापान ने बेखौफ अंदाज में की। इसी का परिणाम था कि 29वें मिनट में ब्राजील की रक्षा पंक्ति की गलती का पूरा फायदा उठाते हुए काइशु सानो ने गेंद पर कब्जा जमाया। वे तेजी से आगे बढ़े और शानदार राइट फुट शॉट के जरिए गोल दागकर जापान को न सिर्फ 1-0 की बढ़त दिला दी बल्कि विरोधी टीम को सन्न कर दिया।
1: Japan have stolen it. Sano driving them forward. Still Sano! A goal that will echo from Texas to Tokyo. The Eternal Kings, the five-time champions. Kaishu Sano with his first international goal.
0: इसके बाद पहले हाफ में ब्राजील के तमाम स्टार खिलाड़ी जापानी डिफेंस को भेदने में नाकाम रहे और हाफ टाइम तक जापान बढ़त बनाए रखने में सफल रहा। दूसरे हाफ में ब्राजील के मुख्य कोच कार्लो एंचेलोटी ने रणनीति में बदलाव किया और युवा स्ट्राइकर एंड्रिक को मैदान पर उतारा। इस बदलाव के बाद ब्राजील का आक्रमण अधिक धारदार हो गया। लगातार हमलों का दबाव आखिरकार 56वें मिनट में रंग लाया जब गैब्रियल मागालहाइस के सटीक क्रॉस पर कासेमीरो ने शानदार हेडर लगाकर मैच को 1-1 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया।
1: Gabriel, that's decent, and thumped in for the equalizer by Casemiro.
0: इसके बाद ब्राजील और ज्यादा आक्रामक हो गया। विनिसियस जूनियर की दो कोशिश नाकाम रही। जब मुकाबला अतिरिक्त समय की ओर बढ़ता दिख रहा था तभी ब्राजील ने निर्णायक हमला बोला। इंजरी टाइम के 90+5वें मिनट में ब्रूनो गुइमाराइस ने बेहतरीन पास गैब्रियल मार्टिनेली को दिया। मार्टिनेली ने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए गोलकीपर जायोन सुजुकी को छकाकर गेंद को नेट में पहुंचा दिया और ब्राजील को 2-1 की बढ़त दिला दी। अंतिम सिटी बजते ही ब्राजील की टीम और उसके समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया जबकि जापानी खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा दिखी। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हार के बावजूद जापान ने शानदार खेल दिखाया। अनुशासित डिफेंस, तेज काउंटर अटैक के जरिए जापान की टीम ने यह दिखा दिया कि बड़े मंच पर किसी भी दिग्गज टीम को चुनौती देने की वो क्षमता रखती है। उसका पहली बार नॉकआउट जीतने का सपना भले ही अधूरा रह गया लेकिन जापान का खेल दिखा गया कि वो अपने लक्ष्य की तरफ मजबूती से बढ़ रहा है। उधर ब्राजील ने इस जीत के साथ रिकॉर्ड 6वां विश्व कप खिताब जीतने का अपना सपना बरकरार रखा। इस मैच में गैब्रियल मार्टिनेली ने अपना 5वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया। अमेरिका की धरती पर उन्होंने 3रा गोल किया। दूसरी ओर अनुभवी कासेमीरो ने एक बार फिर बड़े मुकाबले में अपनी उपयोगिता साबित की। अब कार्लो एंचेलोटी की टीम राउंड ऑफ 16 में आइवरी कोस्ट और नॉर्वे के बीच आज होने वाले मुकाबले की विजेता से भिड़ेगी। ब्राजील तो अगले दौर में पहुंच गया लेकिन जर्मनी का अभियान राउंड ऑफ 32 में ही समाप्त हो गया। पराग्वे के साथ उसका मुकाबला 120 मिनट तक 1-1 की बराबरी पर रहा। गुस्तावो अल्फारो की पराग्वे की टीम ने पूरे मैच में शानदार डिफेंस का प्रदर्शन किया और जर्मनी के आक्रामक खिलाड़ियों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। गेंद पर अधिकांश समय जर्मनी का कब्जा रहा लेकिन लोराय साने, फ्लोरियन विल्ज और काई हाइवर्ड्स लगातार पराग्वे की मजबूत डिफेंस और गोलकीपर ऑरलैंडो गिल के सामने बेअसर रहे। पहले हाफ के अंतिम मिनटों में पराग्वे ने अपने गिने चुने कॉर्नर में से एक का बेहतरीन फायदा उठाया। कॉर्नर पर मैनुअल नोयर ने गेंद को मुक्का मारकर दूर किया लेकिन पराग्वे ने दोबारा गेंद पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद मटियास गर्लासा ने शानदार क्रॉस किया जिस पर बिना किसी दबाव के मौजूद जूलियो एंसिसो ने शानदार हेडर लगाकर टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी।
1: Back to the corner kick taker Almiron. Galazza, brilliant header, it's in! Enciso has scored for Paraguay! Their first ever goal in a knockout game at a World Cup!
0: हाफ टाइम तक जर्मनी 0-1 से पीछे चल रहा था लेकिन दूसरे हाफ में जर्मनी कहीं अधिक आक्रामक अंदाज में उतरा और 54वें मिनट में बराबरी हासिल कर ली। फ्लोरियन विल्ज के बाएं फ्लैंक से आए सटीक क्रॉस पर काई हैवर्ट्ज ने हेडर लगाकर स्कोर 1-1 कर दिया। इसके बाद जर्मनी लगातार विजयी गोल की तलाश में हमले करता रहा जबकि पराग्वे धीरे धीरे अपनी पूरी टीम को रक्षात्मक मोर्चे पर ले आया और जवाबी हमले के मौके का इंतजार करता रहा। हालांकि उसका ये इरादा कामयाब नहीं हो सका। उधर जर्मनी

0: के कोच जूलियन नागल्समान ने पेनल्टी से बचने के लिए अपने सभी आक्रामक खिलाड़ियों को मैदान पर उतार दिया। अतिरिक्त समय में जोनाथन ताह ने गोल भी कर दिया था, लेकिन वाल्डेमार एंटोन द्वारा ऑरलैंडो गिल पर फाउल किए जाने के कारण रेफरी ने गोल रद्द कर दिया। 120 मिनट बाद भी स्कोर 1-1 रहा और मुकाबले का फैसला पेनल्टी शूट आउट से हुआ। जर्मनी ने पहले पेनल्टी लेने का फैसला किया, लेकिन शुरुआत ही खराब रही। पराग्वे के गोलकीपर ऑरलैंडो गिल ने काई हैवर्ट्स की पहली पेनल्टी बचा ली। इसके बाद दोनों टीमों के बीच गोल और चूक का सिलसिला चलता रहा। आखिर में जोसे कनाले ने बेहद शांत अंदाज में निर्णायक पेनल्टी को गोल में बदलकर पराग्वे को 4-3 की ऐतिहासिक जीत दिला दी।
1: It's Jose Canale. Surely this time for Paraguay. He does score! Paraguay's most powerful World Cup result in their history. Germany are leaving a World Cup far too early again.
0: इस जीत के साथ ही 1954, 1974, 1990 और 2014 में खिताब जीतने वाली जर्मनी का वर्ल्ड कप 2026 का सफर समाप्त हो गया। पराग्वे के गोलकीपर ऑरलैंडो गिल को सुपीरियर प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब दक्षिण अमेरिकी टीम पराग्वे 4 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में फ्रांस और स्वीडन के बीच आज होने वाले मैच की विजेता से भिड़ेगी। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के एक और मुकाबले में बड़ा उलटफेर हुआ, जब वर्जिल वान जिक की कप्तानी वाली नीदरलैंड्स की टीम को अशरफ हकीमी की अगुवाई वाली मोरक्को की टीम के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। स्टाडियो स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मोरक्को ने पेनल्टी शूटआउट में जीत हासिल की। राउंड ऑफ 32 के दूसरे दिन ही दो दो मैच पेनल्टी शूटआउट में गए और फुटबॉल की दो महाशक्तियां फीफा विश्व कप से बाहर हो गई। नीदरलैंड्स और मोरक्को के बीच ये मुकाबला निर्धारित समय तक 1-1 से बराबर रहा। इसके बाद 30 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम में भी कोई गोल नहीं हो सका और स्कोर 1-1 की बराबरी पर छूटा। इसके बाद मुकाबला पेनल्टी शूट आउट तक पहुंचा, जहां मोरक्को ने धुरंधर नीदरलैंड्स को 3-2 से शिकस्त दी और राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। शूट आउट में मैच जीतने वाला गोल इस्माइल सैबरी ने किया। हालांकि एक तरह से मुकाबला बराबरी का था, जहां मोरक्को की मौजूदा फीफा रैंकिंग 6 है, वहीं नीदरलैंड्स 7वें स्थान पर है। हम आपको बता दें कि नीदरलैंड्स ने अपने ग्रुप में 7 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था, जबकि मोरक्को ने भी 7 अंक जुटाकर ग्रुप सी में ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर रहते हुए नॉकआउट चरण में जगह बनाई थी। अब मोरक्को की टीम राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई है, जहां उनका सामना कनाडा से होगा। फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबले आगे बढ़ते जा रहे हैं और मैच कठिन होते जा रहे हैं। राउंड ऑफ 32 में जर्मनी जैसी दिग्गज टीम की हार के बाद अब उलटफेर का शिकार अगली टीम कौन सी होगी, इस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, जबकि तमाम टीमों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। ऐसे में राउंड ऑफ 32 में 20वें दिन 3 मुकाबले खेले जाने हैं। पहले मैच में आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। ये मुकाबला भारतीय समय के हिसाब से आज रात 10:30 बजे डलास स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके अलावा फ्रांस और स्वीडन के बीच मुकाबला रात 2:30 बजे न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में होगा। तीसरे मैच में सह मेजबान मेक्सिको का सामना इक्वाडोर से भारतीय समय के अनुसार कल सुबह 6:30 बजे मैक्सिको सिटी स्टेडियम में होगा। हम आपको बता दें कि आइवरी कोस्ट और नॉर्वे के बीच ये न सिर्फ वर्ल्ड कप में बल्कि पहला इंटरनेशनल मुकाबला भी होगा। आइवरी कोस्ट अपने 4थे वर्ल्ड कप अभियान में पहली बार नॉकआउट स्टेज में पहुंचा है। इससे पहले सिर्फ कैमरून 1990 में और सेनेगल 2002 में ही अपना पहला वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच जीतने वाली अफ्रीकी टीमें रही हैं। ग्रुप स्टेज में दोनों टीमों के प्रदर्शन की बात करें तो आइवरी कोस्ट ने ग्रुप ई में 2 जीत और 1 हार के साथ नॉकआउट में जगह बनाई। उधर नॉर्वे ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप में वापसी करते हुए ग्रुप आई में 2 जीत और 1 हार के साथ अंतिम 32 में जगह बनाई। दिन का दूसरा मैच इस विश्व कप के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक होगा, क्योंकि फ्रांस और स्वीडन जैसी दो दिग्गज टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के बीच फुटबॉल का इतिहास कहता है कि फ्रांस का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन स्वीडन भी कांटे की टक्कर देता रहा है। फ्रांस और स्वीडन के बीच अब तक 24 इंटरनेशनल मुकाबले हुए हैं। इनमें फ्रांस ने 12, स्वीडन ने 6 मैच जीते, जबकि 6 मुकाबले ड्रॉ रहे। लेकिन इस बार खास बात यह होगी कि दोनों टीमें वर्ल्ड कप में पहली बार आमने सामने होंगी।

0: हालांकि बड़े टूर्नामेंट में यह उनकी तीसरी भिड़ंत होगी। यूरो 1992 में मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा था, जबकि यूरो 2012 में स्वीडन ने फ्रांस को 2-0 से हराया था। इस साल के वर्ल्ड कप की बात करें तो फ्रांस ने ग्रुप आई में 3 मैच जीतकर 9 के साथ टॉप किया। उधर स्वीडन ने ग्रुप एफ में 1 जीत 1 हार और 1 ड्रॉ के साथ नॉकआउट में जगह बनाई। वर्ल्ड कप 2026 का 79वां मैच मैक्सिको और इक्वाडोर के बीच खेला जाएगा। इन दोनों टीमों के बीच अब तक 5 इंटरनेशनल मुकाबले हुए हैं। दोनों टीमों ने 1-1 मैच जीता, जबकि 3 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप में दोनों की यह दूसरी भिड़ंत होगी। इससे पहले 2002 के ग्रुप स्टेज में मैक्सिको ने 2-1 से जीत दर्ज की थी। सह मेजबान मैक्सिको ग्रुप ए में 3 मैच जीतकर 9 अंक के साथ शीर्ष पर रहा। टीम ने साउथ अफ्रीका को 2-0, दक्षिण कोरिया को 1-0 और चेकिया को 3-0 से हराया। सबसे खास बात यह रही कि उसने ग्रुप स्टेज में 1 भी गोल नहीं खाया। दूसरी ओर इक्वाडोर ने ग्रुप ई में 1 जीत 1 हार और 1 ड्रॉ के साथ नॉकआउट में जगह बनाई। आइवरी कोस्ट ने उसे 0-1 से हराया। कुरासाओ से उसका मुकाबला गोल रहित ड्रॉ रहा, जबकि टीम ने आखिरी मुकाबले में जर्मनी को 2-1 से हराकर उलटफेर किया। अगर इस मुकाबले की बात करें तो मैक्सिको के जूलियन कुनियोनेस, राउल जिमेनेज और एडसन अल्वारेस पर नजर रहेगी। वहीं इक्वाडोर के लिए माइसेस कैसेडो, एन्नर वालेंसिया, गोंजालो प्लाटा और केंड्री पाइज अहम खिलाड़ी होंगे। तीनों ही मुकाबलों के काफी नजदीकी रहने की उम्मीद है। तो हेमंत, वर्ल्ड कप के मुकाबले तो लाजवाब, कमाल और बेहतरीन हो रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: और जर्मनी की टीम बाहर हो गई, इसके साथ साथ आगे आने वाली टीमें भी खतरे में हैं। लेकिन वैसा ही कमाल तो हो रहा है T20 महिला विश्व कप में भी, जहां पर भारत की टीम बाहर हो गई है।
1: बिल्कुल।
0: और वहां आज पहला सेमीफाइनल मुकाबला होना है। सेमीफाइनल में होगी ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीमें आमने सामने। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: जी हाँ धर्मेंद्र, बात करते हैं महिला T20 विश्व कप 2026 की, जो अपने रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। और पहले सेमीफाइनल मुकाबले में 2 बार के पूर्व चैंपियन वेस्टइंडीज का सामना 6 बार की रिकॉर्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम से हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे टूर्नामेंट में अपराजेय रही है और उन्होंने अपने ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में भारतीय टीम को रोमांचक मुकाबले में हरा कर बाहर कर दिया था। दूसरी ओर वेस्टइंडीज की टीम ने ग्रुप स्टेज में शानदार खेल दिखाते हुए अंतिम 4 का सफर तय किया है। ये मुकाबला लंदन के प्रसिद्ध मैदान द ओवल में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम का हालिया फॉर्म बेहद खतरनाक रहा है। ग्रुप ए में सभी टीमों को पछाड़ते हुए उन्होंने पहले पायदान पर अपना स्थान पक्का किया। उनकी बल्लेबाजी की रीड एलिस पेरी और एसले गार्डनर हैं, जो शानदार फॉर्म में चल रही हैं। भारतीय टीम के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच में इन दोनों खिलाड़ियों ने शतकीय साझेदारी करके ऑस्ट्रेलिया को एक मजबूत लक्ष्य का सफल पीछा करने में मदद की थी। गेंदबाजी में सोफी मोनिल्यू और जॉर्जिया वारहम ने लगातार शानदार गेंदबाजी की है और बीच के ओवरों में विकेट निकालकर विपक्षी टीम को दबाव में रखा है। इसके अलावा उनके साथ बेथ मूनी और फोबे लिचफील्ड जैसी आक्रामक बल्लेबाज भी मौजूद हैं, जो किसी भी परिस्थिति में तेज रन बनाने में माहिर हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी खूबी उनका दबाव में शांत रहना और एक टीम के रूप में प्रदर्शन करना है। दूसरी ओर वेस्टइंडीज की टीम भले ही मैच में अंडर डॉग के रूप में उतर रही हो, लेकिन उन्हें हल्के में लेना किसी भी टीम के लिए बड़ी भूल साबित हो सकती है। वेस्टइंडीज के पास डियंड्रा डॉटिन, कप्तान हेले मैथ्यूज और स्टेफनी टेलर जैसे दिग्गज और अनुभवी T20 खिलाड़ी मौजूद हैं। ये तीनों खिलाड़ी अकेले दम पर मैच का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। विशेष रूप से डियंड्रा डॉटिन जब अपनी लय में होती हैं तो दुनिया के किसी भी आक्रामक गेंदबाज को तहस नहस कर सकती हैं। गेंदबाजी की बात करें तो वेस्टइंडीज का स्पिन आक्रमण काफी मजबूत है। हेले मैथ्यूज और अन्य स्पिनर्स ने विपक्षी बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए काफी परेशान किया है। इसके अलावा उन्होंने टूर्नामेंट के कुछ मैचों में लोअर ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी करके भी दिखाई है। लंदन के कैनिंगटन ओवल की पिच की बात करें तो ये आमतौर पर बल्लेबाजों और तेज गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित मानी जाती है। यहां की बाउंड्रीज काफी बड़ी हैं, इसलिए स्पिनर्स को बीच के ओवरों में विकेट चटकाने और रन रोकने में सफलता मिल सकती है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को एक अच्छा स्कोर लगभग 170-180 रन बोर्ड पर लगाने का प्रयास करना होगा, क्योंकि दबाव वाले नॉकआउट मैच में लक्ष्य का पीछा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम लक्ष्य का पीछा करने में बेहद माहिर है, जैसा कि उन्होंने भारत के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान में किया था। दोनों टीमों के स्क्वाड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कमान सोफी मोलिन्यू के हाथों में है, जिसमें एलिस पेरी, एसले गार्डनर, बेथ मूनी, मैगन शुट जैसे स्टार शामिल हैं। वहीं वेस्टइंडीज की टीम हेले मैथ्यूज की कप्तानी में मैदान में

0: उतर रही है, जिसमें डियांड्रा डॉटिन, स्टेफनी टेलर और शाइमन कैंपबेल जैसी अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं। मैच की परिस्थितियों और दोनों टीमों के बीच पिछले मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी नजर आता है। आईसीसी इवेंट्स में ऑस्ट्रेलिया का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। वेस्ट इंडीज के लिए जरूरी होगा कि वे ऑस्ट्रेलिया को बड़ा स्कोर बनाने से रोके और शुरुआत में ही उनके टॉप ऑर्डर के विकेट चटकाएं। अगर वेस्ट इंडीज को फाइनल में जगह बनानी है तो उन्हें अपनी फील्डिंग और गेंदबाजी दोनों में 100% देना होगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम चाहेगी कि वे अपनी जीत की लय को बरकरार रखते हुए सीधे फाइनल का टिकट कटाएं। जो भी टीम इस दबाव भरे मुकाबले में अपनी नसों पर बेहतर काबू रखेगी वही लॉर्ड्स में होने वाले फाइनल में प्रवेश करेगी। धर्मेंद्र, बात क्रिकेट की कर रहे हैं तो अब बात करते हैं एशियन गेम्स की, जहां भारतीय महिला टीम की घोषणा हो चुकी है और आईची नोगया में आयोजित होने वाले 2026 एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला टीम का जो है घोषणा हो गई है। गौरतलब है कि चीन के हांगझाऊ में पिछले एशियन गेम्स में भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया था और इस बार का जो एशियन गेम्स का जो स्क्वाड है वो कुछ इस तरह से है। हरमनप्रीत कौर कप्तान, स्मृति मंदाना उप कप्तान, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष एज ए विकेट कीपर, जी कमिलिनी विकेट कीपर, भारती फुलमाली, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, श्रेंका पाटिल, राधा यादव और नंदिनी शर्मा।
1: जी, और क्रिकेट की बात आपने की है हेमंत, तो एक और खबर बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5 2020 मैच की सीरीज की शुरुआत चेस्टरली स्ट्रीट में कल से होने जा रही है और इस श्रृंखला के शुरू होने से पहले ही यह सवाल हवा में जोर शोर से तैर रहा है कि आयरलैंड के हाथों दो मैच की सीरीज में करारी हार के बाद क्या वैभव सूर्यवंशी को इस बार मौका मिलेगा। इस खबर पर हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से होना है। लेकिन अब चलते हैं टेनिस के कोर्ट की तरफ। लंदन के ग्रास कोर्ट वाले ऑल इंग्लैंड क्लब पर साल के तीसरे और सबसे प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम विंबलडन की शुरुआत हो गई है। आज इसके दूसरे दिन के मुकाबले चल रहे हैं और अभी अभी जो परिणाम आया है उसमें टी ड्राउट ने हरा दिया है मैनरीनो को। दोनों के बीच काफी कांटे का मुकाबला हुआ लेकिन यहां पर मैनरीनो जो है वो विजेता साबित हुए हैं। 6-2, 6-4, 6-1 से उन्होंने जीत हासिल की है और अभी बहुत कांटे का मुकाबला चल रहा है हिजिकाता और डी जोंग के बीच में। हम आपको बता दें कि कल पहले दिन कई बड़े खिलाड़ियों को जीत के लिए खूब पसीना बहाना पड़ा, यहां तक कि 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब के साथ नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की जद्दोजहद में जुटे सर्बिया के 39 साल के नोवाक जोकोविच के चीन के वू यिबिंग को हराने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि जोकोविच ने यह मैच जीता लेकिन जीत के लिए उन्हें 4 सेट तक जूझना पड़ा। जोकोविच फ्रेंच ओपन के तीसरे दौर में ब्राजील के युवा खिलाड़ी जाओ फोनसेका से हारने के बाद पहली बार कोर्ट पर उतरे थे। जोकोविच ने यह मैच बड़ी मुश्किल से 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 से जीता। मैच में जोकोविच काफी थके से लगे। उन्होंने भी मैच के बाद माना और कहा कि पूरी तरह तरोताजा महसूस नहीं कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि यह टूर्नामेंट का पहला ही दौर है। वहीं मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी जैनिक सिनर भी हारते हारते दूसरे दौर में पहुंच गए। उन्होंने करीब 3.5 घंटे तक चले मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए 5 सेट में जीत दर्ज की। सिनर को पहले ही राउंड में दुनिया के 50वें नंबर के खिलाड़ी मियोमिर केकमानोविच ने संघर्ष करने के लिए मजबूर किया। पिछले साल कार्लोस अल्कराज को हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीतने वाले सिनर इस बार डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में खेलने उतरे थे। मुकाबले के शुरुआती दबाव में सिनर से कई गलतियां हुई जिससे केकमानोविच ने पहला सेट जीत लिया। इसके बाद सिनर ने वापसी की लेकिन तीसरे सेट में वे कोर्ट पर फिसल कर गिर गए। चौथे सेट के दौरान सिनर के सफेद जूते से खून बाहर आने लगा था। मैच के बाद उन्होंने बताया कि उनके पैर के अंगूठे का नाखून उखड़ गया था लेकिन वे इस दर्द के बाद भी खेलते रहे। आखिरकार सिनर ने केकमानोविच को 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 से हरा दिया। हालांकि मेन सिंगल्स में ही तीसरे सीड फेलिक्स औगर एलिस्मे के लिए पहले दौर का मुकाबला आसान रहा। उन्होंने कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर शेवचेंको को 6-3, 6-1, 6-4 से शिकस्त दी। 8वीं सीड रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पहले राउंड में क्रोएशिया के मारिन सिलिक को लगातार 3 सेट में आसानी से 6-1, 6-2, 6-4 से घुटने टेकने पर मजबूर किया। हालांकि 11वीं सीड नॉर्वे के कैस्पर रूड और 12वीं सीड रूस के आंद्रे रुबले पहले ही दौर में उलटफेर के शिकार हो गए। रूड को पोलैंड के हुबर्ट हुरकाज ने लगातार सेट में आसानी से 4-6, 2-6 और 6-7 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। उधर रुबले 5 सेट के कठिन मुकाबले में अपने ही देश के रोमन शिफुलिन से 4-6, 7-6, 6-3, 3-6, 6-7 से शिकस्त खा बैठे। महिला सिंगल्स में पहली सीड बेलारूस की आर्याना सेवलेंका आसानी से दूसरे दौर में पहुंच गई। उन्होंने सर्बिया की टियोडोरा कोस्टेविक

0: को 6-2, 6-3 से पराजित किया। चौथी सीड अमेरिका की जेसिका पेगुला ने चेक गणराज्य की डार्जा विडमनोवा को 7-5, 6-3 से मात दी। सातवीं सीड अमेरिका की कोको गफ ने भी आसानी से जर्मनी की तमारा कोर 5 को 6-2, 6-1 से हराया। पांचवीं सीड रूस की मीरा एंड्रीवा ने पोलैंड की मैग्डा लिनेटे को 7-5, 6-4 से हराया। उधर चौदहवीं सीड जापान की नौमी ओसाका ने फ्रांस की एल्सा जैकमोड को 6-1, 7-5 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। इस मैच में ओसाका के ड्रेस की खूब चर्चा रही। ओसाका कोर्ट पर पारंपरिक जापानी परिधान किमोनो से प्रेरित सफेद ड्रेस पहनकर उतरी। विंबलडन के नियमों के मुताबिक सभी खिलाड़ियों को सफेद ड्रेस में ही खेलना होता है। हम आपको बता दें कि महिला और पुरुष सिंगल्स में भारत की तरफ से कोई चुनौती नहीं है। कोई भी भारतीय खिलाड़ी सिंगल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका है। हालांकि मेंस डबल्स में एन श्रीराम बालाजी और ब्राजील के मार्सेलो डेमोनिलर के साथ जोड़ी बनाकर खेल रहे हैं। उनका पहला मुकाबला बेल्जियम और डच जोड़ी सेंडर गिले और सेम बेरबिक से है। उधर यूकी भामरी न्यूजीलैंड के पूर्व ओलंपिक पदक विजेता माइकल वीनस के साथ कोर्ट में उतर रहे हैं। उनकी पहली भिड़ंत स्पेन और अर्जेंटीना की जोड़ी डेनियल मेरिडा और कैमिलो उगो कारबोली से होगी। और अब चलते हैं टेबल टेनिस की तरफ।
1: अब बात करते हैं टेबल टेनिस की। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित ओंटारियो कन्वेंशन सेंटर इस समय वैश्विक टेबल टेनिस के एक भव्य और प्रतिष्ठित महाकुंभ की मेजबानी कर रहा है। वर्ल्ड टेबल टेनिस के तत्वाधान में आयोजित हो रहा यूनाइटेड स्टेट्स स्मैश 2026 अपनी पूरी गति, ऊर्जा और चरम रोमांच के साथ आगे बढ़ रहा है। 26 जून से शुरू होकर 5 जुलाई 2026 तक चलने वाले इस ऐतिहासिक मेगा इवेंट में दुनिया भर के शीर्ष पैडलर्स अपनी पूरी क्षमता के साथ हिस्सा ले रहे हैं। इस टूर्नामेंट में दाब पर न केवल 1.55 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी भरकम और आकर्षक पुरस्कार राशि है, बल्कि वह प्रतिष्ठित खिताब भी है जो किसी भी खिलाड़ी के करियर को नई दिशा दे सकता है। ये इवेंट 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक की तैयारियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंच भी है। मुख्य ड्रॉ के मुकाबलों में अब तक कई ऐतिहासिक जीत, दिल तोड़ने वाली हार और अप्रत्याशित उलटफेर देखने को मिले हैं। वैश्विक मंच पर अपनी पहचान मजबूत कर रहा भारतीय दल भी इस प्रतियोगिता में पूरी ताकत के साथ चुनौती पेश कर रहा है। टूर्नामेंट के पुरुष एकल वर्ग में वैश्विक दिग्गजों का दबदबा और उनका आक्रामक खेल शुरुआत से ही देखने को मिल रहा है। दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी और शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन के वांग चुकिन ने अपने अभियान की शुरुआत बेहद रणनीतिक अंदाज में की है। उन्होंने राउंड ऑफ 64 के अपने पहले मुकाबले में अपने ही देश के झाऊ किहाऊ को सीधे गेमों में 3-0 से हरा दिया। फ्रांस के युवा सनसनी और चौथी वरीयता प्राप्त फेलिक्स लेब्रुन ने अपनी तेज तर्रार पेन होल्ड ग्रिप शैली का शानदार नजारा पेश करते हुए ताइपे के काऊ चेंग जुई को 3-0 से हराकर आसानी से अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही जापान के युवा स्टार सोरा मोत्सुशिमा, बेल्जियम के एंड्रियन रोसेनफोस और डेनमार्क के 15वीं वरीयता प्राप्त एंड्रस लिंड ने भी अपने अपने प्रतिद्वंदियों को हराकर अपनी मजबूत फॉर्म को आगे बढ़ाया। इस वैश्विक प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर डाले तो देश के लिए सबसे बड़ी सुखद और ऐतिहासिक खुशखबरी पुरुष एकल वर्ग से आई है। भारत के अग्रणी खिलाड़ी मानव ठक्कर ने राउंड ऑफ 64 के मुकाबले में एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया जिसकी गूंज पूरे खेल जगत में है। विश्व रैंकिंग में 36वें स्थान पर मौजूद मानव का सामना फ्रांस के विश्व नंबर 20 खिलाड़ी फेलेवियन कॉटन से था। ये मैच दबाव और तकनीकी उत्कृष्टता की एक अनूठी दास्तान बन गया। मानव ने शुरुआत धमाकेदार अंदाज में करते हुए पहला गेम ड्यूस में 12-10 से अपने नाम किया। फ्रांसीसी खिलाड़ी ने पलटवार करते हुए दूसरा गेम 10-12 से जीता। तीसरे गेम में मानव ने 10-7 से जीत दर्ज की, पर कॉटन ने चौथा गेम 7-11 से जीतकर मुकाबले को निर्णायक गेम में पहुंचा दिया। अंततः मानव ने अपनी मानसिक दृढ़ता का परिचय देते हुए पांचवा गेम 11-7 से जीतकर मैच 3-2 से अपने पक्ष में कर लिया। अब उनका सामना 1 जुलाई 2026 को दुनिया के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बांग चुकिन से होगा। वहीं दूसरी तरफ पुरुष एकल में भारत के सबसे अनुभवी खिलाड़ी जी साथियान को एक बड़ा झटका लगा है। साथियान को शुरुआती मैच में ही जापान के तेज तर्रार खिलाड़ी युता तनाका के खिलाफ मैदान में उतरना पड़ा। तनाका की तीव्र गति के सामने साथियान की रक्षात्मक दीवार बिखर गई और वे ये मैच सीधे गेमों में 3-0 से हार गए। महिला एकल वर्ग में भी भारतीय उम्मीदों को बड़ी निराशा हाथ लगी। भारत की सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी मनिका बत्रा का सामना जापान की वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी साकुरा योकोई से हुआ। मनिका ने पहला गेम 11-7 से जीतकर उम्मीदें जगाई, लेकिन जापानी खिलाड़ी ने मनिका के बैकहैंड पर लगातार दबाव बनाते हुए अगले 3 गेम 11-9, 11-4 और 11-8 से जीतकर मुकाबला 3-1 से अपने नाम कर लिया। सर्वोच्च रैंकिंग वाली महिला खिलाड़ी सिरिजा अकुला को भी दक्षिण कोरिया की चियोन हुई जू से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। युवा यशवनी घोरपड़े का सामना मकाऊ की यूलिंग जू से होना निर्धारित है, जबकि क्वालिफाइंग दौर में दिया चिताले को कजाकिस्तान की जोरेश अकाशेवा के खिलाफ 5 गेमों तक चले

0: इस संघर्ष में 2-3 से हार मिली। एकल स्पर्धाओं में इन मिश्रित परिणामों के बीच अब भारतीय दल की नजरें युगल स्पर्धाओं पर टिकी हैं। पुरुष युगल में मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी को 5वीं वरीयता दी गई है और उन्हें सीधे राउंड ऑफ 16 में प्रवेश मिला है। महिला युगल में यशस्वनी घोरपड़े और दिया चितले की युवा जोड़ी भी आज कोर्ट पर उतरेगी, जबकि मिश्रित युगल में मानुष शाह और दिया चितले की जोड़ी का सामना अमेरिका की जीशान लियंग और सैली मोय लैंड से होगा। भारतीय टेबल टेनिस ने हाल के वर्षों में शानदार प्रगति की है। मानव ठक्कर की जीत यह दर्शाती है कि भारतीय खिलाड़ी अब दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स स्मैश 2026 जैसे टूर्नामेंट खिलाड़ियों को अपनी रणनीतियों को परखने का अमूल्य अवसर प्रदान कर रहे हैं और ये अनुभव 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक की राह में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
1: जी हां, और बास्केटबॉल से भी खबर है, वो भी जान लेते हैं।
0: अब बात करते हैं बास्केटबॉल। FIBA बास्केटबॉल विश्व कप 2027 एशियाई क्वालिफायर में भारतीय पुरुष टीम का रात लेबनान के खिलाफ 56-99 से करारी हार के साथ ही विश्व कप की दौड़ से बाहर हो गई है। लेबनान के नौहाद लोफल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए इस मुकाबले में मेजबान टीम शुरू से ही हावी रही और भारत को इस क्वालिफाइंग मुकाबले में लगातार चौथी हार के लिए मजबूर किया। लेबनान ने पूरे मैच में अपना दबदबा बनाए रखा। हाफ टाइम तक लेबनान की टीम 53-29 से आगे थी। क्वार्टर वन में लेबनान 25-13 से आगे थी। क्वार्टर टू में लेबनान ने 28-16 का स्कोर किया। क्वार्टर थ्री में लेबनान के पक्ष में स्कोर 25-14 रहा, जबकि क्वार्टर फोर में उसकी बढ़त 21-13 की रही। भारत की ओर से इस मैच में हर्ष डागर ने 14 अंक बनाए, वहीं प्रणव प्रिंस और कवर संधु ने 9 अंक का योगदान दिया। लेबनान की तरफ से जहाद अल खतीब और ये गोइकचिन ने सर्वाधिक 16-16 अंक किए। इस हार के साथ ही भारत ग्रुप डी में 0-4 के रिकॉर्ड के साथ सबसे निचले पायदान पर है। भारतीय टीम कभी भी दूसरे दौर तक नहीं पहुंच सकी है। इस परिणाम के बाद लेबनान ने दूसरे दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वो कतर, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, जॉर्डन, ईरान और सऊदी अरब के बाद अगले दौर में पहुंचने वाली 7वीं टीम बन गई है। हालांकि भारत को अभी अपनी मेजबानी में 2 और मैच खेलने हैं। उसका अगला मुकाबला अहमदाबाद में 2 जुलाई को कतर से होगा। 5 जुलाई को भारत की टीम इस बार फिर ग्रुप डी की शीर्ष टीम लेबनान से भिड़ेगी।
1: और अब कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे यानी धर्मेंद्र
0: और मुझे यानी हेमंत
1: को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि इस मंच के शुरू होने के बाद से अब तक 50 लाख से अधिक आव्रजन मंजूरियां जारी की जा चुकी हैं। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। करीब 4 दशक की सैन्य सेवा के दौरान जनरल द्विवेदी ने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत कार्यों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं,

0: बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माता के 6 मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से शिक्षा को न्याय संगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पख्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने पाकिस्तान से अफगान क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। तालिबान के उपप्रवक्ता हमदुल्ला फितरत के अनुसार 28 जून की रात को हुए इन हवाई हमलों में 36 लोगों की मौत हुई और 163 अन्य घायल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. India has signed 28 migration and mobility partnership agreements with over 26 countries. Speaking at the Human Resource Mobility Forum in New Delhi, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today said the collective responsibility of nations is to combat illegal migration, exploitative practices, fraudulent intermediaries and human trafficking. He said India's commitment to safe and legal mobility is reflected in the e-migrate platform.
3: One key pillar which has brought about a transformation in the governance of migration has been the use of digital systems and tools. India's commitment to safe and legal mobility is reflected in the e-migrate platform. And since its inception, more than 5 million immigration clearances have been issued. This digital ecosystem has become a global example of leveraging technology to protect migrant workers while facilitating mobility.
2: President Draupadi Murmu has called upon students to use education as a means to build an equitable and inclusive society. She said educated youth should not work only for their own progress, but also strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. The president said this while addressing the first convocation of the Central Tribal University of Andhra Pradesh in Visakhapatnam. The president said every educated youth should help bring forward those left behind and contribute towards achieving the goal of a developed India by 2047. Union Education Minister Dharmendra Pradhan urged the students to become job creators rather than job seekers. The Special Intensive Revision SIR of Electoral Rolls has begun in Delhi, Karnataka, Meghalaya, Maharashtra and Jharkhand today. As part of the exercise, in Delhi, over 13,000 booth-level officers will visit every household till the 29th of next month to distribute pre-printed enumeration forms

0: राज्येषु सर्वेषु एकविंशत्युत्तरैकसहस्र मतदानकेन्द्रेषु गत्वा तेभ्यः मतदातृभ्यः प्रपत्राणि वितरिष्यन्ति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन आगामी द्वि दिवसेषु उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवाषु अतिवृष्टेः कृते नारंगी वर्णीया संचेतना प्रकटिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य सिक्किम, असम, मेघालय, केरल, माहे, उपहिमालयी, पश्चिम बंगालस्य च भागेषु संभाव्यन्ते। अपरपक्षे विभागेन अद्य दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ इत्यादिषु राज्येषु उष्ण तरंगस्य पूर्वानुमानं प्रकटितम्। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकर न्यगादीत यत् भारतेन षड्विंशतितोप्यधिक देशैः सह अष्टाविंशति प्रवासन गतिशीलता सहभागिता सहमति पत्रेषु हस्ताक्षराणि विहितानि। तेन अवैध प्रवासं शोषणात्मक प्रथाः कपटपूर्त मध्यस्थतां च प्रतिरोद्धुं राष्ट्राणां सामूहिक उत्तरदायित्वं प्रति विशेषरूपेण उपादिष्टम्। हूल दिवसावसरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विदेश शासनस्य अन्यायस्य विरुद्धं दृढतया समुपस्थितेभ्यः सिंधो काहू, चंद भैर, फुलो झानु इत्यादिभ्यः सहैव सर्वेभ्यः वीर जनजातीय जनेभ्यः भावपूर्णां श्रद्धांजलिं समर्पितवान्। फीफा विश्व कप स्पर्धा मालिकायां मोरक्को पैराग्वे देशौ राउंड ऑफ 16 चरणे स्वस्थानं सुरक्षितवन्तौ। मैक्सिको देशस्य ग्वाडालूप नगरे आयोजिते रमणीये द्वन्द्वे मोरक्को दलेन नीदरलैंड दलं 3-2 इत्यंकैः पराजितम्। अद्य रात्रौ अमेरिका देशस्य टेक्सास प्रान्ते आइवरी कोस्ट तथा नॉर्वे इत्यनयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम, राम। शाहिद भाई कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। देखिए, ग्रामीण सर्वेक्षण और डेटा यानी आंकड़े हमारे जो संपूर्ण विकास की रीढ़ की हड्डी है। स्टिक डाटा के बिना किसी भी योजना का निर्माण संभव नहीं है। यह जमीनी हकीकत, संसाधनों की उपलब्धता और नागरिकों की आवश्यकता की स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। चाहे फिर बात स्टिक योजनाओं के निर्माण की हो, यानी गांवों में जैसे गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और इन समस्याओं को समझने के लिए सर्वेक्षण और इस डेटा का उपयोग करके सरकारी, पंचायत राज, मंत्रालय जैसी योजनाओं के जरिए अनेक नीतियाँ बना सकते हैं।
1: इतना ही नहीं है सुनील भाई, ये छोटी छोटी जो जानकारियाँ होती है ना, जैसे हम घर बनाते हैं तो उसमें कहाँ पे क्या लगना है, किस तरह की क्या क्या ज़रूरतें आनी है, वो उस रॉ मटेरियल की तरह काम करती हैं। और एक एक जानकारी, वो छोटी हो या बड़ी, अगर वो हमारे पास पूरी तरीके से नहीं है, उसके लिए गहन सर्वेक्षण कराया जाता है ताकि वो सारी जानकारी आ जाए। अगर वो नहीं है तो हमारी पूरी परियोजना और योजना, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो सकता है।
0: बिल्कुल। और देखिए, साथ ही जानकारी मिलती है कि भाई क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ पे अस्पताल है, कहाँ पे स्कूल की आवश्यकता है, कहाँ पे अस्पताल की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, कृषि और आजीविका में सुधार में जैसे फसल उत्पादन, भूमि के रिकॉर्ड और आय के स्रोतों का डाटा कृषि कल्याण विभाग को कृषि सुधार और नई तकनीक अपनाने में मदद करता है। तो देखिए भाई, आज एक ऐसी ही जानकारी भाइयों को दिला रहे हैं और जानकारी का विषय है ग्रामीण सर्वेक्षण और डेटा का हमारे विकास में महत्व। और जानकारी दे रही हैं डॉक्टर सवेंद्रनाथ दुग्गल, आप शिक्षक हैं नई दिल्ली में।
2: गांव की मिट्टी, लोगों की आशा और जीवन का सार, सर्वेक्षण ही बनते हैं विकास का सच्चा आधार। नमस्कार, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो केवल सरकारी दफ्तरों की फाइलों में बल्कि हमारे खेतों, खलियानों, घर आंगनों और पनघर

सेंकड़ों तक से जुड़ा है। विषय है सर्वेक्षण से समृद्धि, बदलते ग्रामीण भारत की तस्वीर। सोचिए, जब कोई डॉक्टर मरीज को देखता है तो पहले नब्ज टटोलता है, रक्तचाप नापता है, जांच करता है, तब जाकर इलाज करता है। ठीक उसी तरह किसी भी देश, राज्य या गांव की समस्याएं हल करने के लिए पहले उसकी नब्ज यानी उसका डेटा जानना जरूरी होता है, और ये डेटा मिलता है सर्वेक्षण से, यानी सुव्यवस्थित सवाल जवाब और गणना की प्रक्रिया से। आप सोचते होंगे, ये सर्वे, ये आंकड़े, ये डेटा, ये तो बड़े बड़े अफसरों के काम की बातें हैं। लेकिन नहीं, जब कोई सरकारी कर्मचारी आपके दरवाजे पर आकर पूछता है आपके घर में कितने बच्चे हैं, खाना पकाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है, पास में अस्पताल है या नहीं, तो वो एक ऐसा धागा बुन रहा होता है जिससे बाद में विकास की पूरी चादर तैयार होती है। ग्रामीण सर्वेक्षण का अर्थ है गांव-गांव जाकर, घर घर दस्तक देकर जन जन से जानकारी एकत्र करना। ये जानकारी हो सकती है जैसे कि कितने लोगों के पास जमीन है, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने परिवारों के पास शौचालय है, कितने किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है। ये आंकड़े छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन जब लाखों गांव की जानकारी एक साथ आती है तो एक विशाल तस्वीर उभरती है जो नीति निर्माताओं को बताती है कि कहां क्या कमी है, कहां क्या करना जरूरी है। मध्य प्रदेश में सन 2015 में एक सर्वेक्षण हुआ जिसमें पता चला कि कई आदिवासी गांव में बच्चों में कुपोषण की दर 50% से भी अधिक है। इस डेटा के आधार पर भूख मुक्त गांव अभियान शुरू हुआ, पोषण केंद्र खुले, आंगनवाड़ी मजबूत हुई और 3 वर्षों में कुपोषण दर 30% तक घट गई। बिना सर्वेक्षण के ये समस्या शायद वर्षों तक अनदेखी रहती। ये कोई आधुनिक विचार नहीं है, हमारे भारत की महान परंपरा में डेटा और सर्वेक्षण की जड़ें बहुत गहरी हैं। आज से हजारों साल पहले चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा था कि राज्य को अपनी प्रजा की आबादी, व्यवसाय, कृषि भूमि और आय का पूरा लेखा जोखा रखना चाहिए। उन्होंने कहा था, जो राजा अपनी प्रजा की दशा नहीं जानता वो अंधेरे में तीर चलाता है। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में भी उनके राज्य में चिटनीस और सुरनीस जैसे अधिकारी होते थे जो गांव-गांव की जनसंख्या, फसल और व्यापार का विवरण रखते थे। यही जानकारी उनकी राज्य व्यवस्था की नींव थी। कहा जाता है कि शिवाजी महाराज जब किसी गांव में जाते थे तो वहां के किसान का नाम, उसकी जमीन और उसकी समस्या सब उन्हें पहले से पता होती थी। ये था हमारा भारतीय ज्ञान, जो बहुत पहले से समझ चुका था कि जानकारी ही शक्ति है। अब जरा आज के भारत की बात करते हैं। हमारे देश में हर 10 साल पर जनगणना होती है। 2011 में जनगणना में लगभग 27 लाख कर्मचारियों ने घर घर जाकर जानकारी एकत्र की थी। लगभग 24 करोड़ घरों का सर्वे हुआ था। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक अभ्यास था। लेकिन सिर्फ जनगणना ही नहीं, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन हर साल ग्रामीण इलाकों में जाकर रोजगार, खपत, स्वास्थ्य और शिक्षा का डेटा जमा करता है। इसी डेटा के आधार पर तय होता है कि देश में गरीबी की रेखा कहाँ खींची जाए। इसी से तय होता है कि कितने लोगों को राशन कार्ड मिलेगा, कहाँ आंगनबाड़ी खुलेगी, किस जिले को मनरेगा के तहत ज्यादा रोजगार दिया जाएगा। सोचिए, एक छोटे से गांव के एक साधारण परिवार के जीवन पर असर डालने वाला फैसला नीति निर्माता तब सही तरीके से कर सकते हैं जब उनके पास उस परिवार का सच्चा डेटा हो। वरना योजनाएं बनेंगी, पैसा खर्च होगा, लेकिन लाभ उन तक नहीं पहुंचेगा जिन्हें सच में जरूरत है। ग्रामीण सर्वेक्षण की बात करें तो हम इसे एक ऐसी दूरबीन मान सकते हैं जो नीति निर्माताओं को गाँव की असलियत दिखाती है। जब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सर्वे करता है तो पता चलता है कि किस राज्य के किसान बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं। इसी आधार पर प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी योजनाएं तैयार होती हैं। या फिर हम लें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। इस सर्वे ने बताया कि देश के कुछ राज्यों में बच्चियों में कुपोषण की दर बहुत ज्यादा है। बस यहीं से जन्म लिया पोषण अभियान ने। आज लाखों माताओं

और बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है, सिर्फ इसलिए कि किसी ने एक दिन एक गांव में जाकर एक बच्चे का वजन नापा था और उसे रिकॉर्ड किया था। ये है डेटा की ताकत, एक अंक, एक सर्वे जो एक पूरी पीढ़ी की तकदीर बदल सकता है। मेरी फसल मेरी जानकारी आंध्र प्रदेश में 2019 में एक विशेष कृषि सर्वेक्षण हुआ, जिसमें हर किसान की फसल, जमीन और आर्थिक स्थिति का डिजिटल रिकॉर्ड बनाया गया। जब अगले वर्ष बाढ़ आई तो सरकार को पता था कि कौन से किसान सबसे अधिक प्रभावित हुए। 72 घंटे के भीतर मुआवजा सीधे उनके बैंक खाते में पहुंच गया। पहले यही काम महीनों लेता था। आंकड़े केवल आर्थिक विकास के लिए नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब सर्वे के जरिए ये पता चला कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों में स्कूल छोड़ने की दर बहुत ज्यादा है, तो मध्याह्न भोजन योजना और छात्रवृत्ति कार्यक्रम को मजबूत किया गया। नतीजा, लाखों बच्चे आज स्कूल में टिके हैं। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 ने बताया कि देश के 30% ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं और उनकी मुख्य आजीविका मजदूरी है। इस डेटा ने ग्रामीण रोजगार नीतियों को नई दिशा दी। डेटा से पता चला कि महिला किसानों के नाम जमीन न होने से उन्हें कृषि ऋण नहीं मिलता और इसी आधार पर महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना शुरू हुई। आंकड़ों ने वो आवाज दी जो आम आदमी शायद कभी ऊंचे दफ्तरों तक ना पहुंचा पाता। भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव की आत्मा कृषि में। कृषि से जुड़े सर्वेक्षण किसानों की वास्तविक समस्याओं को सामने लाते हैं। इससे ये पता चलता है कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल अधिक उगाई जा रही है, कहां सिंचाई की कमी है, कहां उन्नत बीजों की आवश्यकता है और किन किसानों को तकनीकी सहायता की जरूरत है। इन जानकारियों के आधार पर कृषि विभाग योजनाएं तैयार करता है। मौसम संबंधी सलाह, फसल बीमा, मृदा परीक्षण और कृषि प्रशिक्षण जैसी सुविधाओं को सही लोगों तक पहुंचाने में सर्वेक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब किसान की वास्तविक स्थिति सामने आती है तभी उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप सहायता पहुँच पाती है। जल जीवन मिशन का ही उदाहरण लीजिए। महाराष्ट्र के नासिक जिले के एक गांव में वर्षों से पानी की भीषण समस्या थी। ग्रामीण महिलाएं दूर दूर से पानी लाने को विवश थीं। जब उस क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया तब पता चला कि वहां पेयजल स्रोतों की संख्या बहुत कम है और अधिकांश स्रोत गर्मियों में सूख जाते हैं। इस जानकारी के आधार पर नई जल योजनाएं बनाई गईं, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया गया और पाइपलाइन की व्यवस्था की गई। कुछ वर्षों बाद वही गांव जल संकट से काफी हद तक मुक्त हो गया। ये उदाहरण बताता है कि समस्या का समाधान तभी संभव है जब समस्या की सही पहचान हो और सही पहचान सर्वेक्षण से ही संभव होती है। हमारे युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं। आज अनेक विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। युवा जब समाज की वास्तविक समस्याओं को समझते हैं तब उनमें संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। यदि युवा डेटा संग्रह, सामाजिक अध्ययन और जागरूकता अभियानों में भाग लें तो विकास की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बन सकती है। युवाओं की ऊर्जा और तकनीकी दक्षता सर्वेक्षण कार्यों को नई दिशा दे सकती है। आंकड़ों में छिपी कहानी जन जन का विश्वास है। सर्वेक्षण की सच्ची राह ही विकास का प्रकाश है। गांव बढ़े, समाज बढ़े, बढ़े देश का मान। सही जानकारी से ही बनेगा भारत महान। आज की दुनिया में सर्वे का स्वरूप बदल गया है। पहले गांव-गांव कागज पेन लेकर जाने वाले सरकारी कर्मचारी अब टैबलेट और स्मार्टफोन लेकर जाते हैं। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर पंचायतें अपना डेटा अपलोड करती हैं। पीएम किसान योजना में किसानों का डेटा इतना सटीक है कि सीधे उनके बैंक खाते में पैसा पहुंच जाता है। आधार लिंक्ड डेटा ने यह सुनिश्चित किया कि एक ही व्यक्ति कई जगहों से लाभ न उठाए। इससे सरकार के करोड़ों रुपए बचे जो अब असली जरूरतमंदों तक पहुंचते हैं। ये सब संभव हुआ डेटा की पारदर्शिता से। और अब तो ड्रोन सर्वे भी आ गया है। हमारे खेतों की माप, फसल का आकलन, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पहचान, ये सब आकाश से होने लगा है। रिमोट सेंसिंग से

देश के हर गांव की सैटेलाइट इमेजरी उपलब्ध है। ये 21वीं सदी का ग्रामीण सर्वेक्षण है, तेज, सटीक और व्यापक। लेकिन हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। सर्वे और डेटा संग्रह में आज भी कई चुनौतियां हैं। सुदूर पहाड़ी और जनजातीय इलाकों में पहुंचना मुश्किल है। कई बार लोग सर्वेकर्ताओं को संदेह की नजर से देखते हैं। क्यों पूछ रहे हो, कहीं टैक्स तो नहीं लगेगा? ये सोच एक बाधा है। इसके अलावा डेटा की गुणवत्ता भी एक बड़ा सवाल है। अगर जमीन पर जाकर सर्वे सही नहीं हुआ तो बनने वाली नीतियां भी गलत होंगी। जैसे एक नक्शा अगर गलत बना हो तो रास्ता कितनी भी ईमानदारी से ढूंढो, मंजिल नहीं मिलेगी। इसीलिए जरूरी है कि हम सब, जब कोई सरकारी सर्वे करता हमारे दरवाजे पर आए, तो उसे सही सच्ची जानकारी दें। याद रखिए, आपका एक सच्चा जवाब आपके बच्चे के स्कूल, आपके गांव के अस्पताल और आपकी सड़क की नींव बन सकता है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 2018 में एक प्रयोग हुआ। हर गांव का विकास रिपोर्ट कार्ड बनाया गया, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क सभी का डेटा था। इस कार्ड को गांव की दीवार पर चिपकाया गया। जब ग्रामीणों ने खुद देखा कि उनके गांव में क्या कमी है, तो वे खुद सक्रिय हुए। 2 वर्षों में 80% गांव में कम से कम एक समस्या का समाधान स्वयं ग्रामीणों ने किया। डेटा ने जागरूकता जगाई, जागरूकता ने बदलाव लाया। साथियों, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि विकास की ये यात्रा सरकार अकेले नहीं कर सकती। जब कोई सर्वे करता आपसे मिलने आए तो उसे सहयोग दीजिए। जब पंचायत में कोई जानकारी मांगी जाए तो सही सही बताइए। जब आपके गांव में कोई सामाजिक आर्थिक सर्वे हो तो उसमें भाग लीजिए। क्योंकि डेटा तभी सच्चा होता है जब हम सच्चे होते हैं, तभी नीतियां सच्ची बनती हैं, और जब नीतियां सच्ची बनती हैं तभी विकास सच्चा होता है। इसीलिए कहा जाता है, हर नागरिक मायने रखता है। आप भी मायने रखते हैं। सर्वे के आंकड़े केवल संख्या नहीं, जनजीवन की सच्ची पहचान है। इन्हीं से संवरते गांव के सपने, इन्हीं से उज्जवल होते कल के अभियान है। भारत सरकार का लक्ष्य है डेटा फॉर डेवलपमेंट। नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म पर अब सैकड़ों सरकारी डेटा सेट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। कोई भी नागरिक, शोधकर्ता, पत्रकार या सामाजिक संस्था इनका उपयोग कर सकती है। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हमारे पास हर गांव, हर जिले का सटीक, नवीनतम और पारदर्शी डेटा होगा। राजस्थान के एक जिले के एक छोटी सी बात आप सुनिए। वहाँ NFHS सर्वे में पाया गया कि बच्चियों में एनीमिया की दर 72% से भी ज्यादा थी। इस डेटा के आधार पर वहाँ विशेष पोषण अभियान चलाया गया। आयरन की गोलियां बांटी गईं, माताओं को प्रशिक्षण दिया गया। 3 साल में वो दर घटकर 48% पर आ गई। ये जादू नहीं था, ये डेटा की और सर्वेक्षण की ताकत थी। झारखंड के एक दूर दराज गाँव में जब स्वास्थ्य सर्वे हुआ तो पता चला कि वहाँ की 80% प्रसूताएं घर पर ही प्रसव कराती हैं। इसके बाद जननी सुरक्षा योजना को उस क्षेत्र में विशेष रूप से लागू किया गया। आज वहाँ संस्थागत प्रसव की दर 65% से ऊपर है। तो साथियों, कि सर्वेक्षण और डेटा महज आंकड़े नहीं है, ये हमारे गाँव, हमारे परिवार और हमारे भविष्य की आवाजें हैं। चाणक्य से लेकर शिवाजी तक और जनगणना से लेकर ड्रोन सर्वे तक, ये यात्रा हमें बताती है कि जानकारी ही असली ताकत है। ग्रामीण सर्वेक्षण और डेटा कोई कागजी खेल नहीं है, ये वो आईना है जिसमें देश अपनी असली तस्वीर देखता है। ये वो नक्शा है जिसे देखकर सरकारें रास्ता चुनती हैं। ये वो आवाज है जो हर गाँव के, हर घर की बात नीति निर्माताओं तक पहुँचाती है। इसलिए अगली बार जब कोई सर्वेक्षण करता आपके दरवाजे पर आए, जब कोई सरकारी फॉर्म भरने को कहे, जब कोई जनगणना कर्मचारी आए, तो उसे अपना सच्चा साथी समझें, उसे सही जानकारी दें, क्योंकि आपका एक सच्चा उत्तर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है। जब एक किसान का नाम PM किसान के डेटाबेस में दर्ज होता है तो वो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक उम्मीद दर्ज होती है। आइए हम सब मिलकर सर्वेक्षण की शक्ति को पहचानें, इसमें भागीदारी करें और एक ऐसे भारत के निर्माण में सहयोगी बनें जहां विकास हर द्वार तक पहुंचे, हर खेत तक पहुंचे, हर बच्चे की मुस्कान तक पहुंचे। गांव की हर धड़कन को जब आंकड़ों की भाषा मिल जाती है,

0: तभी विकास की राह सही दिशा और नई परिभाषा पाती है।
1: शाहिद भाई, ये तो जानकारी रही ग्रामीण सर्वेक्षणों और डेटा का हमारे विकास में महत्व, और जानकारी दे रही थी डॉक्टर संवेदना दुग्गल, आप शिक्षिका हैं नई दिल्ली में
2: जी।
1: और देखिए इतना ही नहीं भाई, सरकार द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, ग्रामीण युवाओं के विकास के लिए अगर हम बात करें तो अनेक योजनाएँ और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम मेक इन इंडिया भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य विनिर्माण को बढ़ावा देना, निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर को 1% तक बढ़ाना और रोजगार सृजन, देश के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करना, साथ ही सकल घर जो घरेलू उत्पादन को जीडीपी में योगदान यानी विनिर्माण क्षेत्र के हिस्सेदारी को 25% तक ले जाना।
2: जी हाँ।
1: और साथ ही देखिए भाई, अगर इस योजना के मुख्य बिंदुओं की अगर बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 27 जो प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे ऑटोमोबाइल, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कुल मिलाकर इस तरह के जो 27 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकारी प्रक्रियाओं को आसान बनाना, लाइसेंस नियमों को सरल करना और निवेशकों को एकल खिड़की के माध्यम से मंजूरी प्रदान करना भी इसमें शामिल किया गया
2: है। इसके अलावा भी सुनील भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो जन सामान्य की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए सरकार चला रही है, और जैसा आप बता रहे थे ये सर्वेक्षण जो है, जो रेणु बताया कि सर्वेक्षण ही वो सूत्र है या कहें कि सूत्रधार है जिसके ज़रिए से ये विकास की यात्रा तय की जा रही है।
1: तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात मनोरंजन की है तो राकेश त्यागी से सुन लेते हैं ये रागनी और भाई किस्सा रहेगा सत्यवान सावित्री का।
3: कोई

0: तो अभी आप सुन रहे थे राकेश त्यागी की आवाज में।
1: और कार्यक्रम के अंत में एक और रागनी सुनवा लेते हैं हरेंद्र नागर से।

0: अभी आपने सुना हरिंदर नागर की आवाज में ये राग।
1: रागनी, और हरिंदर नागर की गाइस रागनी के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय ये समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल। ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम
0: राम
1: राम, राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए UPI सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का एक हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। यहां टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू भाता के 6 मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने

0: सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में छात्रों से शिक्षा को न्याय संगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का मुकाबला 9 बजे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सब किसान बहन भाइयों को
1: राम
0: राम, राम। शाहिद भाई, देखिए विज्ञान की तरक्की के साथ साथ खेती में काफी परिवर्तन आया। अब वो समय नहीं रहा जब किसान भाई वही गिनी चुनी खाद्य फसलें लगाते
1: बिल्कुल
0: थे।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब सारी चीजें जो है ना अपडेटेड हो गई हैं, टेक्नोलॉजी से लैस हो गई हैं, और बड़ी चीज है कि उनके साथ साथ पैरेलल योजनाएं भी बड़ी अद्यतन हो गई हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अब किसान भाई अदल बदल कर नई नई फसलें लगा रहे हैं, साथ ही वैज्ञानिक ढंग से खेती कर रहे हैं। और भाई अब कृषि ने एक व्यवसाय का रूप ले लिया है, यानी एग्री स्टार्टअप कृषि और इससे जुड़े व्यवसायों के लिए जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है, और यह लोन बिना किसी गारंटी के मिलता है। और भाई देखिए सबसे बड़ी बात, इसका उपयोग कृषि उपकरणों, डेयरी, पोल्ट्री और खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी किया जाता है। साथ ही अगर बात करें तो देखिए मुद्रा लोन के तहत लोन की श्रेणियां और राशियों की अगर बात करें तो इसमें तीन श्रेणियों में इसको बांटा गया है। शिशु लोन की बात करें तो 50,000 तक का स्टार्टअप के जो शुरुआती चरण है उसके लिए, और किशोर लोन जो 50,000 एक रुपये से ऊपर 5 लाख तक का जो व्यवसाय के विस्तार के लिए, और तरुण लोन की अगर बात करें तो 5 लाख से 10 लाख तक जो स्थापित हो चुके व्यवसाय के लिए यह योजना चलाई गई है। और देखिए खाद्य प्रसंस्करण की बात करें तो मसाले, अचार, बेकरी उत्पादन और पशुपालन और डेयरी की बात करें तो मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, और साथ ही देखिए भाई कृषि सेवाएं, कस्टम हायरिंग सेंटर, फार्म मशीनरी किराए पर देना, एग्री क्लिनिक आदि के लिए भी यह योजना लागू की गई है।
1: जी हाँ। इतना ही नहीं सुनील भाई, कृषि से जुड़ी और भी कोई कोई इनोवेशन करना चाहते हैं, उससे जुड़ी कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कोई स्टोर खोलना चाहते हैं, उसके लिए भी इन योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। और जो तीन श्रेणियां आपने बताई, शिशु, किशोर और जो है कि प्रौढ़ ना, तो उस श्रेणी में जो है कि आप प्रोजेक्ट के लिए इस मुद्रा योजना से जो है कि ले सकते हैं लोन।
0: और भाई देखिए यदि मुद्रा लोन से आप लेना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए भाई अगर जो कागजों की बात करें या कागजी कार्रवाई की बात करें

0: देखिए, पहचान पत्र का होना आवश्यक है, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट, साथ ही पते के प्रमाण के लिए पिछले 3 महीने का बिजली का बिल या बैंक स्टेटमेंट आपके होनी चाहिए।
1: जी हाँ,
0: और साथ ही देखिए, एग्री स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस यदि लागू हो तो वो भी होना चाहिए। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट, व्यवसाय की विस्तृत जानकारी, लागत और लाभ का अनुमान आपको देना होगा। साथ ही जो पासपोर्ट साइज की फ़ोटो भी आपको देनी होगी। तो यदि आप इसके तहत लोन लेना चाहते हैं या आवेदन करना चाहते हैं, तो भाई ये सभी कार्रवाई आपको पूरी करनी पड़ेगी और बड़ी आसानी से आप मुद्रा लोन ले सकते हैं। तो ये तो रही भाई बात, और भी बातचीत भाइयों से करेंगे शाहिद भाई, लेकिन अब बात करते हैं मनोरंजन की। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दिनेश गिरी के गाइस उपदेश से।

0: शाहिद भाई, ये तो उपदेश सुना दिनेश गिरी से। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि भाई विज्ञान की तरक्की के साथ साथ खेती में काफ़ी परिवर्तन आया। पहले क्या था शाहिद भाई, किसानों को अक्सर मौसम की जानकारी, फसलों की कीमतों और विशेषज्ञों की सलाह जैसी बुनियादी जानकारियों के लिए संघर्ष करना पड़ता था। और इतना ही नहीं,
1: बहुत दूर दराज तक कई बार यात्रा करनी पड़ती थी, लोगों से जानकारियां लेनी पड़ती थी। लेकिन अब तो सब
0: सबसे बड़ी बात जो है ना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना पड़ता था। लेकिन किसान सुविधा नामक एक नया मोबाइल ऐप सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, जो किसानों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। और इस ऐप के द्वारा देखिए मौसम की जानकारी, यानी किसान भाई अपने वर्तमान दिन और आने वाले 5 दिनों तक के मौसम की पूर्व अनुमान देख सकते हैं। बात करें मंडी भाव की, तो देश भर की विभिन्न मंडियों में फसलों के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर कृषि सलाह की बात करें, तो फसल की सुरक्षा और बेहद जो उपजाऊ के लिए कृषि जो विशेषज्ञ हैं भाई, उनकी सलाह और सुझाव ले सकते हैं। साथ ही देखिए भाई, कृषि सलाह की बात करें, तो फसल की सुरक्षा और जो बेहतर जो उत्पादन है उसकी जानकारी ले सकते हैं। इतना ही नहीं, देखिए सरकारी योजनाएँ जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही हैं, विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी इस ऐप के द्वारा ले सकते हैं। और साथ ही देखिए आसपास मौजूदा खाद, बीज, कीटनाशी डीलरों, निकटतम मिट्टी प्रशिक्षण जो प्रयोगशालाओं और पशु चिकित्सालयों तक की जानकारी इस ऐप के द्वारा ली जा सकती है। और इस ऐप की शायद भाई एक खासियत और ये है कि स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध है।
1: जी हाँ, यही सबसे बड़ी चीज़ है। और एक बड़ी चीज़ जो रह गई भाई, वो ये है कि हमारे जो पशुपालन से जुड़े हुए सीमांत किसान हैं, उनके लिए विभिन्न प्रकार की जानकारियां इस ऐप पे मौजूद हैं।
0: बिल्कुल, तो देखिए भाई इस ऐप की मदद से आप काफ़ी जो फ़ायदा उठा सकते हैं। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुभाष चंद लुसाना से सुन लेते हैं एक और उपदेश।

0: शाहिद भाई, ये तो उपदेश सुना सुभाष चंद्र लुसाना से।
1: जी
0: और देखिए, अगर मौसम की बात करें तो भाई देखिए, आने वाले जो समय में अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई जा रही है, और न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 28 से 29 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही हल्की बारिश या मध्य बारिश की भी उम्मीद जताई
1: जी
0: जा रही है। और भाई देखिए, जुलाई का महीना शुरू हो गया है, जिन महीनों कल से जुलाई का महीना शुरू हो जाएगा,
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: जिन किसान भाइयों ने मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंग मूंगफली की जो बुआई करना चाहते हैं और भाई बुआई ना किए हैं, तो वह पहले सप्ताह तक भाई ये कर लें। साथ ही मौसमी सब्जियों की अगर बात करें तो जुलाई के महीने में बरसाती जो सब्जियां हैं उनसे काफ़ी मुनाफा जो कमाया जा सकता है। और भाई बेल वाली सब्जियों की अगर बात करें तो लौकी, तुरई, करेला, कद्दू और खीरा लगा सकते हैं। साथ ही भाई अन्य सब्जियों में भिंडी, बैंगन, टमाटर, मूली और अगेती, फूलगोभी भी लगा सकते हैं। साथ ही भाई देखिए, जो फसलों में खरपतवार रोकने के लिए निराई गुड़ाई करते रहें, धान में खरपतवार नियंत्रण के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह भी लें। और साथ ही भाई देखिए, जो हमारे किसान भाई हैं वो जो समय समय पर जाकर अपने खेतों का ध्यान रखें। और बीज का हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं कि भाई जब बीज आप लो तो उपचारित बीज लें, और अगर उपचारित ना हो तो उसको उपचारित अवश्य कर लें। और अब भाई बारी है कल के कार्यक्रमों के बारे में, तो कल 5:10 पर लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोकरंजनी, 6

0: बज कर 30 मिनट पर कार्यक्रम ग्राम संसार, जिसमें चर्चा करेंगे वन महोत्सव सप्ताह के बारे में और साथ ही जानकारी देंगे महिलाओं में होने वाले गर्भाशय कैंसर के लक्षण, उपचार और उसके बारे में। और अगर योजना की बात करें तो योजना की जानकारी देंगे आयुष्मान भारत के बारे में। और भाई, ये तो हमारा आज का कार्यक्रम था। आपको कैसा लगा, इसके लिए आप अपने सुझाव एवं प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें। इसके लिए हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी नई दिल्ली 110001। आप हमें मेल भी कर सकते हैं शायद। भाई मेल एक बार बता दो।
1: हमारा ईमेल एड्रेस है feedback@gmail.com।
0: और इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल। लोग ग्राम संसार कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है और श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है गजल और कव्वाली का कार्यक्रम।

श्रोताओं, जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ आज का गजल और कव्वाली से सजाए कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। दिल्ली में ईवी पॉलिसी कल से लागू होगी। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा, भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की मानवीय पहलों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने द्वारका फेज वन में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया और दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली रिज इंटरप्रिटेशन केंद्र का उद्घाटन किया। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्रों का वितरण आज से प्रारंभ हो गया है। इस अभियान के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO 29 जुलाई तक दिल्ली के सभी 13 जिलों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के हर घर में जाएंगे। वे सभी मौजूदा मतदाताओं को सत्यापन और मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की दो दो प्रतियां वितरित करेंगे।
1: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। दिल्ली में 1,45,10,298 मतदाताओं के लिए कुल 13,033 मतदान केंद्र है। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। उन्होंने मतदाताओं से अपना गणना प्रपत्र सही जानकारी के साथ भरकर निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने अपने BLO को जमा करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सही और अद्यतन मतदाता सूची एक मजबूत लोकतंत्र की बुनियाद होती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि कल से दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 लागू होने जा रही है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये नीति केवल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि मार्च 2030 तक परिवहन व्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव, चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार और विभिन्न वाहन श्रेणियों के चरणबद्ध विद्युतीकरण का व्यापक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती है। उन्होंने बताया कि नई नीति में इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों पर 30,000 रुपए तक का खरीद प्रोत्साहन जारी रखा गया है। इसके साथ पहली बार पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर 10,000 रुपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2028 की 1 अप्रैल से दिल्ली में नए दो पहिया वाहनों का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में किया जाएगा। साथ ही वर्ष 2027 की 1 जनवरी से L5 श्रेणी के नए ऑटो रिक्शा का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में किया जाएगा।

0: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि पहले केवल सीमित संख्या में ई कार्गो वाहनों को प्रोत्साहन और कुछ मार्गों पर नो एंट्री समय से छूट का प्रावधान था, लेकिन अब N1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1 लाख रुपए तक का खरीद प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण तथा विकास के लिए 2 महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार हमारे स्मारक हमारा गौरव योजना के अंतर्गत दिल्ली मुख्यमंत्री स्मारक अभिग्रहण योजना और दिल्ली मुख्यमंत्री विरासत नवोत्थान योजना को शुरू कर रही है। श्रीमती गुप्ता ने जानकारी दी कि दिल्ली मुख्यमंत्री स्मारक अभिग्रहण योजना के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम, निजी कंपनियां, ट्रस्ट संस्थाएं और इच्छुक नागरिक स्वैच्छिक योगदान के जरिए सरकार के ऐतिहासिक स्मारकों को गोद ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली मुख्यमंत्री विरासत नवोत्थान योजना के अंतर्गत पात्र संस्थाओं को अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा सकेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी और सेंट जॉन एम्बुलेंस संगठन के कामकाज की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि ये संस्थाएं मानवीय सेवा की गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की मानवीय पहलों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम और शीतकालीन राहत कार्य शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आज द्वारका फेज 1 में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने सीवर लाइन बिछाने के विकास कार्यों की शुरुआत भी की। श्री बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों तक व्यापक और निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रहा है। उन्होंने बताया कि इन केंद्रों पर प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध रहता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण, जच्चा बच्चा देखभाल और बच्चों को विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए 12 प्रकार के मुफ्त टीकाकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज राजौरी गार्डन क्षेत्र में स्थित विभिन्न सरकारी खाली पड़ी जमीनों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में दिल्ली विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा दिल्ली परिवहन निगम सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों के स्वामित्व वाली खाली भूमि का विस्तृत आकलन किया गया। दिल्ली के शाहदरा उत्तर और शाहदरा दक्षिण क्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने अतिरिक्त स्वच्छता संसाधनों को हरी झंडी दिखाई। एक रिपोर्ट।
1: शाहदरा उत्तर और शाहदरा दक्षिण क्षेत्र के लिए कुल 76 आधुनिक स्वच्छता वाहनों और उपकरणों को स्वच्छता अभियान में शामिल किया गया है। इनमें 52 स्वच्छता वाहन शाहदरा उत्तरी और 24 वाहन शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा 24 टिपर ट्रक्स, 10 हुक लोडर और 28 बैटरी रिक्शा भी शामिल है। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा निगम को उपलब्ध कराए जा रहे संसाधनों और वित्तीय सहयोग से स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजधानी के सभी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं दिल्ली नगर निगम के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित यह बेड़ा दिल्ली की सफाई व्यवस्था को नई गति देगा। शिवांकी रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने शाहदरा दक्षिण क्षेत्र का निरीक्षण कर विभिन्न विकास परियोजना और आधारभूत संरचनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को विकास कार्यों में अपेक्षित गति लाने के निर्देश भी दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आज पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली रिज इंटरप्रिटेशन केंद्र DRIC का उद्घाटन किया। इस केंद्र की स्थापना दिल्ली रिज की अनूठी पारिस्थितिकी विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए की गई है।
2: इस अवसर पर पर्यावरण

0: वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश गोयल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। श्री गोयल ने कहा कि यह केंद्र उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है जो दिल्ली रिज के इतिहास और विरासत के बारे में जानना चाहते हैं। यह केंद्र मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। सोमवार तथा सार्वजनिक अवकाश के दिन ये केंद्र बंद रहेगा। रेल निगम ने बताया कि जो आगंतुक मेट्रो से नहीं आ रहे हैं वे इस केंद्र को देखने के लिए पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के कस्टमर केयर से 11 रुपए का प्रवेश टिकट खरीद सकते हैं। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आनंद पाठक।
1: नई दिल्ली के बाराखंबा रोड स्थित एक रेस्तरां में आज आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग के अनुसार घटना की सूचना दोपहर लगभग 3:40 पर प्राप्त हुई। अग्निशमन विभाग के अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि बचाव कार्य के लिए दमकल की 7 गाड़ियां तैनात की गई। उन्होंने बताया कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है।
2: मौके पे जब फायर सर्विस के लोग आए तो ये पाया गया कि किचन के अंदर उनकी चिमनी और उसके अंदर जमा जो ऑयल होता है उसके अंदर फायर थी और अब जो है आग को पूरी तरह से काबू में कर लिया गया। पूरी घटना के अंदर कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई है। अभी हम खाली बिल्डिंग को इवैक्यूएट करा रहे हैं।
1: पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ग्राम सभाओं में कम भागीदारी पर राष्ट्रीय अध्ययन रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग के सदस्य डॉ आर बालासुब्रमण्यम ने यह रिपोर्ट जारी की। यह अध्ययन ग्रामीण भारत में सहभागी लोकतंत्र, स्थानीय जवाबदेही और समुदाय केंद्रित विकास के एक जीवंत संस्थान के रूप में ग्राम सभा को सशक्त बनाने के लिए साक्ष्य आधारित एक रूपरेखा प्रदान करता है। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय के सचिव राज विवेक भारद्वाज ने कहा कि पिछले दशक में देश के ग्रामीण हिस्सों में सड़क संपर्क, जल और बिजली आपूर्ति से संबंधित समस्याओं का समाधान किया गया है।
3: पिछले दशक में बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हुआ है। गांव में जैसे पानी की समस्या थी, हर घर में हर नल में जल समस्या थी, बिजली की, सड़कों की, 98% गाँव में आज की तारीख में संपर्क है, सड़क, बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हुआ।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेज ILBS के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश की स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
4: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल मानव संसाधनों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। दिल्ली पुलिस ने आज मादक पदार्थ तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 विदेशी और 1 भारतीय नागरिक शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 71 ग्राम एम्फेटामाइन बरामद किया है। पुलिस ने कहा कि वो अब मादक पदार्थ के स्रोत, वित्तीय लेन देन और अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र, जनप्रतिनिधित्व, संवाद और जनभागीदारी की मजबूत नींव पर आधारित है। श्री विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र संवाद, सहमति और उत्तरदायित्व की सशक्त परंपरा का प्रतीक है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि शिक्षाविद, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के रूप में श्री वर्मा ने सार्वजनिक जीवन में सेवा के उच्च मानदंड स्थापित किए। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में श्री वर्मा को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि श्री वर्मा ने दिल्ली में

0: भाजपा संगठन को मजबूत बनाने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। दिल्ली में ईवी पॉलिसी कल से लागू होगी। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की मानवीय पहलों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने द्वारका फेज वन में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। और दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली रिज इंटरप्रिटेशन केंद्र का उद्घाटन किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका।

श्रोताओं, कितना सुंदर वो एहसास होता है ना, जब ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, हमें खुद से मिल पा रही हो, एकांत सा वो समा हो, आसमान में चांद हो और सपनों से सजे कई सारे सितारे हों। तो चलिए ऐसे ही किसी सफर की ओर आगे बढ़ते चलते हैं। अभिजीत की आवाज़ में अभी आपने सुना तेरे बिना फिल्म से लिया ये गीत। आइए अब आपको सुनाते हैं कयामत फिल्म से लिया गीत। आवाज़ है कविता कृष्णमूर्ति और अभिजीत की।

ये प्रेम का जादू ही कुछ ऐसा होता है, पैर जमीन पर नहीं और ख्वाबों पर किसी तरह का पहरा नहीं, बस चुपके से कोई आता है और दिलों की अदला बदली करके ले जाता है। कुछ भी कहिए, ये जो प्रेम है, ये जो प्यार का रंग है, ये इंद्रधनुषीय रंग में हमें रंग जाता है। ना कोई पहरा और ना ही किसी तरह का कोई नियंत्रण रह जाता है। श्रोताओं, आइए आगे बढ़ाते हैं अपने इस कार्यक्रम को और आपको सुनवाते हैं मासूम फिल्म से लिया गीत। आवाज है साधना सरगम और साथियों की।

श्रोता, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत से सजा कार्यक्रम गीतमालिका, और आइए अब आपको सुनवाते हैं खिलाड़ी फिल्म से लिया गीत, आवाज़ें अलका याग्निक और अभिजीत की।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में अभी आपने सुना साजन फिल्म का ये गीत और श्रोताओं कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
2: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
1: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार

0: समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation.
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़क वासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

0: ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
2: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आमतौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्य प्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिधो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कारोबार करने और रहन सहन में आसानी को गैर इंज़िबाती बनाने के सिलसिले में सेक्रेटरी साहिबान से बातचीत की है। उन्होंने आत्मनिर्भरता को फरोग देने पर भी तबादला ख्याल किया। रोजगार और आजीविका के लिए विकसित भारत गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी एक्ट 2025 कल से नाफिज हो जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया है कि वो कमजोर तबकात की बेहतरी के लिए काम और मुल्क की तामीर में तआवुन करें। रेलवेज मवासलात और अपनी कारकर्दगी के निजाम को बेहतर बनाने के खातिर 1,100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 3 प्रोजेक्टों का आगाज करेगा। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी का आगाज हो गया है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के उस हुक्म को मनसूख कर दिया है जिसमें शहरियत के पैदायशी हक को खत्म कर दिया गया था। और फीफा आलमी कप में न्यूयॉर्क में फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से और टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से होगा। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में मुख्तलिफ वजारतों के कई सेक्रेटरी साहिबान से बातचीत की। 2 अहम मौजूआत पर तबादला ख्याल किया गया। पहले का ताल्लुक कारोबार करने और रहन सहन में आसानी से मुतालिक गैर इंज़िबाती तरीक़ाकार और दीगर असलाहत से था, जबकि दूसरा आत्मनिर्भरता को फरोग देने से मुतालिक था। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मजमू हुकूमत के तरीक़ाकार को अख्तियार किए जाने और महकमा जाति सिलसिले को खत्म करने की अहमियत पर जोर दिया। जाम मनसूबाबंदी और तालमेल की अहमियत को उजागर करते हुए उन्होंने बैन महकमा जाति इश्तराक और मालूमात पर मबनी फैसला साजी के लिए PM गति शक्ति को एक मौसर प्लेटफॉर्म के तौर पर वसी पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने की हौसला अफजाई की। बातचीत के दौरान सेक्रेटरी साहिबान ने इन 2 अहम मौजूआत से मुताबिकत रखते हुए उनकी वजारतों और महकमों की जानिब से किए गए इकदाम को उजागर किया। विकसित भारत रोजगार की गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी एक्ट 2025 कल से पूरे देही भारत में नाफिजुल अमल हो जाएगा। VBG रामजी एक्ट 2025 के मुल्कगीर सतह पर आगाज के मौके पर देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी अहल देही वर्कर एक दिन के लिए भी काम से महरूम नहीं रहना चाहिए। जनाब चौहान ने कहा कि नए फ्रेमवर्क के बिला रुकावट निफास को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ नज़दीकी तालमेल कायम किए हुए है और सभी इंतजामी, माली और तकनीकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया है कि वो तालीम को एक मसावी और सबकी शमूलियत वाले मौशरे की तश्कील की खातिर वसीला बनाएं। उन्होंने कहा कि तालीम याफ्ता नौजवानों को न सिर्फ खुद आगे बढ़ने के लिए काम करना चाहिए बल्कि कमजोर तबकात की बेहतरी और मुल्क की तामीर के लिए भी तआवुन करना चाहिए। आज विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश की मरकजी कबायली यूनिवर्सिटी के पहले जलसा तकसीम असनाद से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने यह बात कही। सदर जमहूरिया ने कहा कि हर तालीम याफ्ता नौजवान को जो पीछे रह गए हैं उन्हें आगे लाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए और 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क के हदफ को हासिल करने के लिए तआवुन करना चाहिए।
1: बस 2047 तो विकसित भारत बनाने का हमारा लक्ष्य है। मुझे विश्वास है कि आंध्र प्रदेश का एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अपना सार्थक, समावेशी और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित व्यवहारिक शिक्षण पद्धति से इस लक्ष्य प्राप्त करे और उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
0: इस मौके पर तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने तलबा पर जोर दिया कि वो रोजगार तलाश करने वालों के बजाय रोजगार के मौके पैदा करने वाले बने। भारतीय रेलवेज ने 499 करोड़ रुपए की लागत से मशरकी वस्ती रेलवे के 44 किलोमीटर से ज्यादा मानसी सहरासा हिस्से को डबल किए जाने की मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट इस अहम रास्ते पर आमदोरफ्त को मौसर बनाएगा, मुसाफिरों की बढ़ती तादाद को सहूलत फराहम करेगा और नकलोहमल में आसानी पैदा करेगा। सिलसिलेवार मंजूरियों के तहत भारतीय रेलवेज ने मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के 27 स्टेशनों या केबिन की इलेक्ट्रिक

0: इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को भी मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की लागत 400 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। रेलवेज ने जुनूब मशरकी रेलवे में तकरीबन 200 करोड़ रुपए की लागत से बैलेंस 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल को भी मंजूरी दे दी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि मजबूत मईशत मजबूत दिफाई सलाहियतों की बुनियाद है। आज वडोदरा में दरख्शां गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने दिफाई मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में खुद कफील बनने की तरफ मुल्क की तेज रफ्तार पेशरफ्त को उजागर किया। उन्होंने कहा कि भारत की अंदरून मुल्क दिफाई पैदावार 2014 में तकरीबन 46,000 करोड़ रुपए थी, जो नुमाया इजाफे के साथ इस वक्त 1,78,000 करोड़ रुपए मालियत की हो गई है।
1: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी का आगाज हो गया है। इस मशक के हिस्से के तौर पर दिल्ली में 13,000 से ज्यादा बूथ सतह के अफसर आइंदा माह की 29 तारीख तक हर घर जाएंगे और सभी मुतल्लिका वोटरों को वोटर फहरिस्तों की तस्दीक और उन्हें दुरुस्त करने की खातिर एक फॉर्म भरने के लिए देंगे। दिल्ली के चीफ इंतखाबी अफसर अशोक कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दावे और एतराजात 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। हतमी वोटर फहरिस्त 7 अक्टूबर को शाया की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली के चीफ इंतखाबी अफसर के दफ्तर की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पहले दिन वोटरों को 1,68,200 से ज्यादा फॉर्म्स तकसीम किए गए। 7,600 से ज्यादा इंदराज के फॉर्म डिजिटाइज किए गए। दिल्ली में 13,033 पोलिंग बूथ्स हैं जो 1,45,10,298 वोटरों का अहाता करते हैं। हतमी वोटर फहरिस्त 7 अक्टूबर को शाये की जाएगी। वोटर ऑनलाइन www.voters.eci.gov.in पर भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने आज इंदराज का अपना फॉर्म दाखिल किया और कौमी राजधानी के सभी अहल वोटरों से नजरसानी के जारी अमल में शामिल होने की अपील की। उन्होंने सभी पर इस बात के लिए भी जोर दिया कि वो मुकर्रर मुद्दत के अंदर अंदर अपने फॉर्म दुरुस्त तरीके से भरें और उन्हें अपने मुतल्लिका बीएलओस के हवाले कर दें। उन्होंने इस मुहिम की अहमियत को उजागर किया और कहा कि सही और दुरुस्त वोटर फहरिस्त एक मजबूत जमहूरियत की बुनियाद होती है। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: भारत ने 26 से ज्यादा मुल्कों के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी से मुतालिक शराकतदारी के 28 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। आज नई दिल्ली में इंसानी वसाइल की मोबिलिटी से मुतालिक फोरम से खिताब करते हुए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि गैर कानूनी माइग्रेशन, इस्तेहसाल के तौर तरीकों, धोखेबाज बिचौलियों और गैर कानूनी तरीके से लोगों को लाने ले जाने से निमटना सभी मुल्कों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि महफूज और कानूनी तरीक़ाकार के तहत मोबिलिटी के भारत के अज़्म की अक्कासी ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से होती है और इसके आगाज के बाद से इमिग्रेशन की 50 लाख मंजूरियां दी जा चुकी। हुकूमत ने मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के तनाजुर में अहम पेट्रोकेमिकल मसनूआत पर कस्टम महसूल में मुकम्मल इस्तस्ना में अगले माह की 15 तारीख तक तौसी कर दी है। मरकज ने इससे पहले कस्टम ड्यूटी में मुकम्मल इस्तस्ना को आज तक के लिए मंजूरी दी थी। आलमी सप्लाई चेन में रुकावटों के तनाजुर में आर्जी और हदफशुदा राहत देने के लिए यह इकदाम किया गया है। इस छूट के दायरे में शामिल मसनूआत की फहरिस्त वही रहेगी जो पहले जारी की गई थी। तवक्को है कि इस रियायत से उन सनअतों को फायदा होगा जो पेट्रोकेमिकल, खाम माल और दरमियानी मसनूआत पर इन्हिसार करती हैं। इनमें प्लास्टिक पैकेजिंग, टेक्सटाइल, दवासाजी, केमिकल्स, ऑटोमेटिव पुर्जे और मैन्युफैक्चरिंग के दीगर शोबे शामिल हैं। आज हुल बगावत के शुजात मंदों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानू को खिराज अकीदत पेश करने के लिए हुल दिवस के मौके पर झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरी रियासत में खसूसी प्रोग्राम मुनक़द किए गए। इस मौके पर साहिबगंज के पंचकतिया और भोगनादी में यादगारी मकाम पर हुल इनकलाब के शहीदों को हजारों लोगों ने खिराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हुल दिवस कबायली बरादरियों के गैर

0: Manthan.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
2: श्रोताओं, कल सांख्यिकी दिवस के मौके पर सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कई खास रिपोर्टें जारी की और इन रिपोर्टों में भारत की जो सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की रफ्तार है, इसके बारे में हमें एक तस्वीर जानने को मिली। हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों के लिए सतत विकास के लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करने का एक लक्ष्य रखा है और भारत इस दिशा में कैसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है और जो संकेतक हैं उनमें भारत कैसे अच्छी प्रगति दिखा रहा है। तो आज हम मंत्रालय की जो ये रिपोर्टें जारी हुई हैं उनका एक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे और किस तरह से भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहा है इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में हमारे मेहमान आज हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद।
2: तो सिंह साहब, सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। जैसे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण, इन तीन मुद्दों पर हम देखते हैं कि जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है उसने इन रिपोर्टों में फोकस किया है कि उसमें तेज गति से हमें प्रगति देखने को मिली है। शुरुआत में हमारे श्रोताओं को बताएं कि जो ये सतत विकास के लक्ष्य हैं ये कितने इंपॉर्टेंट हैं सभी देशों के लिए और कैसे भारत इसमें आगे बढ़ रहा है।
3: देखिए, संयुक्त राष्ट्र में जब 2015 में एक सतत विकास लक्ष्य तय किया गया था और इसका उद्देश्य था कि 2030 तक दुनिया से गरीबी समाप्त करी जाएगी, पर्यावरण की रक्षा की जाएगी और सभी के लिए समृद्ध एवं समावेशी विकास सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें भारत ने बड़ी पहल की और इसे 2026 तक में ही उसने एक तैयार किया खाका और 277 मानकों पर आधारित 17 SDG जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तैयार किया और इसमें जो बनाया गया वो सबसे पहला है गरीबी समाप्त करना, यानी सभी तरह की गरीबी को हर जगह से उन्मूलन इसका किया जाए और इसके लिए भारत सरकार ने बहुत मेहनत से पूरे देश में इसको लागू किया है और इसका मतलब यह है कि अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन और सुनिश्चित करना, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ और स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, इसके अलावा समानताएं किसी भी तरह की किसी को नहीं होनी चाहिए, हर व्यक्ति को वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो बेसिक सुविधाएं होती है, मूलभूत सुविधाएं होती हैं, यानी कोई भी व्यक्ति बाहर खुले में शौच करने के लिए बाध्य न हो उसकी ये सुविधा मिलनी चाहिए, यानी बेसिक चीजें होनी चाहिए, उसके बच्चे को स्कूल मिलना चाहिए, हर गरीब आदमी को जितनी भी उसकी जरूरतें होती है बेसिक, सबसे पहला उद्देश्य था भारत सरकार का कि उनको कैसे हम दिया जाए। दूसरा था कि उनको स्वास्थ्य कैसे उनका सही किया जाए, सभी आयु वर्ग के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण उनका निश्चित करना इसका उद्देश्य था। तीसरा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन सबको प्राइमरी मिल रही थी लेकिन प्राइमरी एजुकेशन से कैसे आगे बढ़ा जाए, ड्रॉप आउट ना हो, बच्चे स्कूल जाएं तो वो फिर आगे की शिक्षा ले सकें, सबसे बड़ी जरूरत थी। इस देश में लैंगिक समानता,
2: बिल्कुल
3: जेंडर इक्वलिटी, जैसे इस रिपोर्ट में भी आप अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि महिलाओं को कहा जाता था कि कुशल महिला मजदूर हमारे देश में कम उपलब्ध होती हैं वनस्पति पुरुषों के, लेकिन इस रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के जो स्किलफुलनेस है वो बढ़ी है, यानी उनकी निपुणता, प्रवीणता, काम करने की दक्षता में सुधार हुआ है और यह एक बड़ा संकेत है इस देश के लिए कि जिस वर्ग को हम हाशिए पर रखकर चलते थे महिलाओं को, उस वर्ग की भागीदारी इस देश के विकास में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा स्वच्छता, क्लीनलीनेस, जिसके लिए प्रधानमंत्री जब से सत्ता में आए हैं 2014 से, जब से इन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला है तब से इस देश में स्वच्छता का एक कल्चर डेवलप हुआ है जो लोगों को यह बता रहा है कि स्वच्छता से क्या क्या मिल सकता है और हमें लगता है कि यह हर व्यक्ति तक पहुंचाने में यह सरकार सफल रही है।
2: बिल्कुल, आपने जैसा कि बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं के बारे में हमारे श्रोताओं को बताया कि कैसे सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में इन मानों को रखा जाता है और इसमें आंकड़ा भी सामने आया है जिस पर मैं आपसे अगला प्रश्न करना चाहूंगा कि जो सोशल प्रोटेक्शन है यानी सामाजिक सुरक्षा का दायरा है वो 2016 में करीब 22% आबादी तक थी, लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए हैं इन रिपोर्टों में उनके मुताबिक ये कवरेज 65% से भी ज्यादा आबादी तक पहुंचा है। इसके बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे ये संभव हुआ है और इसको कैसे मापा जाता है।
3: सतत विकास लक्ष्य का जो हमारे 17 तय किए गए हैं ये 100% कवरेज

0: होनी चाहिए, हर व्यक्ति को यह सुविधा मिलनी चाहिए, खास तौर से जिन्हें जरूरत है। और यह 22% से अगर 65% हुआ है तो इसका मतलब यह है कि जिन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं ठीक से नहीं मिलती थी, जिन एक सीमित दायरे में ही स्वास्थ्य की सुविधाएं मुफ्त सरकारी सबको मिला करती थी, जिनका दायरा बढ़ा है। जैसे आयुष्मान को अगर हम ले लें, आयुष्मान की सुविधा जो भी उसके योग्य होगा, दक्ष होगा, उसके लिए होगा, वो सबको उपलब्ध होने लगी है। इसका सीधा सा मतलब है कि सबके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, सबके बच्चे को प्री एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक की सुविधा देने की सरकार कोशिश कर रही है कि हर तरह की सुविधाएं उन्हें मिले। इस देश में IIM, IITs और इस तरह के विश्वविद्यालयों की संख्या तेजी के साथ बढ़ी है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को इसमें कैसे समाहित किया जाएगा, सरकार ने इस तरह की सुविधाएं बढ़ाई है, IIM की संख्या बढ़ी है, IIT की संख्या बढ़ी है, विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है, मेडिकल कॉलेजों में सीट्स की संख्या बढ़ी है। तो इससे क्या है कि ये दायरा बढ़ने का मूल वजह यह है। दूसरा है कि खाद्यान्न की सुविधा। अब सोचिए, इस देश में 2/3 आबादी को, यानी करीब करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज सरकार की ओर से मिलता है। इसका यह मतलब है कि जिन्हें जरूरत होगी मुफ्त अनाज की, उन्हें मुफ्त भी दिया जा रहा है, यानी सरकार किसी को भी भुखमरी का शिकार नहीं होने देगी। एक हमारे 17 जो गोल्स हैं, इसमें एक गोल भुखमरी का भी है कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा इस देश में। जो हंगर इंडेक्स में हम कभी बहुत पीछे हुआ करते थे, उसी को देखते हुए ये बात लाई गई कि भला हमारे देश में इतना अनाज पैदा होता है, खाद्यान्न सुरक्षा हमारी इतनी मजबूत है, सब कुछ सुविधाएं हैं, हर व्यक्ति को उपलब्ध है। तो इससे क्या हुआ कि दायरा बढ़ गया।
1: बिल्कुल, आपने जैसा कि विस्तार से बताया कैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य की स्थिति में और मूलभूत सुविधाओं में जो बढ़ोतरी हुई है, उससे निश्चित तौर पर जो विकास के मानक हैं या संकेतक हैं वो ऊपर आए हैं। इसी तरह से आपने लैंगिक समानता की बात की, तो अपने श्रोताओं के साथ मैं ये आंकड़ा जरूर यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि 2015 से 17 के बीच प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 896 थी, जिसे हम सेक्स रेशियो एट बर्थ कहते हैं, यानी जन्म के वक्त लैंगिक जो अनुपात होता है, जन्म के वक्त लैंगिक अनुपात बढ़कर 2022 से 24 में ये हो गया 918, और आगे आने वाले समय में इसके और तेज गति से बढ़ने की संभावना है। इसी तरह से जो तकनीकी क्षेत्र में कौशल की हमने चर्चा की, उसमें महिलाओं की भागीदारी 2022-23 में जो 48% थी, वो 2025 में बढ़कर 51% हुई। एक मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ रोजगार पर। हमने इन रिपोर्ट्स में ये देखा कि जो पहले बेरोजगारी दर 6% थी, वो घटकर अब 3.1% के आसपास आ गई है। तो बेरोजगारी दर के घटने के किन कारणों को आप देखते हैं और कैसे ये संभव हो रहा है?
0: देखिए, बेरोजगारी का घटना, इस देश में सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंच रही हैं, सरकार जो सोच रही है वो लोगों तक पहुंचाने में सफल है। सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि लोगों को कैसे रोजी और रोजगार उपलब्ध कराया जाए। रोजगार के मायने सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, पहले तो इस धारणा से बाहर आना होगा लोगों को। और इस देश में सरकारी और गैर सरकारी के अलावा रोजी रोजगार छोटे उद्यमों को भी सरकार ने इस श्रेणी में रखा। छोटे मोटे रोजगार करने वाले, मान लीजिए किसी के यहाँ 5, 7, 6, 5 मतलब 10 से ज्यादा नहीं, इससे भी कम लोग काम करने वाले थे, तो पहले इनका नाम दर्ज नहीं होता था PF में। सरकार ने कहा कि आखिर कैसे इसको आंकड़ा कैसे जुटाया जाए, किस मानक पर माना जाए कि ये लोग नौकरी इनको मिल गया, इम्प्लॉयमेंट मिल गया। इम्प्लॉयमेंट मिलने का जो मानक माना गया कि जिनका PF कटता होगा, यानी प्रोविडेंट फंड कटता होगा, भविष्य निधि में जिनकी कटौती होती होगी, उन्हें मान लिया जाएगा कि उन्हें नौकरी दे दी गई। अब होता यह था कि सरकारी नौकरी या गैर सरकारी नौकरी देने में प्रॉब्लम एक आती थी, PF कटवाने के चक्कर में वो उद्यमी डरता था कि किसी नए आदमी को नौकरी दे दें हम और उसका PF कटने लगेगा तो सरकारी ढेर सारे हमारे पर नियम कानून लाद दिए जाएंगे और वो हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, प्लस जितना PF कटता है उतना और हमें तनख्वाह वेतन देना पड़ेगा। सरकार ने एक नई योजना लागू की कि नहीं, जो भी आपके पास जितने दिन भी और जितने लोग भी काम करते हैं, कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा हो, तनख्वाह कितनी देते हैं या आप तय करेंगे, न्यूनतम तनख्वाह से ज्यादा होनी चाहिए या न्यूनतम तनख्वाह तो मिलनी ही चाहिए, उसमें से जितनी आप PF कटेगा उतना सरकार आपको एक्स्ट्रा आपको क्रेडिट करेगी आपके अकाउंट में, यानी उस उद्यमी के, यानी ताकि आपको अतिरिक्त बोझ न पड़े। इससे क्या हुआ कि हर उद्यमी इस बात के लिए खुश हो गया और अपने यहाँ जो भी लोगों को नौकरी पे रखता उनका PF कटने लगा। तो ऐसे में संख्या रोजगार की बढ़ी और वो जो डेटा दिख रहा है वो क्लियर कट बता रहा है कि रोजगार बढ़ा है।
1: बिल्कुल,
0: रोजगार बढ़ने की वजह और भी है कि आप देखें कि भाई PF तो नहीं कटता, आप एक चीज देखिए कि हमारे यहाँ जो ब्लू इकोनॉमी है, इस गोल में एक चीज दिया गया है ब्लू इकोनॉमी को लेकर कि जल के नीचे की कैसे संरक्षित किया जाएगा। उसमें इन लोगों ने क्या किया कि भाई ब्लू इकोनॉमी हमारे देश में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमें उसमें रोजी रोजगार

0: गति से बढ़ा है कि मछुआरों की जिंदगी में सुधार आया है, लोगों के जेब में पैसे जाने लगे हैं,
1: बिल्कुल,
0: और खेतिहर लोगों के खासों से किसानों की स्थिति में सुधार हुआ है।
1: बिल्कुल, आपने विस्तार से बताया। और एक और बड़ा रोचक तथ्य यहाँ आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2014-15 में प्रति व्यक्ति जो नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और आदि ऊर्जाओं को शामिल करते हैं, उसमें खपत जो थी वो 64 वाट थी प्रति व्यक्ति, वो बढ़कर अब 193 वाट पहुंच गई है। यानी अब नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल हर व्यक्ति जो 2014-15 में जिस गति से करता था, उसमें 3 गुना की वृद्धि हुई है। आप कैसे देखते हैं कि देश में रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हम रुख कर रहे हैं, जो कि पर्यावरण के लिए और विकास के लिए बहुत अहम है?
0: देखिए, भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है ना, नवीकरणीय ऊर्जा, यानी जो वो ऊर्जा जो तेल यानी पेट्रोलियम, कोयला या ताप विद्युत गृह से नहीं आती थी, वो इन्होंने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या हाइडल यानी पानी से, जिनमें इस तरह की ऊर्जा की खपत तेजी से इसलिए बढ़ी है कि अब उसकी बड़ी वजह है क्योंकि इसका जनरेशन शुरू हुआ पहले। भाई पहले ऊर्जा होगी तो खपत होगी ना। हमारे यहाँ सप्लाई पहले बढ़ाई गई। सप्लाई बढ़ाने का मतलब कि सरकार की योजना यह है कि हर घर की छत पर बिजली पैदा होनी चाहिए, हर किसान के खेत में बिजली पैदा होनी चाहिए, यानी सौर ऊर्जा पैदा होनी चाहिए, ऊर्जा पैदा होनी चाहिए। जितने भी पंपिंग सेट लगेंगे, जितने भी ट्यूबवेल लगेंगे किसानों के खेतों में, हर ट्यूबवेल के ऊपर वो योजना है कुसुम योजना। कुसुम योजना के तहत यह है कि किसान के खेत में जो उसका पंप चलेगा वो सौर ऊर्जा से चलेगा या पवन चक्की से चलेगा। तो इसका मतलब है कि देश में लाखों की संख्या में कुसुम योजना के तहत, प्रोजेक्ट के तहत किसानों के खेत में अपने ही खेत से पैदा हुई ऊर्जा, यानी जो ऊपर की धूप है, धूप से पैदा हुई ऊर्जा से खेत की सिंचाई हो रही है, ट्यूबवेल चल रहा है, बाकी उसके काम हो रहे हैं। इसी तरह से हर घर में जो खपत होती है ऊर्जा की, अपनी छत पर आदमी लगा लेता है पैनल, सौर पैनल लगा हुआ है, सोलर पैनल, और सोलर पैनल से बिजली आ रही है। बिजली से अपनी जरूरत के मुताबिक जितनी बिजली खर्चा होती है, उसके अलावा जो फालतू यानी सरप्लस जो बिजली पैदा होती है वो चली जाती है सरकार के नेटवर्क में, यानी बिजली कंपनी की ओर चली जाती है, यानी वो क्रेडिट हो जाती है उसके अकाउंट में। जब उसकी जरूरत होती है तब उसका वो खर्च कर सकता है, यानी बिजली की खपत भी करता है और उस बिजली को लोगों को बेचता भी है। ऐसे में खपत बढ़ती आज स्थिति यह हो जाएगी एक दिन आने वाले दिनों में, जिस तरह से हमारे हर छत पे ऊर्जा पैदा हो रही है, सौर ऊर्जा पैदा हो रही है, आने वाले दिनों में हमें लगता है कि हमारे पास सौर ऊर्जा यानी नवीकरणीय ऊर्जा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी दैन की जो हमारे अभी ताप विद्युत गृह और हाइडल से पैदा।
1: बिल्कुल, तो कई और संकेतक हैं, जैसे पर्यावरण के मामले में भी कई सकारात्मक नतीजे आए हैं। और एक खास विषय जिस पर मैं आपसे अगला प्रश्न करना चाहूंगा कि देश में डिजिटल कनेक्टिविटी किस तेजी से बढ़ी है, इसका उदाहरण हमें इससे मिलता है कि करीब 32 करोड़ लोगों के पास 2015 में इंटरनेट सब्सक्रिप्शन था, जो बढ़कर अब पहुंच चुका है 98 करोड़।
0: इसके सीधा सीधा मतलब है, आप समझिए, पूरे दुनिया में जिस गति से डिजिटल ताकत बढ़ी है, लोगों में ताकत आई है, इस देश की सबसे बड़ी अगर मैं कहूं आधारभूत अगर मजबूती आई है तो वो आई है डिजिटल क्रांति से। इस देश में प्रधानमंत्री की ये योजना जो डिजिटल क्रांति आई है, चाहे वो जीवन के किसी भी हिस्से में आप देख लें, भाई आप डीबीटी कैसे होता है, डीबीटी बिना फोन के तो हो नहीं सकता, फोन में तब होगा जब इंटरनेट कनेक्शन होगा, इंटरनेट कनेक्शन कहां से आ रहा है, सरकार ने इतना सस्ता, दुनिया में इतना सस्ती डिजिटल सुविधा और कहीं नहीं है,
1: और पूरा इकोसिस्टम बना है,
0: पूरा इकोसिस्टम बन गया, हमारे जीवन का हर हिस्सा इसी से प्रभावित हो रहा है। हम बैंक का संचालन यहीं से कर रहे हैं, हम अपने घर के बैठे हुए यहीं पर सब कुछ देख रहे हैं। कनेक्टिविटी सबसे बड़ी चीज होती है इस देश में। आप समझिए, हमारे एक जमाना था रूरल इंडिया, सबसे गरीबी का मानक क्या था मालूम है, कनेक्टिविटी का अभाव आदमी को गरीब बना देता था। कनेक्टिविटी के चलते आज छोटा सा छोटा उद्यम करने वाला व्यक्ति भी ज्यादा कमा रहा है। सिर्फ कनेक्टिविटी अगर उसकी आज कट कर दी जाए तो हमें लगता है कि उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा कट जाएगा। सरकार ने यह इतनी बड़ी ताकत लोगों के हाथ में पहुंचा दी है, डिजिटल ताकत से हमारे देश के गरीबों का सबसे बड़ा उद्धार हुआ।
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सिंह साहब, कार्यक्रम में जुड़े और विस्तार से आपने इन पूरी रिपोर्टों पर अपना विश्लेषण रखा, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। मंथन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजिश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजिश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमेरिका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गतिशक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBGRAMJI अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतनभोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शीर्ष 48 ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दे दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे से 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना

10:30 p.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin. यह आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है और समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 10:10 हो चुके हैं और आइए सुनते हैं गज़लों का कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के कलाकार हैं श्री राम।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे गज़लों पर केंद्रित कार्यक्रम गुलदस्ता, कलाकार रहे श्री राम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स। समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। सुनते हैं अपूर्वा तिवारी का राग कौशिक ध्वनि भिन्न षटज में गायन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत राग रंजन, जिसमें राग कौशिक ध्वनि भिन्न षडज में अपूर्वा तिवारी का आपने गायन सुना। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, DNM 810 किलोहर्ट्ज पर। समय रात्रि के 11 बजने को है। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को

0: पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साढ़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Kiran Jha. Prime Minister Narendra Modi today had a telephonic conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, वक्त स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 11:10 हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

0: तेरे भोले भाले मुखड़े पे हम तो हाय मिट गए मिट गए मिट गए मिट गए।
1: जी हाँ, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम फिल्म संगीत में। और कार्यक्रम में मैं हूँ आज आपके साथ, आपकी अपनी दोस्त चेतना। स्वीकार करें प्यार भरा नमस्कार।
0: ये देख के दुनिया वालों के दिल जल गए।
1: जी हाँ, इस रात की खामोशी में आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी हम सफर चेतना। घड़ी की सुइयां अब आगे बढ़ रही हैं और कहीं कि जो खामोशियां हैं ना, वो बढ़ती जा रही हैं। शहर की रफ्तार थोड़ी सी थम गई है और खिड़की के बाहर आसमान ने काले रंग की वो मखमली चादर ओढ़ ली है, जिसे हम और आप कहते हैं रात।
2: नहीं पूरा

जी हाँ श्रोताओं, ये फिल्म जो रही वो रही जूली और लता मंगेशकर की आवाज़ में खूबसूरत ये गीत। दोस्तों, ये रात भी कितनी अजीब है ना। दिन भर हम सब दुनिया के लिए जीते हैं, काम में, भाग दौड़ में, जिम्मेदारियों में, और वो चेहरे पर लगा हुआ एक नकली सा मुस्कुराता हुआ मुखौटा। लेकिन जैसे ही ये रात आती है ना, हम सब मानो उस आर्टिफिशियलनेस को भूल जाते हैं और ये रातें हमें खुद से मिलवाती हैं। कुछ लोग इस वक्त गहरी नींद की आगोश में होंगे, कुछ अपने सपनों का पीछा कर रहे होंगे, तो कुछ मेरी तरह खुली आंखों से अपने बीते हुए कल को याद कर रहे होंगे। किसी के सिरहाने कोई अधूरी सी किताब होगी, और तो किसी के दिल में या फिर दिल के कोने में कोई अधूरी

जी हाँ श्रोताओं, रात तो होती है सोने के लिए, लेकिन कभी कभी कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमें सोने नहीं देती हैं। कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ, कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं, लेकिन रात होती है सिर्फ और सिर्फ सुकून के लिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आप भी इस वक्त जाग रहे हैं, अपनी बालकनी की तरफ थोड़ा सा देखिए, ठंडी हवा के झोंकों को महसूस कर रहे होंगे, या बस अंधेरे के इस कमरे में सीलिंग फैन को देखते हुए खास उन ख्यालों में खोए होंगे, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। इस खामोश रात में, आपकी यादों में, जज्बातों में सुर देने के लिए मैं हूँ आपके साथ चेतना। चलिए इस यादों के सिलसिले को और इस रात को आगे और बढ़ाते हैं एक बेहद बेहद खूबसूरत नगमे के साथ।

जी हाँ दोस्तों, रुक जा रात, लेकिन रात तो नहीं ही रुक सकती है। वक्त की तो यही एक कहीं की एक नेचर है वक्त का कि वो कभी नहीं रुकता है और रुकना भी नहीं चाहिए। भाई रात कैसी भी हो, लेकिन दिन खूबसूरत एक नए वादे के साथ, एक नई उम्मीद के साथ आता है। और रात है वो भी यही इशारा करती है कि भाई मैं बीत रही हूँ और कुछ अब बेहतरीन होने वाला है। आप जुड़े हुए हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम से और मैं हूँ आज के कार्यक्रम में आपकी दोस्त चेतना।

और समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 11:30 हो चुके हैं और आपके संदेश हम तक पहुंच गए हैं। किचन सपकाल जी का हमारे पास नमस्कार आया है और एक गीत की रिक्वेस्ट भी इन्होंने भेजी है। मैं जितने भी कार्यक्रम में अभी गीत प्ले कर रही हूँ, कहीं ना कहीं आपकी रिक्वेस्ट कहीं है, उम्मीद करती हूँ ज़रूर पूरे करने में कामयाब रहूँगी। रियासत हुसैन जी का उत्तराखंड से हमारे पास संदेश आ गया है। नज़मा रियाज, मोहम्मद समरीन और माहिरा रूर है इनके साथ में। इन्हीं के साथ साथ अश्वनी चुग जी का हमारे पास संदेश आया है और ये हमें भेजते हैं अपना संदेश पंचकुला सेक्टर 9 से। आशु अश्वनी गोविंद है इनके साथ में और

ने भी गीत की रिक्वेस्ट भेजी है। महेंद्र प्रसाद मोदी जी भी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं और फिल्म खामोशी से उन्होंने गीत की रिक्वेस्ट भेजी रामगढ़ कैंट से। स्वीटी जोड़ा जी कार्यक्रम से जुड़ गई हैं और यह हमें कृष्णा पार्क दिल्ली से सुनते हैं। गूगल मेल, जी हाँ, ये मोहाली चंडीगढ़ से शायद इनका मेल आईडी ही इस तरीके का है। टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा हैं, हाजी मजहर जी कार्यक्रम को सुन रहे हैं और लिखते हैं कि आपकी अपनी पसंद का कोई गीत प्ले कर दीजिए, शुक्रिया। सोमदत्त जी हमें पटियाला पंजाब से सुन रहे हैं। कैरव ज्योति रानी गुरमत कौर ने भी इनके साथ मैसेज किया है। अब्दुल गफ्फार जी भी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। हमें भी शामिल कीजिए, बिल्कुल, हमने आपको शामिल कर लिया प्रोग्राम में। नवी हसन जी लगातार अपने संदेशों को हम तक पहुंचा रहे हैं। राजपाल शर्मा जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। गुरमीत सिंह जी हमें सुन रहे हैं साउथ एक्सटेंशन दिल्ली से और इनके साथ हैं गुरमीत सिंह, अमिता साहू। इसी के साथ साथ अनिल मोहन जी ने भी अपने गीत की रिक्वेस्ट भेजी है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। तो जनाब, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में तो कहीं ना कहीं गीतों में हम शामिल ही करते हैं, इनका ये गीत भी ना हो तो ऐसा तो मुश्किल है। और ये पहाड़गंज से हमें अपना संदेश भेजते हैं। फारूक अली खान जी ने भी अपनी बात हम तक पहुंचाई है, लिखते हैं, इस रात की तन्हाई में हम आपको सुन रहे हैं, प्रोग्राम का आगाज़ बहुत ही उम्दा गीत के साथ हुआ, शुक्रिया। फारूक अली खान, फैज़ी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा हैं इनके साथ में। इसी के साथ मुकेश बाटा जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। बोधराज खोरवाल जी ने भी अपने गीत की रिक्वेस्ट के साथ अपने संदेश को हम तक पहुँचाया है। संजय साहू पोटियाकला से हमें सुन रहे हैं, इनके साथ है सुजाता, शशांक, सीमा साहू। रश्मि पांड्या जी ने भी अपना संदेश हम तक पहुँचाया, लिखते हैं कि मैं तो आपकी आवाज़, मखमली आवाज़ को कानों में भरती हूँ, शुक्रिया। और इन्होंने कल्याण जी साहब की खास दिन है तो उनकी संगीत में गीत को सुनना चाहा है। तो रश्मि जी, बिल्कुल, मैं इस गीत के बाद आपकी पसंद को ज़रूर शामिल करूंगी। मोहम्मद कुमार जी भी आकाशवाणी पर अपने संदेश को भेज रहे हैं, नमस्कार भेज रहे हैं। ताज मोहम्मद जी ने भी अपना संदेश भेजा है और इसी के साथ साथ सतीश जनेजा भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इन्होंने प्रोग्राम को शुरू करने से पहले ही जान लिया कि आज कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ। तो शुक्रिया इसके लिए कि आप इतना सारा प्रेम हमें संदेशों के ज़रिए पहुँचाते हैं।

श्रोताओं, आप जुड़े हुए फिल्म संगीत के कार्यक्रम से। मैं हूँ कार्यक्रम में आपकी दोस्त चेतना। और जी हाँ, आप कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और समय स्टूडियो के घड़ी के अनुसार रात के 11:49 हुए हैं। प्रकाश जी का हमारे पास मैसेज आया है और ये एक फिल्म की रिक्वेस्ट, इन्होंने गीत की रिक्वेस्ट भेजी है। प्रकाश बोरगांव का, सुषमा और प्रांजलि सोहम है इनके साथ में। साथ ही साथ मोहम्मद कुमार कमर जी ने हमें मैसेज भेजा है, लिखते हैं कि चेतना साहिबा जी, नींद तो हमें भी आ रही है लेकिन प्रोग्राम अच्छा आ रहा है तो सोने का मन नहीं। आदिल कमर गुन्नार से बहुत बहुत शुक्रिया। रश्मि पांड्या जी ने भी अपनी गीत की रिक्वेस्ट भेजी है, लिखते हैं कि आपकी संगीत के सफ़र में आज रात और निशा का जिक्र हो रहा है। सुहानी रात ढलती जा रही है और इसी उम्मीद के लिए कि कल सुबह कुछ नया पैगाम लाएगी। वाकई में रात हमें यही इशारा करती है कि भाई आज जो भी कुछ हुआ, खराब या अच्छा, वो नहीं ठहरने वाला है। कल दिन की शुरुआत होगी और नई उम्मीदों की भी शुरुआत होगी। हाजी मजहर जी भी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। आप अपनी पसंद का गीत सुनवाएं जी। मैं तो आप ही की पसंद को प्ले कर रही हूँ, लेकिन कई हमारे ऐसे दोस्त हैं जो थोड़े से नाराज़ हैं हमसे, लेकिन यही उम्मीद की जाती है, यही कोशिश की जाती है कि सभी गीतों को शामिल किया जाए। नासिर शेख जी भी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। यह हमें श्रीरामपुर महाराष्ट्र से सुनते हैं। नाजिया नासिर, साजिद सबीहा और जैनब है इनके साथ में। प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, लिख रहे हैं। अनिल मोहन जी ने भी अपना संदेश हम तक पहुंचाया है और साथ में लिख रहे हैं कि भले ही आज का कार्यक्रम श्रोताओं की पसंद पर आधारित नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है अनिल जी, हम आप ही के गीत प्ले कर रहे हैं इस कार्यक्रम में और रात का शीर्षक आधारित सभी गीत पसंद आ रहे हैं। शुक्रिया। उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, अनिल मोहन है पहाड़गंज मुल्तानी ठांडा से। और

और इनके साथ साथ रियासत हुसैन जी भी लगातार अपने संदेशों को भेज रहे हैं संजय साहू पोटिया कला से, और इनके साथ हमारे साथ दिग्दर्शन कौर जी भी मेरठ से जुड़ गए हैं, आर कुमार जी नंदकिशोर घाटे जी भी महाराष्ट्र से हमें सुन रहे हैं, और अनिल वर्मा जी ने भी अपना संदेश हम

जी हाँ दोस्तों, गीत जो है ना वो भी हमें खामोशी के सफ़र में और आगे ले जाते हैं। और ये जो रात है ना, सिर्फ अंधेरे का नाम नहीं है, रात नाम है उस सुकून का जो दिन भर की थकान के बाद हमें मिलता है। ये वो वक्त है जब हम अपनी डायरी में अपने दिल की बात को लिख सकते हैं। ये वो वक्त है जब आप बिना किसी झिझक के रो सकते हैं। ये वो वक्त है जब आप किसी को दिल से याद कर मुस्कुरा सकते हैं। जी हाँ, यही वो वक्त है जहां आप अपने दिल की बात अपने दिल तक पहुंचा सकते हैं।

जी हाँ दोस्तों, वक्त फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने गीत को सुना और सच भी कहा है कि वक्त से ही सब कुछ है, वक्त बदलता है, यही इसका नियम है कि दिन के बाद रात और रात के बाद फिर एक नया दिन आएगा। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ कार्यक्रम है फिल्म संगीत का। मैं हूँ आपके साथ चेतना। बसंत कुमार सिन्हा जी कार्यक्रम से जुड़ गई हैं और अलबेला फिल्म से इन्होंने गीत की रिक्वेस्ट भेजी है। इसी के साथ साथ अरुण कुमार पांडे जी ने भी अपने गीत की रिक्वेस्ट के साथ हम तक अपना संदेश पहुंचाया है। नियमित श्रोता हैं ये ए के पांडे, मध्य प्रदेश से सुनते हैं हमें। और इन्हीं के साथ साथ सतीश अनेजा जी ने लिखा है कि वो कहकर चल दिए कि इतनी मुलाकात बहुत है, हमने कहा रुक जाओ अभी रात बहुत है, थम जाए मेरे आंसू तो शौक से जाना, ऐसे में कहाँ जाओगे बरसात बहुत है। और अनिल मोहन जी ने भी अपनी बात जो है, जो रात की तन्हाइयां हैं उन्हें लेकर अपनी बात लिखकर भेजी है। लिखते हैं कि रात का गहरा सन्नाटा और तन्हाई का ये आलम अक्सर खामोशियों को जगा देता है। ऐसे समय में दिल की बात जुबां पर आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यादों की महक और पुरानी बातें इस तन्हाई को और भी गहरा बना देती हैं और दिल से यही आवाज़ आती है।

साथ मेरे। श्रोताओं, वक्त स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 11:51 हुए हैं और देखिए ना, वक्त की यही तो एक कहें कि हरकत है कि वो रुकता नहीं है। और कब ये तकरीबन एक घंटा गुजर गया पता ही नहीं चला। सुदर्शन मुखी जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं और उन्होंने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत की रिक्वेस्ट भेजी है सोनीपत से। शुक्रिया संदेश भेजने के लिए। उषा मोहन जी भी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, उन्होंने भी अपनी बात हम तक पहुँचाई है। लिख रहे हैं कि आज के कार्यक्रम में शामिल सभी गीत बेहद पसंद आ रहे हैं, सभी गीत हमारे जीवन के पहलुओं को दर्शाते हैं। बहरहाल आपकी प्रस्तुत, आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम हम पसंद कर रहे हैं। शुक्रिया।

जी हाँ श्रोताओं, समय जो है ना वो 11:54 हो चुके हैं और जाने का वक्त आ गया है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर भेजें प्रोग्राम से संबंधित, हमें इंतज़ार रहता है। सतीश अनेजा जी का हमारे पास संदेश आया, चलते चलते पढ़ लेती हूँ। खूबसूरत विषय रात पर आधारित आज का कार्यक्रम हमें बेहद आनंदित लगा, खूबसूरत गीतों का हमने लुत्फ उठाया और इस दिलकश पेशकश के लिए आपका दिल से शुक्रिया। आपकी प्रस्तुति का कोई भी सानी नहीं है, परमात्मा आपको खुशियाँ दे, शुक्रिया शुक्रिया। और सतीश अनेजा जी लिखते हैं कि आपका हर रोज़ हम प्रोग्राम में इंतज़ार करते हैं, चंडीगढ़ से मैसेज भेजते हैं। शुक्रिया आप सभी का कि आप पसंद करते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते हैं कार्यक्रम के अंत में भी, तो इसका हम तहे दिल से शुक्रिया कहेंगे और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते सिर्फ इतना ही कहूँगी कि गुजरे वक्त को भूल जाइए, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाइए और आने वाली कल की चिंता को बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये खूबसूरत पल हैं भाई, इन्हें जी लीजिए, ये वापस नहीं लौट कर आते हैं। अपना ख्याल रखिए और इसी वादे के साथ आपसे विदा लूँगी कि आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। देखिए अनिल मोहन जी ने भी चलते चलते अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुँचाई है, लिखते हैं कि कार्यक्रम आपने आखिरी पड़ाव तो पहुँच गया है लेकिन हम चाहते हैं कि निरंतर आपको सुनते ही रहें, काश ऐसा हो पाता। कलीफ तो बहुत हुई तुमसे दूर हो जाने पर, मैं बंद कमरे में खूब रोया तुमसे बिछड़ जाने पर, बहुत बहुत खूबसूरत। लेकिन समय जो है ना वो हमें और अनुमति नहीं दे रहा है कि मैं आपसे और बातें करूं, लेकिन जल्दी आपसे फिर मिलूंगी इसी वादे के साथ। अपनी दोस्त चेतना को अनुमति दे, नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर रात्रि के 12 बजने को है। इन मीटरों पर अब हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त रात्रि के 12 बजने को है। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजिश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजिश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। उच्च शिक्षा विभाग सचिव विनीत जोशी को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड, उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और उत्तराखंड गैर सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम 2019 पहली जुलाई से प्रभावी नहीं रहेंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। दो दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस साल के सम्मेलन का विषय विकसित भारत 2047, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सक्षम डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस है। नीति आयोग ने पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में विकास को गति देने पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की और इस पर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में नियमों के सरलीकरण, व्यावसायिक सुगमता बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और देश के पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने की भविष्य योजना प्रस्तुत की गई है। फीफा विश्व कप में अमेरिका के टेक्सस में आइवरी कोस्ट और नॉर्वे के बीच राउंड ऑफ 32 का मैच चल रहा है। नॉर्वे ने पहले हाफ के खेल में एक गोल की बढ़त बना ली है। उसकी ओर से एंटोनियो नूसा ने खेल के 39वें मिनट में गोल दागा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। Prime Minister Narendra Modi hold a telephonic conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce.

कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। जी हाँ, इस प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम निकले हैं सुरों और शब्दों के सफर में, और ये शब्द मोती बनकर जो हम सब की जिंदगी में खुशहाली बिखेरते हैं, वो इनके पीछे भी किसी का हाथ जरूर होता है। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं इन गीतों को लिखने वालों की, और उनमें एक नाम बहुत खास है, गोपाल दास नीरज जी, और इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इनके शुरुआती दौर की बात करें, इनके व्यक्तित्व की बात करें, और कैसे ये फिल्मों में आए, इनके पीछे भी बहुत कहानियां हैं। शुरुआती दौर की बात करें तो दोस्तों, गोपाल दास नीरज जी का जन्म 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पुरावली गांव में हुआ था। और ये पुरावली गांव की बात करें तो अलीगढ़ के आसपास ये गांव है, और इनका जो बचपन बीता वो इसी खास जगह पर बीता और बेहद संघर्षमय भी रहा। कहते हैं कि जब वो महज 6 के थे तो पिता का साया सिर से उठ गया, और अपनी शिक्षा का खर्च, परिवार की जिम्मेदारी और परिवार को चलाने का जो जिम्मा उन्होंने उठाया तो वो काफ़ी कम उम्र में ही उठा लिया था। वो टाइपिंग का कार्य भी करते थे, और उसी एक छोटी सी सैलरी में, या कहें कि उनको जितना वेतन मिलता था उसमें वो अपने पैसे जो है घर भेजते थे, जिससे परिवार का पूरा जीवन यापन चलता। और कह सकते हैं ये छोटा सा जो अंश था उनकी कमाई का, उनसे पूरे परिवार का भरण पोषण बहुत मुश्किल दौर में गुजर रहे थे ये लोग। जीवन की इस चुनौतियों का सामना करते हुए भी उन्होंने 1942 में फर्स्ट क्लास से हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। सोचिए, इतनी कम उम्र में काम करते करते और अपने परिवार को चलाते हुए भी एक छोटा सा बच्चा कैसे पढ़ाई में अव्वल नंबर से पास होता है। जी हाँ, इसके बाद उन्होंने वर्ष 1949 में इंटरमीडिएट की, और 1951 में उन्होंने बीए किया, और ये भी प्रथम श्रेणी से उन्होंने पास किया था, क्योंकि लिखने पढ़ने की जो उनके अंदर भावना थी, उनके शब्दों के जो जादू थे, वो कहीं ना कहीं उनकी साहित्यिक भूमिका को बहुत अच्छी तरह से दर्शाते हैं। और गोपाल दास नीरज जी अपनी बीए की पढ़ाई जब कर रहे थे तो उसी दौरान उनका हो गया था विवाह सावित्री देवी से, जिससे वर्ष 1951 में उनके परिवार में एक बेटे ने भी जन्म लिया था। और इसके बाद उन्होंने नौकरी के साथ साथ 1953 में हिंदी साहित्य में एमए की परीक्षा पास की, और वो भी फर्स्ट डिवीजन से। इतने कह सकते हैं, इतने मुश्किलों का सामना करते हुए, अपने परिवार को चलाते हुए भी उन्होंने पढ़ाई जो है वो अपनी जारी रखी, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इनका जो रुझान था वो साहित्य की तरफ जो लेकर आया था वो इनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया।

0: बात कर रहे थे उनकी शिक्षा की। तो गोपाल दास नीरज जी, जब इन्होंने एमए की शिक्षा पूरी की तो इसके बाद वो कुछ समय तक खाली भी बैठे रहे, क्योंकि कहीं स्थायी नौकरी नहीं मिल पाई, और ऐसे में ये समय उनके लिए एक वरदान साबित हुआ। जी हाँ, यहीं से हुई उनकी काव्य यात्रा की शुरुआत। काव्य यात्रा की शुरुआत इसलिए भी कह सकते हैं कि यहीं से उन्होंने लिखना शुरू किया और कविताओं में उनकी रुचि बढ़ती गई। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी और जो संग्रहित हैं, और अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से वो जल्दी ही बहुत जाने माने एक कवि के रूप में पहचाने जाने लगे, कवि के रूप में शामिल हुए। और कहते हैं कि उनके व्यक्तित्व की बात करें तो वो बहुत सरल सीधे साधे व्यक्ति थे, और जब मंच पर कविता पढ़ते थे तो हजारों की भीड़ जो है वो मंत्रमुग्ध हो जाती थी। उनकी कविताओं में वो सादगी थी, उनके खूबसूरत सीधे साधे लफ्ज़ों में जो वो कविता पढ़ते थे और पढ़ने का जो अंदाज था वो एक कह सकते हैं कि उनकी ख़ास पहचान बनता गया। वो हिंदी मंचों में पहले कह सकते हैं कि कवियों के बीच में रॉक स्टार कवि की तरह थे, और उनके जो शुरुआती कविताओं की बात करें तो उन्होंने जो कविता लिखी शुरुआती दौर में वो एक फिल्म का हिस्सा बनी, देवानंद साहब की फिल्म थी ये प्रेम पुजारी, और इन्होंने एक कविता लिखी थी और इस कविता को इस प्रेम पुजारी फिल्म में देवानंद साहब ने लिया था। तो आइए सुनते हैं और जानते हैं कौन सी वो कविता थी जो गीत के रूप में आज इतनी पसंद की जाती है। हम सब बहुत पसंद करते हैं उस गीत को, और वो है किशोर कुमार की आवाज में।
1: I reached a point where I said stardom is now very late. Stardom has to finish somewhere. But a man who's a director and a writer who's a writer, they never finish. And it is a director's medium, and I knew I could direct, I knew I could write. I want to take it across to new horizons.
0: यूं तो इस गीत की बात करें दिल की कलम से, तो आप सुन ही सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से उन्होंने इस गीत को लिखा और कितनी खूबसूरती से फिल्माया भी।

और इसी गीत की शुरुआत जो है कह सकते हैं कि फिल्मों में उनकी हुई थी, और प्रेम पुजारी के लिए इन्होंने ये जो गीत की रचना की और एक कविता के रूप में इस गीत को लिखा गया, लेकिन फिर बाद में जो है इसको एक फिल्म में इस्तेमाल किया गया। और ये गीत जो है आप सुनिए और आनंद लीजिए।

हिंदी साहित्य और बॉलीवुड संगीत जगत में एक चमकता हुआ उभरता हुआ ये सितारा रहे हैं, जिन्होंने मंचीय कविता से अपनी पहचान तो बनाई ही और साथ ही फिल्मी गीतों के बीच के फासले को भी हमेशा के लिए मिटा दिया। अपनी मखमली आवाज़ जो वो कविताओं के ज़रिए हम सब के दिलों पर राज करते थे, अपनी आवाज़ के ज़रिए वो कहीं ना कहीं उनके जो शब्द थे, वो उनकी लेखनी जो थी, वो हमारे दिलों में आज भी जिंदा है, क्योंकि वो उन्होंने रूप लिया फिल्मी गीतों का। जी हाँ, सरल शब्दों में कहें तो उनका जो जादू है उनके दर्शकों तक ज़रूर पहुँचा और करोड़ों दिलों की धड़कन बनता गया। जैसे उनके लेखने की हम बात कर ही रहे हैं तो उनके फिल्मी सफ़र की भी बात करना यहाँ बेहद ज़रूरी है दोस्तों, कि नीरज जी की फिल्मी सफ़र की जो शुरुआत हुई थी वो बेहद दिलचस्प रही थी। वो 1950-60 के दशक में एक उभरते हुए कवि के रूप में तो थे ही, और उनकी कविताओं ने एक ख़ास जगह सबके दिलों में बना रखी थी, और इसी के साथ बात कहें तो कहीं ना कहीं वो एक लोकप्रिय कवि भी रहे और एक महंगे कवि भी रहे, और उन तक जो पहुंच थी लोगों की बहुत कम थी, लेकिन उनको सुनने के लिए हजारों की जो भीड़ उमड़ती थी उसी भीड़ में जो है वो कोई एक ऐसा जो एक साथी बनकर उनके आया और उनको फिल्मी दुनिया की जगत में लेकर आया, और उनकी जो फिल्मी करियर की शुरुआत हुई वो 1960 के दशक में जो हुई थी, यहीं पे थे निर्माता निर्देशक आर चंद्र। जी हाँ, कविता सुनते ही उन्होंने इनको मंच

पर देखा और इनकी बहुत मशहूर कविता थी उस वक्त कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। और इसी कविता की लोकप्रियता की बात करें तो इतनी लोकप्रिय ये कविता हुई कि जो निर्देशक आर चंद्रजीत थे उन्होंने इस कविता को अपने फिल्म में इस्तेमाल करने के लिए उनसे गुजारिश की और कहा कि आगे भी आप कुछ और गीत लिखें हमारे फिल्मों के लिए। और वो इस कविता से बहुत प्रभावित हुए और इस पर फिल्म बनाने का फैसला भी किया। इसके बाद नीरज जी को मुंबई बुलाया गया और फिल्म नई उम्र की नई फसल में इस गीत को शामिल किया गया। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को आवाज़ दी और रोशन के संगीत में ये गीत आज अमर हो गया। नीरज जी की बॉलीवुड में इस तरह हुई एक कह सकते हैं कि एक शानदार एंट्री। और आगे भी हम और जानेंगे कि किस तरह से बॉलीवुड में इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, कितने गीत लिखे और सुनते हैं ये गीत फिल्म शर्मिली से।

0: जी हम बात कर रहे हैं हम गोपाल दास नीरज जी की, और किस तरह से इनकी कविताओं के जरिए जो है ये इन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा, और जैसे ही वो फिल्मी दुनिया में आए तो कह सकते हैं कि असली धमाका तो तब हुआ जब उनकी मुलाकात सदाबहार अभिनेता देवानंद साहब से हुई थी, और इन्हीं के साथ वो मिले महान संगीतकार SD बर्मन से। नीरज जी की प्रतिभा को असल मायनों में इन दोनों ने ही पहचाना। देवानंद और महान संगीतकार SD बर्मन की जोड़ी ने गोपाल दास नीरज जी को अपने में शामिल कर दिया, अपनी दोस्ती में शामिल कर दिया, और अपनी कह सकते कि एक तरह से तिकड़ी में शामिल कर दिया। जी हाँ, इन्होंने बहुत फिल्में बनाई साथ मिलकर, और उन फिल्मों में जो गीत लिखे गोपाल दास जी नीरज जी ने, प्रेम पुजारी जो 1970 में बनी थी, इसके लिए इन्होंने गोपाल दास नीरज को अनुबंधित किया, और इस फिल्म के गीतों ने इतनी सफलता के रिकॉर्ड तोड़े कि आज भी हर घर में कहीं ना कहीं हर रोज़ कोई ना कोई इन गीतों को ज़रूर सुनता है। और कह सकते हैं कि इन्हीं गीतों के ज़रिए ही नीरज जी बॉलीवुड के एक शीर्ष गीतकारों में शुमार हो गए। इस त्रिमूर्ति ने हिंदी सिनेमा को ऐसे गीत दिए जो आज अमर हैं, और इनके पीछे भी एक बेहद ख़ास रोचक किस्सा है, और वो किस्सा है कि जब SD बर्मन ने नीरज जी को एक धुन सुनाई और कहा कि इस पर एक गीत लिखो, तो बात ये थी कि गीत तो लिखना है लेकिन इसमें रंग शब्द आना चाहिए। नीरज जी ने कुछ ही मिनटों में लिख दिया, रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा दिल। और कह सकते हैं कि इस गीत को सुनते ही बर्मन दादा इतने खुश हुए कि उन्होंने नीरज जी को गले लगा लिया और ये गीत बहुत खूबसूरती से गाया। और इस गीत को तो हम सुनेंगे ही बाद में, लेकिन आइए सुनते हैं प्रेम पुजारी का ये खूबसूरत गीत।
1: मैं फौज छोड़ देना चाहता हूं सुमन, क्योंकि ये मेरे उसूलों को तोड़ फोड़ कर मुझ में एक ऐसी आत्मा भर देना चाहती है जो हिंसा और मारपीट में विश्वास रखती हो। एक तरफ मन कहता है कि किसी की जान लेना पाप है और हमेशा दूसरे के दुख पर तड़पता है, और दूसरी तरफ ये फौजी वर्दी एक ऐसे फर्ज में जकड़ लेने की कोशिश में है कि मौका आने पर एक निशान बेशुमार जाने लेने के लिए मजबूर करते हैं। क्या ऐसा वक्त आने पर मैं फर्ज के सामने अपने अहिंसा के नियमों को ठुका सकूंगा, मैं कह नहीं सकता।

गोपाल दास नीरज ने आधुनिक हिंदी काव्य में एक अपनी कई अनुपम रचनाएं की और समय के साथ साथ हिंदी सिनेमा के लिए भी वो काफ़ी गीत लिख चुके थे। इन्होंने जिन फिल्मों के लिए गीत लिखे उनकी सूची भी काफ़ी लंबी है। नीरज ने मेरा नाम जोकर, तेरे मेरे सपने, प्रेम पुजारी, नई उम्र की नई फसल, शर्मीली और 1971 में आई फिल्म गैम्बलर जैसी कई फिल्मों के लिए गीत लिखे। कुछ गीत जो है आपने इस कार्यक्रम में सुने और आइए सुनते हैं उन्हीं की रचना में ये खूबसूरत गीत।

गाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई, ये भाई।

0: हजार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

दोस्तों नीरज जी सिर्फ गीतकार नहीं थे, वो उर्दू हिंदी के मेल यानी हिंदुस्तानी जबान के बड़े पैरोकार थे। उनकी कविताएं जैसे छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों एक हसरत थी, आज भी लोगों के दिलों में बसी है। नीरज जी ने एक समय के बाद खुद को बॉलीवुड से दूर कर लिया था। उनका मानना था कि फिल्मों में शब्दों की मर्यादा कहीं कम होती जा रही है और वो वापस अपनी कर्म भूमि उत्तर प्रदेश लौट आए और ताउम्र कवि सम्मेलनों के जरिए अपनी कविताओं से लोगों को मंत्रमुग्ध करते रहे। जीवन में उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी, बहुत से फिल्मी गीत लिखे और रही मान सम्मान की बात तो उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड्स भी बहुत मिले। लगातार 3 साल 1970, 71, 72 के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार भी मिला। वो विश्व उर्दू परिषद पुरस्कार और यश भारती से भी सम्मानित किए गए। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और बाद में पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से भी नवाजा। नीरज जी ने अपने फिल्मी करियर में 8 साल तक बेहतरीन गीत लिखे। हालांकि उन्हें कवि सम्मेलनों में मिलने वाला प्यार अधिक प्रिय था। गोपाल दास नीरज ने हिंदी साहित्य में कई अनूठी रचनाएं दी और आज आधुनिक हिंदी काव्य जगत में ये ही रचनाएं मील का पत्थर मानी जाती रहीं।

0: गोपाल दास एक सरल स्वभाव के, एक कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के धनी इंसान तो थे ही, साथ ही बात करें उनके जीवन दर्शन की तो उनके काव्यों में, उनके गीतों में ये सभी बातें जो हैं हमें देखने को मिलती हैं उनके शब्दों के ज़रिए। और 19 जुलाई 2018 का वो दिन जो नीरज जी ने इस फानी दुनिया को अलविदा कहा और बहुत कुछ छोड़ा हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, और बहुत कुछ सीखने का जज्बा मिलता है उनके गीतों को सुनकर। कार्यक्रम सुरों का सफ़रनामा में आज हम बात कर रहे थे गोपाल दास नीरज की। इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। मुझे यानी तरन्नुम जहां को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आइए अब से थोड़ी ही देर में सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतनभोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतनभोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने आज से आरंभ हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क की दरें संशोधित की हैं। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार संशोधित दरों में पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 4 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है, जबकि डीजल पर शुल्क अब 14 रुपये से घटकर 8 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। विमानन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 12 रुपये 50 पैसे से घटकर 7 रुपये 50 पैसे कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए स्वीकृत पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने इस बात का खंडन किया है कि उसका 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम अभी भी एक प्रयोग है, जिसका प्रभाव अगले वर्ष तक स्पष्ट हो जाएगा। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट पूरी तरह गलत है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ मीडिया खबरों में एथेनॉल आवंटन के बारे में तेल विपणन कंपनियों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका संबंधी कार्यवाही में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अटॉर्नी जनरल के बयानों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। उच्च शिक्षा विभाग सचिव विनीत जोशी को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। नॉर्वे ने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के अगले दौर में जगह बना ली है। नॉर्वे के लिए एंटोनियो नूसा ने 39वें और एरलिंग हालंद ने 86वें मिनट में गोल किया और टीम को जीत दिलाई। इस तरह नॉर्वे राउंड ऑफ 16 में पहुंचने में सफल रहा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi interacted with various secretaries to several ministries at Seva Tirth in New Delhi yesterday. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the PM stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen VBG Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from today. The Rural Development Ministry said that the Act, which guarantees 125 days of wage employment in every financial year, will empower rural India. Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country. On the implementation, Mr. Chauhan said the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. The 29th National E-Governance Conference will be held in Jaipur from today. The two-day conference will take place at the Rajasthan International Centre and is being jointly organised by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, the Ministry of Electronics and Information Technology and the Government of Rajasthan. The theme of this year's conference is Viksit Bharat 2047, AI-enabled, data-driven and secure digital governance. Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma will inaugurate the event. An exhibition will also be inaugurated, while several digital governance initiatives and innovations of the Rajasthan government will be launched. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi is arriving in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. This marks her first official visit to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with PM Modi. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation, as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Our correspondent reports that India and Japan share a long-standing friendship rooted in centuries of cultural and civilizational exchange, spiritual affinity, and shared values of freedom, democracy, and respect for the rule of law. Centre has revised the export levy rates on petrol, diesel and aviation turbine fuel for the fortnight starting today. According to a notification issued by the Ministry of Finance, under the revised rates, the export levy on petrol has been fixed at 4 rupees per litre. The levy on diesel will now be 8 rupees and 50 paise, down from 14 rupees. The ministry stated that the special additional excise duty on exports of aviation turbine fuel will be reduced from 12 rupees and 50 paise to 7 rupees and 50 paise. President Draupadi Murmu has called upon students to use education as a means to build an equitable and inclusive society. She said educated youth should not work only for their own progress, but also strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. The president said this while addressing the first convocation of the Central Tribal University of Andhra Pradesh in Visakhapatnam. Union Minister for Development of the Northeast Region, Jyotiraditya Sindhya, has reviewed the evolving flood situation across the region following incessant rainfall. In a social media post, Mr. Sindhya said he took stock of the ground situation, including ongoing rescue, relief and restoration efforts, and assured every possible government support to safeguard lives and restore normalcy at the earliest. He also spoke to Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu, Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamang, and Manipur Chief Minister Yamnam Khemchan Singh. In the FIFA World Cup, Norway beat Ivory Coast 2-1 in Texas, USA to advance to the round of 16. Norway will now face Brazil in the round of 16 on Sunday night. In another round of 32 matches, France will take on Sweden at 2:30 a.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 1:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम गीत सुनहरे।

आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित प्रोग्राम गीत बहार, और अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी को फिल्म कोहिनूर के इस खूबसूरत गीत में। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की ही आवाज़, फिल्म कश्मीर की गली से ये गीत सुनते हैं।

सुमन कल्याणपुरी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म रूप सुंदरी से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, पुरानी हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: इसी गीत के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करते हैं।
1: श्रवणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतनभोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतनभोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गतिशक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजकेशन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजकेशन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम

और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने आज से आरंभ हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क की दरें संशोधित की हैं। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार संशोधित दरों में पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 4 रूपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है, जबकि डीजल पर शुल्क अब 14 रूपये से घटकर 8 रूपये 50 पैसे हो जाएगा। विमानन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 12 रूपये 50 पैसे से घटाकर 7 रूपये 50 पैसे कर दिया गया है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। उच्च शिक्षा विभाग सचिव विनीत जोशी को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। फिल्म और रंगमंच की जानी मानी शख्सियत विजया मेहता का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रयोगधर्मी मराठी रंगमंच की अग्रणी विजया मेहता ने अपने थिएटर ग्रुप रंगायन के माध्यम से मराठी रंगमंच को नई भाषा, नया नजरिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूक दृष्टिकोण प्रदान किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू होगी। पहला मैच चेस्टरले स्ट्रीट के रिवर साइड ग्राउंड में भारतीय समयानुसार रात 10 बजे शुरू होगा। आयरलैंड से 2020 श्रृंखला 2-0 से हारने के बाद भारतीय टीम इस श्रृंखला में उतरेगी। फीफा विश्व कप में नॉर्वे ने अमरीका के टेक्सस में आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मैच में भारतीय समयानुसार देर रात 2:30 से फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से होगा। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने कल वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत बहार।

0: तू सपना से बहुत प्यार करता है ना, इसलिए तुझे हर किसी की आवाज सपना की ही आवाज लगती है।
1: सपना? सपना कौन थी?
2: मेरी अपनी, मेरी।
3: अरे हमें तो अपनों ने लूटा, खैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था।

0: और इसी प्रोग्राम के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के श्रमिक रोजगार गारंटी देने वाला अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में देशभर में इस नए कानून को लागू करने के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन के बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इससे कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणाली पूरी तरह तैयार है और अभी चल रहे कार्य बिना किसी रिकॉर्ड के जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजिश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजिश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के पोत आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस कवरत्ती और आईएनएस शक्ति ने थाईलैंड के सट्टाहीप बंदरगाह की अपनी निर्धारित यात्रा पूरी कर ली और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी अगली परिचालन तैनाती के लिए रवाना हो गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत की निरंतर सहभागिता का हिस्सा है और इससे भारत और थाईलैंड के बीच दीर्घकालिक समुद्री साझेदारी मजबूत हुई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगातार बारिश से इस क्षेत्र में आई बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। श्री सिंधिया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने बचाव, राहत और पुनर्वास सहित जमीनी स्थिति का जायजा लिया और लोगों के जीवन की रक्षा तथा सामान्य स्थिति जल्द बहाल करने के लिए सरकार द्वारा हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। फीफा विश्व कप में नॉर्वे ने अमेरिका के टेक्सस में आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मैच में फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

गजल गायकी का ये अंदाज अभी तक छाया हुआ है। कई नए नए फनकारों ने इस अंदाज को बरकरार रखा है, जैसे

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गजल आकाशवाणी दिल्ली का। ये AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 4 बजे हैं।
1: प्रस्तुति भक्ति संगीत का प्रातकालीन कार्यक्रम अर्चना।

भक्ति संगीत के प्रातकालीन अर्चना कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं धर्मपुरम पी स्वामीनाथन और साथियों द्वारा प्रस्तुत तिरुज्ञान संबंधर की रचना।

ओलिजिय जया चाम राजा वाडियार की रचना सुनी। स्वर सीता लक्ष्मी वेंकटेशन और नीला राम गोपाल का है।

0: नमस्ते साथी, भक्ति संगीत का प्रातःकालीन कार्यक्रम अर्चना अब संपन्न होता है।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4:20 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गायन। कलाकार हैं पूर्ण कुन्नम रामचंद्रन। संगीत दिया है स्वाति तिरुनाल ने। आपके साथ मृदंगम पर संगत किया है कुझल मनम के जी रामचंद्र कृष्णन ने। आपने प्रस्तुत किया है राग मध्यमती जो आदिताल में निबद्ध है। तो लीजिए सुनिए पूर्ण कुन्नम रामचंद्रन का गाया राग मध्यमती।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे पूर्ण कुन्नम रामचंद्रन का गाया राग मध्यमती, जो आदिताल में निबद्ध था।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए आप सुनिए आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आज आप सुनेंगे योग गोमुखासन के बारे में। 5:20 का समय रहेगा देशभक्ति गीतों का। 5:30 सुनिएगा कार्यक्रम स्वर रंजनी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अशोक कुमार चौरसिया का शहनाई वादन। आप प्रस्तुत करेंगे राग रामकली। छब्बीस के 10 पर सुनेगा वंदना भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम। 6:40 का समय रहेगा चिंतन का, जिसमें आज आप सुनेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के विचार। 6:45 पर रामचरितमानस से पाठ प्रसारित किया जाएगा। आज होगा बालकांड का भाग 103। 6:55 पर सुनेगा संस्कृत में समाचार और फिर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 7:10 पर संगीतिका के अंतर्गत आज आप सुनिएगा रीटा स्वामी चौधरी के गाए भजन। 7:30 गीतों भरी गुड मॉर्निंग ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा।

आठ बजकर 45 मिनट पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरंगा प्रसारित होगा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गायन, कलाकार होंगे शुभम कुमार। आप प्रस्तुत करेंगे राग नट भैरव। 9:15 पर सुनेगा साइंस मैगजीन। 9:30 पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक सुनवाया जाएगा। इसे प्रस्तुत करेंगी इंद्रप्रीत कौर। 10:10 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद का समय रहेगा। ग्यारह बजकर 10 मिनट पर सुनिएगा सबरस। 11:30 आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी। इसके अंतर्गत आज राजपाल सिंह के का गायन सुनिए।

आप प्रस्तुत करेंगे राग बसंत मुखरी। 12:10 पर सुनेगा महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। आज ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगी सोनाली रक्षित। 1:10 पर सुनिएगा एक ही फिल्म से, आज की फिल्म होगी सलामी।

0: दोपहर 2:30 बजे सुनिएगा एक ही कलाकार कार्यक्रम। इतिहास प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, सुबह के 5 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के श्रमिक रोजगार गारंटी देने वाला अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में देश भर में इस नए कानून को लागू करने के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के कार्यान्वयन के बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इससे कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा 2 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गतिशक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमेरिका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की ये उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के पोत आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस कवरत्ति और आईएनएस शक्ति ने थाईलैंड के सट्टाहीप बंदरगाह की अपनी निर्धारित यात्रा पूरी कर ली है और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी अगली परिचालन तैनाती के लिए रवाना हो गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत की निरंतर सहभागिता का हिस्सा है और इससे भारत तथा थाईलैंड के बीच दीर्घकालिक समुद्री साझेदारी मजबूत हुई है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन, दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। कल तक बिहार, छत्तीसगढ़

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर सुबह की 5:10 और ठीक 15 सेकंड हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आओ योग करें।
1: आओ योग करें। आज हम जिस आसन को ले रहे हैं उसका नाम है गौमुख आसन। संस्कृत में गौमुख का अर्थ होता है गाय का चेहरा या गाय का मुख। इस आसन में पांव की स्थिति बहुत हद तक गौमुख की आकृति जैसी होती है, इसलिए इस आसन को गौमुख आसन कहा जाता है। यदि इसका अंग्रेजी में अनुवाद करें तो इसे काउ फेस पोज भी कहा जाता है। गौमुख आसन महिलाओं के लिए अत्यंत लाभदायक आसन है। यह गठिया, शाइटिका, अपचन, कब्ज, धातु रोग, मधुमेह, कमर में दर्द होने पर यह आसन बहुत अधिक लाभप्रद है। चलिए गौमुख आसन की विधि को जान लें और अगर हो सके तो साथ में कर भी सकते हैं। सबसे पहले अपने आसन पर दंडासन अर्थात दोनों पैरों को सामने सीधे एड़ी और पंजों को मिलाकर बैठें। यानी आसन पर आप सीधे बैठें और अपने पैरों को सीधे ले जाएं अपने सामने, एड़ी और पंजों को आपस में मिलाकर बैठें। हाथ कमर से सटे हुए और हथेलियां भूमि पर टिकी हुई, नजरें एकदम सामने। अब अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें, दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी जो त्रिकोण आकार में नजर आएंगी। आप समझ रहे हैं ना, सबसे पहले अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें, अब दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी और दिखने में ये त्रिकोणाकार नजर आती हैं। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं। इसके बाद बाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे लेकर दाहिने हाथ के पंजे को पकड़ें, गर्दन व कमर सीधी रखें। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर

0: अपने कंधे को ऊपर खींचते हुए अब एक ओर से लगभग एक मिनट तक करने के पश्चात दूसरी ओर इसी प्रकार करें, यानी वापस अपने हाथों को नीचे ले जाएं, वापस दंधासन में जाएं और अब बाएं पैर की जगह दाएं पैर को मोड़कर एड़ी को बाएं नितंब के ऊपर रखें, बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें, फिर श्वास भरते हुए बाएं हाथ को उठाकर बाएं कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं। आपकी कोहनी आपके बाएं कान के साथ मिल रही होगी। अब दाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे से लेकर बाहिने हाथ के पंजे को पकड़ें और इस अवस्था में भी लगभग एक मिनट श्वास लें। कुछ देर बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों के लॉक को खोल दें और पुनः दंड आसन की स्थिति में आ जाएं। इस तरह आपका एक चक्र पूरा हुआ। हाथों के पंजों को पीछे पकड़े रहने की सुविधा अनुसार 30 सेकंड से एक मिनट की स्थिति तक रह सकते हैं। इस आसन के चक्र को दो या तीन बार दोहरा भी सकते हैं। गोमुख आसन करते हुए कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, जैसे किसी भी अन्य आसन को करते समय। यदि आपके हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी में कोई गंभीर रोग हो तो गोमुख आसन न करें। इसी तरह जबरदस्ती पीठ के पीछे हाथों के पंजों को पकड़ने का प्रयास न करें। जब आप इस आसन को करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि ये प्रक्रिया इतनी आसानी से न हो पाए। जब धीरे धीरे आपका लचीलापन बढ़ता चला जाए और शरीर को कष्ट ना हो तब कोशिश करें कि पीठ के पीछे हाथों के पंजों को पकड़ा जाए। चलिए अब इस आसन के लाभ से आपको अवगत करवाया जाए। गोमुख आसन करने से हाथ और पैरों की मांसपेशियां चुस्त और मजबूत बनती हैं। योग करें, हर रोज करें और अपने चेहरे पर योग करते समय मुस्कान को बनाए रखें, क्योंकि ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपके जीवन को सुखमय बना देगी, रोग से दूर कर देगी। कल सुबह इसी समय इसी चैनल पर आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 5:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 5:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे शहनाई वादन। कलाकार हैं अशोक कुमार चौरसिया। आपने प्रस्तुत किया है राग रामकली।